मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। श्रोताओं, उठिए, जागिए, देखिए, नई सुबह आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सूर्य उदयमान हो रहे हैं, उनकी ओर देखिए। कितनी ढेर सारी ऊर्जा, नई संभावनाएं आपके लिए लेकर आया है नया दिन। तो उठिए, जागिए, आंखों को मलिए, धोइए और ट्यून इन कीजिए आकाशवाणी लखनऊ और जुड़िए हमारे बेहतरीन कार्यक्रमों के साथ। और प्रत्येक दिन नई संभावनाएं लेकर आता है, नई ऊर्जा लेकर आता है और न जाने कितने सारे रहस्य छुपे हैं आज के दिन में। तो फिर मुस्कुरा कर, बाहें पसार कर इस प्यारी सी सुबह का स्वागत कीजिए। दिल से प्रसन्न होइए, मन को शांत रखिए और प्रसन्न होइए, अपने इष्ट, अपने आराध्य का स्मरण

0: ग्रहण कीजिए और इस प्रातःकालीन बेला में शुरुआत कीजिए आज के इस ऊर्जावान दिन की। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ हो गया है नमस्कार लखनऊ, और आज नमस्कार लखनऊ में आपके साथ हूँ मैं नंदिनी मिश्रा। स्वीकार करें नमस्कार नंदिनी का। फिलहाल सुबह के 6 बजने वाले हैं, आइए आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा, और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा।

इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोस्तों कार्यक्रम आरंभ हो गया, नमस्कार लखनऊ। और नमस्कार लखनऊ में सबसे पहले बात कृषि की, तो आज की कृषि चर्चा में सुगंधित धान की उन्नत कृषि तकनीक, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सीआर राम कनौजिया।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ में सुगंधित धान उत्पादन की योजना बनाए हैं, तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र पचपेड़वा बलरामपुर से वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर सियाराम कनौजिया साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां सुगंधित धान उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है आपकी?
2: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि किसान भाई परंपरागत तरीके से सामान्य धान की खेती करते हुए चले आ रहे हैं, उसमें समय पे मजदूरों की उपलब्धता ना होना और क्रांतिक निवेशों का अत्यधिक महंगा हो जाना और लाभकारी मूल्य ना मिल पाना, इससे जो सामान्य धान की खेती है वो आज किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध नहीं हो पा रही है। ऐसी परिस्थिति में यदि किसान भाई सुगंधित धान की खेती करते हैं तो उनको उससे अच्छा लाभ मिल सकता है।
1: तो उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं डॉक्टर साहब, जो चुन सकते हैं?
2: देखिए, किसान भाइयों को बताना है कि उन्नत प्रजातियों में सुगंधित धान की जो बासमती समूह की कुछ प्रजातियां हैं और कुछ प्रजातियां जो हमारे लोकल जो हमारे क्षेत्र विशेष की हैं, जिसमें काला नमक की है, अच्छी प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों का चयन करके वो अपने खेत में उसको लगा करके उससे अच्छा उत्पादन लेकर के अच्छा लाभ कमा सकते हैं, जिसमें बासमती ग्रुप में पूसा बासमती 1 है, पूसा सुगंध 1, पूसा सुगंध 2, 4, पूसा सुगंध 5, इस तरह की कई ऐसी बासमती ग्रुप की प्रजातियां हैं, जिसमें कुछ काला नमक की नई प्रजाति जो अभी पिछले 2 सालों से वो रिलीज हो चुकी है और वो आई है, जिसमें वो बौना काला नमक है, जिसमें पूसा नरेंद्र काला नमक 1 और पूसा काला नमक CRD2, ये बौनी काला नमक है। ये बहुत ही अच्छी प्रजाति है और ये 60 स्टेचर होता है इसका, लंबी नहीं होती है और एक लॉजिंग भी नहीं होती, गिरती भी नहीं है और लगभग 4 क्विंटल बीघे जो है इसका उत्पादन भी हो जाता है।
1: अगर एकड़ में बात करें तो?
2: एकड़ में बात करते हैं तो कम से कम जो है 20 क्विंटल प्रति एकड़ उपज इसकी प्राप्त हो जाती है।
1: तो जो काला नमक और बासमती ग्रुप की प्रजातियां हैं सुगंधित धान की डॉक्टर साहब, उनकी खासियत क्या आप महसूस करते हैं जो नई प्रजातियां हैं?
2: देखिए, जो हमारी काला नमक की जो नई प्रजाति है उसमें खासियत एक चीज आई, जो पुरानी हमारी काला नमक हुआ करती थी वो एक तो लंबी होती थी और लॉन्ग ड्यूरेशन की होती थी और आजकल उसमें एक समस्या आ रही है कि लास्ट में उसमें दाने भरने की समस्या हो रही है, दाने नहीं भर पा रहे हैं उसमें और लॉजिंग की समस्या है,
1: यानी गिर जाती है
2: और ले दे करके उपज जो हमारी होती है वो बहुत ही कम होती है, 1-1.5 क्विंटल पर बीघे मान के चलिए, इससे ज्यादा उपज नहीं हो पाती है, इसलिए जो है ये थोड़ा अब लाभकारी सिद्ध नहीं हो पा रही है। इसी का इम्प्रूवमेंट करके हमारे वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया है, रिसर्च करके ये दोनों प्रजातियों को निकाला है, ये सारी कमियां इसकी निकाल दी गई हैं, उपज भी अच्छी मिल रही है और अच्छी सुगंध भी मिल रही है इन दोनों प्रजातियों से।
1: डॉक्टर साहब, जो भी सुगंधित धान की उन्नत प्रजातियां हैं उनके नर्सरी प्रबंधन में क्या कुछ खास है और कब तक नर्सरी पड़ सकती है अगर 1 एकड़ रोपाई के लिए करना है तो?
2: सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये मान लेना है कि जो सुगंधित धान की खेती अगर वो करने जा रहे हैं तो नर्सरी डालते समय उनको समय का ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये सुगंधित धान हमारा है और इस सुगंधित धान की बालियां जब 20 अक्टूबर के बाद में निकलती हैं तब जा करके उसमें जो है अच्छी सुगंध मिल पाती है। ऐसी परिस्थिति में उनको जो नर्सरी डालना है वो 15 जून से 30 जून तक नर्सरी डालना है उसमें, और रोपाई जो हो वो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक होनी चाहिए, तब जाकर के आगे चल करके उनको 20 अक्टूबर के बाद जब उसमें बालियां निकलेंगी तो अच्छी सुगंध उनको मिलेगी उसमें।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे सुगंधित धान के उन्नत कृषि तकनीक के बारे में।

0: अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र पचपेड़वा बलरामपुर आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 9450-31-34-71, 9450-31-34-71, 9450-31-34-71। हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहेंगे, जो किसान भाई ज़्यादा खेती करना चाहते हैं अपने धान की, ज़्यादा क्षेत्रफल उनके पास में है, उसमें कम से कम सुगंधित धान की खेती 1 एकड़ तो अवश्य रखें और दोनों का कंपैरिजन करके देखें कि किस में उनको लाभ ज़्यादा मिल रहा है और धीरे धीरे सुगंधित धान की खेती का क्षेत्रफल वो बढ़ावें जिससे उनको धान की खेती में लाभ प्राप्त हो सके।
0: डॉक्टर सियाराम कन्नौजिया साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और सुगंधित धान की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो कृषि चर्चा में आज श्रोताओं आपने जाना सुगंधित धान की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सियाराम कन्नौजिया और आपसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ अब हमारे आज की कृषि चर्चा संपन्न हुई और अब कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ में हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है शुक्रवार, तो आज बात गांधी चर्चा की।

दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। इस पुस्तक में महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है कि यहूदियों की नाटकशाला में 11 सितंबर 1906 को एक सभा हुई। ट्रांसवाल के भिन्न भिन्न शहरों से प्रतिनिधियों को सभा में बुलाया गया। सभा हुई, नाटकशाला में पांव रखने की जगह भी नहीं थी। सब लोगों के चेहरों पर मैं ये भाव देख सकता था कि कुछ नया काम हमें करना है, कुछ नई बात होने वाली है। ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अब्दुल गनी सभा के सभापति पद पर आसीन थे। सभा में जितने प्रस्ताव पास हुए थे उनमें सच्चा प्रस्ताव तो एक ही था। उसका आशय इस प्रकार था कि इस बिल के विरोध में सारे उपाय किए जाने के बावजूद अगर वो धारा सभा में पास हो ही जाए तो हिंदुस्तानी उसके सामने हार न माने और हार न मानने के फल स्वरूप जो दुख भोगने पड़े उन सबको बहादुरी से सहन करें। ये प्रस्ताव मैंने सभा को अच्छी तरह समझा दिया। सभा ने शांति से मेरी बात सुनी। सभा का सारा कामकाज हिंदी में या गुजराती में ही चला, इसलिए किसी को कोई बात समझ में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। एक वक्ता सेठ हाजी हबीब थे, वे भी दक्षिण अफ्रीका के बहुत पुराने और अनुभवी निवासी थे। उनका भाषण बड़ा जोशीला था। आवेश में आकर वे यहाँ तक बोल गए कि ये प्रस्ताव हमें खुदा को हाजिर मानकर पास करना चाहिए। मैं इस सभा में आए हुए सब लोगों को ये सलाह देता हूँ कि वे भी खुदा को हाजिर मानकर ऐसी कसम खाएं। इस प्रस्ताव के समर्थन में अन्य लोगों ने भी तीखे और जोशीले भाषण किए। जब सेठ हाजी हबीब बोलते बोलते कसम की बात पर आए तब मैं चौंका और सावधान हो गया। तभी मुझे अपनी जिम्मेदारी और हिंदुस्तानी कौम की जिम्मेदारी का पूरा भान हुआ। आज तक कौम ने अनेक प्रस्ताव पास किए थे, अधिक सोचने विचारने के बाद या नए अनुभवों के बाद उन प्रस्तावों में परिवर्तन भी किए गए थे। सिद्धांत की दृष्टि से सोचा जाए तो किसी निश्चय में और ईश्वर का नाम लेकर की गई प्रतिज्ञा में कोई भेद नहीं होना चाहिए। जब बुद्धिशाली मनुष्य सोच समझकर कोई

तो किसी निश्चय में और ईश्वर का नाम लेकर की गई प्रतिज्ञा में कोई भेद नहीं होना चाहिए। जब बुद्धिशाली मनुष्य सोच समझकर कोई निश्चय करता है तो वो अपने निश्चय से कभी डगता नहीं। उसकी दृष्टि में उस निश्चय का महत्व उतना ही होता है जितना कि ईश्वर को साक्षी रखकर की गई प्रतिज्ञा का। लेकिन दुनिया सैद्धांतिक निर्णयों के आधार पर नहीं चल, वो ईश्वर को साक्षी रखकर की गई प्रतिज्ञा और सामान्य निश्चय के बीच महासागर जितना भेद मानती। किसी सामान्य निश्चय को बदलने में बदलने वाले को शर्म नहीं आती, लेकिन ईश्वर को साक्षी रखकर प्रतिज्ञा करने वाला मनुष्य जब प्रतिज्ञा को भंग करता है तब वो खुद ही नहीं शर्माता, समाज भी उसे धिक्कारता है और पापी मानता है। इस बात ने मानव मन में इतनी गहरी जड़ जमा ली है कि कानून की दृष्टि में भी कसम खाकर कही गई बात अगर झूठी साबित हो तो कसम खाने वाला आदमी अपराधी माना जाता है और उसे कड़ी सजा दी जाती है। ऐसे विचारों से भरा हुआ मैं, जिसे गंभीर प्रतिज्ञाओं का काफी अनुभव था और जिसने प्रतिज्ञाओं के मीठे फल जीवन में चखे थे, सेठ हाजी हबीब के कसम खाने वाले सुझाव से चौंक उठा। मैंने उसके परिणामों का अनुमान एक क्षण में लगा लिया। इस घबराहट से मुझमें उत्साह और जोश पैदा हुआ और यद्यपि मैं उस सभा में प्रतिज्ञा करने या दूसरों से कराने के इरादे से नहीं गया था तो भी मुझे सेठ हाजी हबीब का सुझाव बहुत पसंद आया। इसलिए मैंने सभापति से कहा कि मुझे सेठ हाजी हबीब के कथन का गूढ़ अर्थ सभा को समझाने की इजाजत दी जाए। मुझे इजाजत मिली और मैं खड़ा हो गया। मैं तो ये मानता हूं कि जो मनुष्य सावधान रहकर शुद्ध बुद्धि से प्रतिज्ञा करता है और बाद में उसे भंग करता है वो अपनी इंसानियत अथवा मनुष्यता खो देता है। और जिस प्रकार पारा चढ़ाया हुआ तांबे का सिक्का रुपया नहीं है ये पता चलते ही उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती, बल्कि उस खोटे सिक्के का मालिक सजा का पात्र हो जाता है, उसी प्रकार झूठी कसम खाने वाले आदमी की भी कोई कीमत नहीं रह जाती।

गांधी चर्चा संपन्न हुई। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्कार लखनऊ में श्रोताओं, आइए अब आरंभ करते हैं आज की आराधना।

ईश्वर का आराधन, उनका वंदन मन को पवित्र और शांत कर देता है। इसलिए प्रयास करें कि ईश्वर की आराधना में अपने मन को अवश्य

उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा बन जाता है। और अगर वो विश्वास अपने ईश्वर पर रखता है तो वो उसकी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है।

ईश्वर अपने भक्तों को कभी भी ऐसे मार्ग पर नहीं भेजते जिन्हें वे पार ना कर सके। इसलिए व्यक्ति को कभी भी संघर्षों से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही उन समस्याओं से, उन तकलीफों से लड़ने की अद्भुत शक्ति और ऊर्जा विद्यमान होती है।

मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। वो जैसा सोचता है, जैसा समझता है, चीजों को जैसे ग्रहण करता है और जैसा विश्वास करता है, वो वैसा ही बन जाता है। इसी के लिए कहा गया है कि सदैव अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। जीवन में आपकी नई ऊर्जा, नई संभावनाएं, नई कोशिशें, प्रयास करते रहिए तो नए नए अवसर आपके जीवन में आते रहेंगे और नई ऊर्जा का संचार आपके जीवन में होगा।

इसी भक्ति रचना के साथ और इस शुभेच्छा के साथ कि हमारे सभी श्रोताओं का आज का दिन अति उत्तम बीते, आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहे, आपको अपनों का साथ मिले और आप एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहे, इस शुभेच्छा के साथ, इस शुभकामना के साथ अब हमारी आज की आराधना यहीं पर सम्पन्न होती है।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज लीजिए सुनिए इसका भाग 207। इसके अंतर्गत हम आपको सुनाने जा रहे हैं अयोध्या कांड का वो प्रसंग जिसमें सीता जी को स्वप्न में भरत के आने का आभास होता है और श्री राम के व्यथित और चिंतित होने का वर्णन आता है।

श्री राम के प्रेम में शिथिल पड़ गए अयोध्यावासी। मात्र दो ही कोस चल पाए थे कि दिन ढल गया। अतः उपयुक्त स्थान देख सबने बिना खाए पिए वहीं रात्रि विश्राम किया। उस रात सीता जी ने स्वप्न में देखा कि प्रभु के वियोग में भरत संतप्त शरीर लिए पूरे समाज के साथ वहां पधारे हैं। सभी लोग उदास और दुखी हैं। साधुओं की सूरत बदली हुई है। सीता का स्वप्न सुनकर श्री राम व्यथित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ये स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य ही कोई अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा। चित्त की शांति के लिए उन्होंने स्नान आदि करके त्रिपुरारी का पूजन तथा साधु संतों का सम्मान किया। देवताओं मुनियों आदि का वंदन कर श्री राम उत्तर दिशा में देखने लगे, जिधर आकाश में धूल छा रही थी। पशु पक्षी आश्रम की ओर भागते आ रहे थे। मन में चिंता हो आई, क्या बात है। उसी समय कोल फीलों ने भरत शत्रुघ्न के आगमन का समाचार सुनाया। श्री राम हर्षित हो गए। फिर ये सुनकर कि भरत शत्रुघ्न के साथ चतुरंगिणी सेना भी है, शंका हुई कि इस प्रकार उनके आने का क्या कारण हो सकता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आज आपने सुना इसका भाग 207। इसी के साथ श्री रामचरितमानस से गान संपन्न हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। नमस्कार लखनऊ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से, आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: इत्येतेषु राज्येषु मूल्यसमर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति। अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तरप्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98,200,000 मेट्रिक टन मितं मुद्गम, 97,000,790,000 मेट्रिक टन मितं माश, अथ च 18,700,000 मेट्रिक टन मितं कलाय क्रयणस्य अनुमतिः दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत यत् दृढ़ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास सन्धिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, धड़कन देश की। दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और नमस्कार लखनऊ में हम प्रतिदिन आपको ढेर सारे विषयों पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं, और स्वास्थ्य की अगर बात हो तो उसके लिए भी हम बहुत सचेत रहते हैं। तो आज की स्वास्थ्य चर्चा का विषय है, जरूरी है पैरों की देखभाल। तो आइए सुनते हैं आज की स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, हमारा आज का विषय है पैरों का स्वास्थ्य, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे पैर न केवल हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि ये दिन भर की थकावट झेलते हैं। बावजूद इसके हम अपने पैरों की देखभाल पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वस्थ पैर पूरे शरीर की सेहत के लिए कितने जरूरी हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पैर हमारे शरीर का वो हिस्सा है जिन पर हमारा पूरा वजन टिका होता है। दिन भर चलने फिरने, खड़े रहने और गतिविधियों में शामिल रहने के कारण पैर काफी दबाव झेलते हैं। अगर समय पर इनकी देखभाल ना की जाए तो ये छोटी छोटी समस्याएं बड़ी परेशानियों का रूप धारण कर सकती हैं। पिंडलियों में दर्द, एड़ी में दरारें, पैरों में सूजन या संक्रमण जैसी समस्याएं आम हैं, लेकिन इनका सही समय पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले पैरों को साफ रखना बेहद जरूरी है। दिन भर के दौरान धूल मिट्टी और पसीने के कारण पैरों पर बैक्टीरिया और गंदगी जमा हो सकती है, जो संक्रमण का कारण बनती है। हर दिन अपने पैरों को गुनगुने पानी और माइल्ड साबुन से धोएं। खासकर पैरों की उंगलियों के बीच की जगह को साफ करना न भूलें, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा गंदगी जमा होती है। सफाई के बाद पैरों को सूखा रखें और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, ताकि त्वचा में नमी बनी रहे और एड़ियां फटने से बच सकें। पैरों की देखभाल में सही जूते पहनना भी बेहद महत्वपूर्ण है। जूते आरामदायक होने चाहिए और पैर में अच्छे से फिट होने चाहिए। टाइट जूते पहनने से न केवल चलने में परेशानी होती है, बल्कि ये पैरों में छाले और दर्द का कारण भी बन सकते हैं। वहीं ज्यादा ढीले जूते पैर में सही पकड़ नहीं बना पाते, जिससे चलने फिरने में संतुलन बिगड़ सकता है। कोशिश करें कि आपके जूते पसीने को सूखने वाले और हवादार हों, ताकि पैर दिन भर ताजगी भरे रहें। पैरों की थकावट दूर करने के लिए इन्हें नियमित रूप से आराम देना भी बेहद जरूरी है। दिन भर के कामकाज के बाद गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक या एसेंशियल ऑयल डालकर उसमें अपने पैर डालें। ये न केवल थकावट को कम करेगा, बल्कि रक्त संचार को भी बेहतर बनाएगा। इसके अलावा पैरों की मसाज करना एक बेहतरीन तरीका है, जो मांसपेशियों को आराम देने के साथ साथ त्वचा को भी नरम बनाए रखता है। पैरों के स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज भी बेहद महत्वपूर्ण है। हर दिन कुछ मिनट अपने पैरों को स्ट्रेच करने और हल्के व्यायाम करने में लगाएं। ये न केवल पैरों की ताकत बढ़ाता है, बल्कि शरीर के निचले हिस्से में रक्त प्रवाह को भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा अगर आप लंबे समय

0: खड़े रहते हैं तो बीच बीच में अपने पैरों को थोड़ा आराम दें। सर्दियों में पैरों की देखभाल पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। ठंड के मौसम में पैरों की त्वचा रूखी और बेजान हो सकती है। इसके लिए गुनगुने नारियल तेल या शिया बटर का इस्तेमाल करें। नियमित रूप से पैरों पर ये तेल लगाएं ताकि त्वचा नरम बनी रहे और एड़ियां फटने की समस्या से बचा जा सके। पैरों से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको पैरों में लगातार दर्द, सूजन या लालिमा दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डायबिटीज के मरीजों के लिए पैरों की देखभाल और भी जरूरी है क्योंकि उनकी त्वचा संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। आयुर्वेद में भी पैरों की देखभाल को महत्वपूर्ण बताया गया है। पैरों में तेल की मालिश करने से न केवल थकावट कम होती है बल्कि ये शरीर की ऊर्जा को भी संतुलित करता है। इसके अलावा गर्म पानी में पैर डुबोने से फंगल संक्रमण और बैक्टीरिया से बचाव होता है। श्रोताओं, पैरों की देखभाल को नजरअंदाज न करें। ये छोटे छोटे कदम आपके पूरे शरीर की सेहत पर बड़ा असर डाल सकते हैं। पैरों की साफ सफाई, सही जूते, नियमित मसाज और एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। याद रखें, स्वस्थ पैर ही एक सक्रिय और खुशहाल जीवन की नींव है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: तो स्वास्थ्य चर्चा में श्रोताओं, आपने जाना जरूरी है पैरों की देखभाल। और इसी के साथ अब नमस्कार लखनऊ में वक्त हो गया है कि हम आपको आज अपनी विभिन्न सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें।

आज रात 11:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज का विषय होगा पर्यावरण। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। आज रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा ललित पोखरिया से की गई भेंटवार्ता, कला संस्कृति और चेतना का संगम रंगमंच। आपसे बातचीत करेंगे सुरेंद्र राजेश्वरी। शाम 7:30 पर अंग्रेजी कार्यक्रम में यू विल लिसन टू एन इंटरव्यू विद कम्युनिकेशन एक्सपर्ट एंड मीडिया कंसल्टेंट प्रियंका दीक्षित इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर शीबा राकेश। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा संभल और बाराबंकी जिलों के बारे में। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम आज आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश होगा। इसमें समाज फरमाइएगा मुबाहिसा अहले बैत की कुर्बानियां और तारीख एक जायजा। मेहमान होंगे प्रोफेसर कमरून हसन और प्रोफेसर महफूज अली। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7:10 पर विविधा में मेरे यानी नंदिनी मिश्रा के साथ आज का विषय है सकारात्मकता शक्ति है। हमारी दूसरी सभा में दिन में 1:15 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम अपराजिता। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में डॉक्टर केशव कुमार से की भेंटवार्ता सुनिएगा, पशुओं में चारा विषाक्तता कारण और निवारण। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है शाम 5 बजे और शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनते हैं अपना कार्यक्रम युवा तरंग। शाम 5:45 पर कार्यक्रम होगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर सौरभ राय की वार्ता सुनिएगा, परंपरा और प्रौद्योगिकी से बदलते गांव। किसान भाई सुनिए अपना कार्यक्रम खेती किसानी शाम 6:50 पर। इसमें कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी प्रसारित की जाएगी। आलेख एवं वाचन नवेद शिकोह का और संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय का।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर और रात 10:30 पर आज सुनिएगा पखावज वादन। कलाकार होंगे राजकुमार झा। रात 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिएगा साबरी ब्रदर्स की गाई कुछ कव्वाली। और लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में सुबह 9:50 पर और लोक माथुरी में दिन में 2:45 पर आज सुनिएगा प्रीति लाल के गाए कुछ अवधि लोकगीत। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। और अब से थोड़ी देर में श्रोताओं आप सुनेंगे आज की विविधा।

विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है आज की विविधा।

आज की विविधा सकारात्मकता शक्ति है। दोस्तों, आज बात एक ऐसी शक्ति की जो ना दिखाई देती है ना छुई जा सकती है, लेकिन जब ये इंसान के भीतर जागती है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वो शक्ति है सकारात्मकता। सकारात्मकता केवल अच्छा सोचने का नाम नहीं है, ये वो ताकत है जो अंधेरे में भी रोशनी जगा देती है, हार में भी सीख देख लेती है और टूटते हुए इंसान को फिर से खड़ा होने का साहस देती है। जीवन में हर व्यक्ति संघर्ष करता है, कोई आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा है, कोई अपने सपनों को पूरा करने की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि समान परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग और मजबूत होकर उभरते हैं? फर्क केवल परिस्थितियों का नहीं होता, फर्क होता है सोच का। एक ही तूफान में कुछ पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं और कुछ मजबूती से खड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें गहरी होती हैं। उसी तरह सकारात्मक सोच हमारे मन की जड़ें मजबूत बनाती है।

जब जीवन हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, तब नकारात्मकता धीरे धीरे हमारे मन में घर करने लगती है। हमें लगने लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहीं पर सकारात्मकता हमारी सबसे बड़ी मित्र बनकर सामने आती है। सकारात्मकता कहती है, ये अंत नहीं है, ये केवल एक नया अध्याय है, ये हार नहीं है, ये एक सीख है, ये कठिन समय है लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। इतिहास गवाह है कि दुनिया के हर महान व्यक्ति ने कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन उन्हें महान उनकी परिस्थितियों ने नहीं बनाया, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति उनका सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें महान बना गया। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने कई बार असफलता देखी, लोगों की आलोचनाएं सुनी, रास्ते में हजारों बाधाएं आई, फिर भी उसने हार

नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उसके पास सकारात्मकता की शक्ति थी। सकारात्मकता कोई जादू नहीं करती, लेकिन ये हमें वो ऊर्जा देती है जिससे हम अपने जीवन का जादू स्वयं बना सकें।

लगातार 2 साल खराब हो गई। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन किसान हर सुबह मुस्कुरा कर खेत में जाता और कहता, आज नहीं तो कल मेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। तीसरे साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे क्षेत्र में उसकी चर्चा होने लगी। जब लोगों ने उससे सफलता का रहस्य पूछा तो उसने कहा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। यही सकारात्मकता की असली ताकत है।

ये हमें परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनने देती, ये हमें याद दिलाती है कि हम अपनी परिस्थितियों से बड़े हैं। आज की दुनिया में नकारात्मक खबरें, आलोचनाएं, तुलनाएं और तनाव हर तरफ मौजूद है। ऐसे माहौल में सकारात्मक रहना कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बहादुरी है। सकारात्मक व्यक्ति समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करता, वह उन्हें स्वीकार करता है लेकिन उनसे हार नहीं मानता। वो जानता है कि बारिश आएगी लेकिन ये भी जानता है कि बादलों के पीछे सूरज अभी भी मौजूद है। यदि आपके जीवन में कभी कठिन समय चल रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके खिलाफ है, तो बस एक बात याद रखिए, रात चाहे कितनी भी लंबी हो सुबह जरूर आती है। आपके भीतर जितनी शक्ति है शायद आपको खुद भी उसका अंदाजा नहीं है। आपने आप पर विश्वास रखिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए और सबसे बढ़कर उस सकारात्मक ऊर्जा पर विश्वास रखिए जो आपको हर गिरावट के बाद फिर उठने की ताकत देती है। क्योंकि सकारात्मकता केवल एक विचार नहीं है, जीवन जीने का तरीका है। ये वो दीपक है जो अंधेरे को समाप्त नहीं करता लेकिन हमें अंधेरे में से बाहर आने का रास्ता दिखाता है। आज जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो अपने मन में एक वादा कीजिए, मैं परिस्थितियों से नहीं हारूंगा, मैं निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, मैं हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरुआत करूंगा क्योंकि मेरे भीतर सकारात्मकता की शक्ति है। और याद रखिए, जिस दिन इंसान अपनी उम्मीदों का दामन छोड़ देता है उसी दिन वो हार जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता रहता है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक नहीं रोक सकती। सकारात्मक शक्ति है, सकारात्मकता साहस है, सकारात्मकता सफलता का पहला कदम है।

0: दोस्तों, इसी के साथ आज की विविधाएं संपन्न हुई। अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा को दीजिए अनुमति किसी और दिन।
1: सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है।

0: महात्मा गांधी। मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है।
0: सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को संबोधित किया, कहा किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश के 17 जिलों में भी आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग्स के जुड़े दो संदिग्धों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नेटवर्क के संपर्क में थे बुलंदशहर जिले के दोनों आरोपी। और आज आगरा में आयोजित हो रही है ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक, चीन, रूस और ब्राजील सहित 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्राम पंचायत डीह के हिंदू खेड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विरासत की रक्षा के साथ साथ विकास यात्रा को निरंतर गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री योगी ने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे आसपास के जिलों को बेहतर आवागमन सुलभ होगा।
3: अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वह सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। और इसके लिए जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे, दिल्ली से देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंच गई है। एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, ताराबंकी, रायबरेली, ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे।
2: मुख्यमंत्री ने कल ही कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला में भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती कृषि को अधिक लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का सशक्त माध्यम है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें सभी सुविधाएं दे रही है।
3: प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली, पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रक्यूरमेंट के सेंटर स्थापित हुए, और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा। यानी एक एक कड़ी को जोड़ते गए, आपको जो फर्टिलाइजर कॉपरेटिव सोसाइटी में मिलती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उस बैग की कीमत होती है 4000 रुपए, यहाँ पे यूरिया का दाम आपको मिलता है उसका 1/4 से भी कम में। ये सारी सब्सिडी भारत सरकार भरती।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। वो अयोध्या नगर निगम की कुल 291 करोड़ रुपए की लागत वाली 245 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देश भर के लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। योजना के तहत प्रदेश के लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी और मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य रोजगार

0: सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में बहुत मजबूती से समाया हुआ है और देश की सीमाओं को पार कर चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर वैश्विक मान्यता तक योग ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में अपनी जड़ें जमाए रखते हुए सीमाओं को पार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड UPATS ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े बुलंदशहर जिले से दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन पर गैंग के आतंकी नेटवर्क से जुड़कर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित नेटवर्क के संपर्क में थे। आगरा में आज भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहले ब्रिक्स MSME फोरम और तीसरी SME वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस कार्यक्रम की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है। ब्रिक्स फोरम की बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों के सहित नीति निर्माता, उद्योगपति और उद्यमी हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में MSME के लिए वित्त और तकनीक तक पहुंच, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स SME फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और MSME के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। ये फोरम सहभागी देशों के ज्ञान का आदान प्रदान करने और उभरते अवसरों की पहचान करने और समावेशी और सतत आर्थिक विकास में योगदान देने वाली साझेदारियां बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आंकलन के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान के छठवें चरण की शुरुआत कल लखनऊ में प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए बच्चों का सुपोषित होना बहुत जरूरी है। मौसम विभाग ने आगामी 24 जून तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के क्रमिक बढ़ोतरी की

भी संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आज और कल, जबकि पूर्वी जिलों में आज कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को संबोधित किया। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश के 17 जिलों में भी आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े दो संदिग्धों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नेटवर्क के संपर्क में थे बुलंदशहर जिले के दोनों आरोपी। और आज आगरा में आयोजित हो रही है ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक। चीन, रूस और ब्राजील सहित 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: कृत्य करते हैं। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए पखावज वादन। कलाकार है राजकुमार झा। आज आप प्रस्तुत कर रहे हैं पखावज पर राग चौताली।

ने प्रस्तुत किया पखावज पर ताल चौताल। इसी के साथ अब हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। और इसी के साथ नमस्कार लखनऊ भी यहीं संपन्न हुआ। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात सुनवाने के लिए। आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
5: पीएम किसान।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
7: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में

0: भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस, एवियन, पेरिस, मंडी से साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुरी जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों

0: उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट है।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कूचक्र।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार।

फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम

राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओ, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओ, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोनिंग कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 20 जून 2026 को 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है नवजात शिशुओं के इलाज में थेरोपेटिक हाइपोथेरेमिया कब, क्यों और कैसे, शंकाएं एवं समाधान। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 19 जून 2026 को 4:30 से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिएगा, विषय है नवजात शिशुओं के इलाज में थेरोपेटिक हाइपोथेरेमिया कब, क्यों और कैसे, शंकाएं एवं समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 19 जून 2026 को 4:30 से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251720। श्रोताओ, इसी के साथ रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से FM 100.4 मेगाहर्ट्ज पर, और न्यूज जोन ARF पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। आइए अब सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे।
1: फिल्मी फ्राइडे कट वन
2: एक वन
3: फाइव सिक्स सेवन एट
1: लाइट कैमरा एक्शन एक्शन एक्शन।
4: Ladies and gentlemen, hold your hearts.

नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के बॉलीवुड गॉसिप्स के उसी वीकली शो में जिसका नाम है फिल्मी फ्राइडे। शुक्रवार सुबह 8:15 से ये कार्यक्रम आपकी सेवा में लाइव होता है। हाँ, प्योर लाइव होता है। यकीन न हो तो आज माँ के देख लो, कार्यक्रम सुनो, पूछे गए सवाल का जवाब भेजो और जुड़ जाओ हमारे साथ। वैसे आपको बता दें कि 5 जून के जो हमारे सुपरस्टार थे उनसे तो हमने बातें की 12 जून के कार्यक्रम में, मगर सितारों को शामिल नहीं कर पाए थे। तो आज कार्यक्रम के आगाज करते हुए हम सबसे पहले अपने सितारों की बात करेंगे। और हाँ, पिछले हफ्ते की कार्यक्रम में सिर्फ एक सितारे रहे और एक सुपरस्टार। हाँ, एक स्टार एक सुपरस्टार रहे पिछले हफ्ते के कार्यक्रम में। तो भी रेडी, तैयार हो जाइए आप हमारे साथ। फिल्म में इल्म भी होता है, फिल्म में इल्म भी होता है। क्या इल्म होता है ये बताएंगे आपको बस कुछ ही देर में। आप बने रहो 100.4 FM, बोले तो 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। तो भैया करते हैं शुरुआत। हमने एक गीत सुनवाया था और पूछा था कि इंस्ट्रूमेंटल सुनवा के आपसे पूछा था कौन सा गाना है। बिंदिया चमकने लगी और सुपरस्टार ने पिछले हफ्ते बता ही दिया। तो ऐसा करते हैं उन दोस्तों के नाम पढ़ लेते हैं जिन्होंने सही जवाब हमें भेजे थे। परिमहल कासगंज से आबाद खान, तिलकराज अरोड़ा खुर्जा से, बिल्लामगढ़ कासगंज से एम असलम सैफी, पश्चिम तो गंज डंडवारा से मुनव्वर लल्ला, गणेशपुर गंज डंडवारा ईटा से एम फारूक शेख।

मुसैद अब्बासी ऊपरकोट बुलंदशहर से, सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासकन से पवन कौर, डॉक्टर डी एच बच्चन साहब गणेशपुरगंज डंडवारा से, अजीत भावसार बीरम गांव से और जिला मुरादाबाद बीजना से रिजवान खान, छपर वाली मस्जिद कासकन से मोहम्मद जुहान सैफी, यहीं से थूबा खुसरो, लुबना खुसरो और मोहम्मद जाहिद अली सैफी, महरेरा दरवाजा ईटा से नबी हसन अब्बासी, मास्टर बिठल सरो से काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से, हाजीपुर खजुरिया फरीदपुर से आप पंकज गंगवार ने भी सही जवाब भेजा था और विनेश कुमार निकट बैंक सेंटर चनेटी से भी हमें सही जवाब भेजे, गंज डोनवारा से पप्पू भाई और शबनम सैफी कस्बा जादवपुर से, शमा सैफी यहीं से, बिलराम गेट कासकन से सोनी सैफी, सलीम सेठ सैफी कस्बा जादवपुर जिला बरेली से, तमाम सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। 5 जून के फिल्मी फ्राइडे के सुपरस्टार बनने की बधाई भी आपको। हाँ जी, धन्यवाद।

0: This is 100.4 FM.
1: ये 100.4 FM आकाशवाणी बरेली है और आप इस समय सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो। नाम फिल्मी फ्राइडे है, बातें टोटल फिल्मी होती है। हाँ, आज हम अपने सुपरस्टार से बिल्कुल आखिर में मिलेंगे। पिछले हफ्ते भी हमने आपसे एक सवाल पूछा था, पूरे कार्यक्रम के दौरान कितने गीतों को प्ले किया गया ये आपसे पूछा था। अब राइट आंसर जो भी रहेगा वो बताएंगे सुपरस्टार। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भैया स्टार क्यों नहीं, सिर्फ एक ही स्टार है, बाकी एक सुपरस्टार है। तो एक स्टार कौन है वो भी बताएंगे तभी जब सुपरस्टार से बताएंगे, और सुपरस्टार से आज के इस कार्यक्रम के बिल्कुल आखिर में बात करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, शुरू क्या करते हैं, शुरू हो चुका है प्रोग्राम, मगर बात करने वाले हैं हम आने वाले अगले 19, 20, 21। सिर्फ 19, 20, ना 21। 21 रही है आप, 19 क्यों रहेंगे 20 में, है ना। 21 जून को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और योग से, सच मानिए, योग से हम अपने जीवन शैली को सुधार कर अपने स्वास्थ्य को बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात

कि भैया इस सिर्फ 21 जून को नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें योग को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, है ना। तो योग के बारे में कुछ ये भी बयां कर रहे हैं।

0: दिस इज 100.4 FM.
1: यह 100.4 FM आकाशवाणी बरेली है. न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आप हमें सुन रहे हैं पूरी दुनिया में. हाँ, हम बात कर रहे थे 21 जून की. सोचिए 21 जून जो है ना, वो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और दुनिया के कई हिस्सों में इसका विशेष महत्व है. लेकिन सितंबर 2014 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में 21 जून को वार्षिक योग दिवस मनाने का सुझाव दिया था. अब योग के बहुत सारे लाभ हैं. नियमित योग करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है. ये तनाव कम करता है, लचीलापन और ताकत बढ़ाता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार करके पूरी जीवन शैली को बेहतर बनाता है. भैया आप भी करो योगा, हम भी करें योगा, सब मिलकर करें योगा. योगा से होगा, कहें करें योग रहे निरोग. चलिए बढ़ते हैं आगे, फिल्म को फ्राई करते हैं. सुपरस्टार जी, आपसे निवेदन है कि धैर्य बनाए रखिएगा, हम बिल्कुल कार्यक्रम के आखिर में आपसे बात करेंगे. हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे. आज की जो फिल्म है फ्रैंक पर निकल लिया है, बी रेडी, आप भी तैयार हो जाइए. कलाकार है कंगना रनौत, गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, ईशा डे, श्वेता थाटे. ये एक थ्रिलर और ड्रामा टाइप की फिल्म है. डायरेक्शन मनोज तपाड़िया ने किया है. दोस्तों ये संयोग है जो इस हफ्ते सिनेमा और OTT पर सच्ची कहानियों से प्रेरित कंटेंट का जलवा देखने को मिल रहा है. वेब सीरीज राख और गवर्नर फिल्म के बाद मनोज तपाड़िया निर्देशित भारत भाग्य विधाता भी एक सत्य घटना से प्रेरित है. ये 26/11 के आतंकी हमलों के दौरान कामा हॉस्पिटल और उनकी नर्सों को और उनकी स्टाफ को सलाम करती है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर करीब 400 लोगों की न केवल जान बचाई बल्कि मौत के साए के बीच भी उन्होंने गंभीर रूप से बीमार मरीजों का इलाज भी जारी रखा. ये फिल्म गुमनाम नायकों के हौसलों, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और इंसानियत की मिसाल पेश करती है. कहानी कुछ यूं है. फिल्म मुंबई कर नर्स गीता कांत गंधारे यानी कंगना रनौत के इधर उधर घूमती है, जो कामा अस्पताल में वर्षों से पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही है. एक दिन पुलिस उसे 26/11 हमलों के आतंकी की पहचान के लिए बुलाती है, लेकिन उसका परिवार इस मामले में पढ़ने से डरता है क्योंकि उन्हें आतंकियों के निशाने पर आने का भय सताता है. इसके बाद कहानी 2008 के फ्लैशबैक में लौटती है, जहां अस्पताल की नर्सों की निजी जद्दोजहद, आपसी रिश्तों और रोजमर्रा की चुनौतियों के बीच अचानक सब कुछ बदल जाता है. मुंबई CST स्टेशन पर खूनी हमला करने के बाद एक आतंकी और उसका साथी कामा अस्पताल में घुस जाते हैं. मौत के साए से घिरे उस भयावह दौर में नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल के अन्य कर्मचारी भागने की बजाय अपने कर्तव्य पर अड़िग रहते हैं. वो न सिर्फ आतंकवादियों का डटकर सामना करते हैं बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर सैकड़ों मरीजों की जिंदगी बचाने की मिसाल

0: भी पेश करते हैं।
1: इससे ज्यादा की कहानी तो आपको वहीं मिलेगी जहां बड़े पर्दे पर फिल्म दिखाई जाती है 35 mm 70 mm, उसके बाद भी अब तो कुछ mm रहा ही नहीं है ना। दोस्तों, डायरेक्टर मनोज तपाड़िया की फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो 26/11 जैसी कई बार पर्दे पर दिखाई जा चुकी त्रासदी को देखने का एक नजरिया नया चुनते हैं, वो भी बड़ा ही संवेदनशील। अब तक ज्यादातर फिल्मों में इस आतंकी हमले को पुलिस और आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में दिखाया गया है, लेकिन संभवतः ये पहली फिल्म है जो नर्सिंग पेशे से जुड़ी उन गुमनाम नायिकाओं की बहादुरी के जरिए इस घटना को सामने लाती है। फिल्म का मानवीय पक्ष भी गहराई से प्रभावित करता है और इंसानियत पर विश्वास मजबूत करता है। भारत भाग्य विधाता का पहला भाग नर्सों की निजी और पारिवारिक जद्दोजहद के साथ कई हल्के फुल्के और मनोरंजक पल समेटे हुए हैं। ये समाज में नर्सों को कमतर आंकने वाली सोच पर भी सवाल उठाती है, साथ ही सरकारी अस्पतालों में सीमित संसाधनों और कम स्टाफ के बीच जरूरत से ज्यादा मरीजों की जिम्मेदारी निभाने की वास्तविकता को भी ईमानदारी से दर्शाती है। हालांकि अपने मुख्य संघर्ष तक पहुंचने में ये फिल्म थोड़ा सा समय लेती है, लेकिन पहला भाग दर्शकों को बांधे रखने में सफल रहता है। पर्दे पर असली टेंशन इंटरवल के बाद शुरू होती है जब आतंकवादी अस्पताल में दाखिल होते हैं और फिल्म एक प्रभावशाली थ्रिलर का रूप ले लेती है। बीच बीच में कहानी और स्क्रीन प्ले थोड़ा डगमगाते जरूर हैं, लेकिन डायरेक्टर अपनी सूझबूझ से जल्द ही उसे फिर पटरी पर ले आते हैं। सिनेमाटोग्राफर आयन सिल ने अस्पताल के सीमित दायरे और घुटन भरे माहौल में फिल्माए गए आतंकी हमले के सीन्स को बड़ा इफेक्टिवली ढंग से कैमरे में कैद किया। आर्ट डायरेक्शन भी उल्लेखनीय है जो अपने बारीक आर्ट डिजाइन के जरिए पूरे परिवेश को जीवंत बना देता है। करीब 2 घंटे 5 मिनट की अवधि फिल्म के पक्ष में जाती है। फिल्म के डायलॉग प्रेरित करते हैं, जबकि गाना बड़ा अच्छा है, नब्ज नब्ज ये गीत याद रह जाता है। समर्थ और प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में पहचान रखने वाली कंगना रनौत नर्स गीता गंधारे की भूमिका में एक बार फिर खुद को एक्टिंग की क्वीन साबित करती हैं।

सेवाभावी नर्स के रूप में वो खूबसूरत, मासूम और बहादुर लगी हैं। अभिनय के मामले में फिल्म का एक मजबूत स्तंभ भी वो साबित होती हैं। सहायक कलाकारों में स्मिता तांबे और गिरजा ओक गुड बोले अपने हाँ तो हम कह रहे थे कि जो सहायक कलाकार हैं उनमें स्मिता तांबे, गिरजा ओक, गुड बोले अपने सशक्त अभिनय से अपनी अलग पहचान बनाते हैं। मैट्रोन की भूमिका में श्वेता थत्ते और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के किरदार में आशा शेलार एक सीमित स्क्रीन टाइम के बावजूद प्रभाव छोड़ने में सफल रही हैं, जबकि रासिका आगाशे, प्रिया बेर्डे और ईशा डे ने नर्सों के किरदारों में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संतुलित प्रदर्शन किया है। इतना सब कुछ सुनने के बाद आप देख सोच रहे होंगे भैया क्यों देखें, तो वैसे तो आपकी अपनी मर्जी है, फिल्म देखो या ना देखो, हमारा काम फ्राई करना था वो हमने कर दिया। मगर कंगना रनौत की बेजोड़ एक्टिंग और 26/11 पर इंसानियत और प्रेरणादायक कहानी के लिए आप चाहें तो ये फिल्म देख सकते हैं।

फिल्मी फ्राइडे। शुक्रवार सुबह 8:15 से कार्यक्रम आपकी सेवा में लाइव होता है। बातें फिल्मों की होती हैं और जिंदगी में कई बार ये मौका न मिला है, लेकिन हर दिल में, ज्यादातर दिलों में ये तमन्ना जरूर रहती है कि काश हम भी पर्दे पर आते, है ना। कभी किसी से वादा भी किया होगा, जरा पर्दे पे आने दे, फिर देख तमाशा। ओहो, यही तो है। कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती, क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या मिलता है जिंदगी में, इसका अगर हिसाब किताब करने बैठे ना तो जिंदगी में सोचा बहुत, कल्पनाएं बहुत की, लेकिन पूरी बहुत कम हुई। खैर, जो भी हुई उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए ऊपर वाले का। आप इस समय बॉलीवुड गॉसिप्स का वीकली शो फिल्मी फ्राइडे सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली FM 104 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। दोस्तों, अब सवाल पूछ लेते हैं, तैयार हो जाइएगा। आप सोच रहे होंगे कि आज सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों, तो भैया हर रोज एक ही ढर्रे में नहीं, कभी कभी लीक से हटकर भी चलना चाहिए। कुछ ऐसे नजारे जो छुपे होते हैं वो हमें तभी पता चलते हैं जब रोजमर्रा की जिंदगी है उससे थोड़ा सा इतर सोचें। इसीलिए कुछ बदलाव भी जरूरी है, हमेशा एक जैसे रास्ते पर चलने से। ये माना कि रास्ते का हर पल हर पत्थर याद होता है, लेकिन कई बार वो बेशकीमती हीरा जो साइड में पड़ा हो उसे देखने से वंचित रह जाते हैं। हाँ, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड गॉसिप फिल्मी फ्राइडे आकाशवाणी बरेली। हमारे भी बस का, तुम्हारे भी बस का, यह है टोटल फिल्मी चस्का, फिल्म माय फ्राइडे। ऐसे धुआंधार गर्मी पड़ रही है, ऐसे में चिपक के सुनते रहिएगा रेडियो से न्यूज ऑन AIR पर और हमारी रेगुलर फ्रीक्वेंसी 100.4 FM, बोले तो 100.4 MHz FM। अब सवाल पूछ लेते हैं। सवाल का जवाब आपको बताना है, बड़ा आसान सा सवाल है, और अगर गौर किया होगा आपने तो बहुत जल्दी आप जवाब भेज देंगे। सवाल का जवाब भेजने का तरीका है, सबसे पहले टाइप कीजिए BLYFM स्पेस दीजिए, फिर उसके बाद अपना जवाब, नाम, पता और अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखा कीजिए और इसे भेज दीजिए फिल्मी फ्राइडे एवरी फ्राइडे के पेज पर मैसेंजर के थ्रू। आज रात 12 बजे तक आप सबके जवाब हमें मिल जाने चाहिए। तो सवाल यह है, आज के कार्यक्रम में योगा पर हमने जो गाना सुनवाया आपको, वो कौन सी फिल्म का गाना था? जी हाँ, फिल्म का नाम आपको बताना है। योग पर हमने विशेष गीत प्ले किया आपके लिए, उस फिल्म का नाम बताइए। तो अपने जवाब जल्दी से भेजिए मेरे हुजूर, मगर हम चलेंगे वहां जहां सुपरस्टार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सुपरस्टार से पहले बात करेंगे स्टार की। पिछले

0: हफ्ते हमने आपसे पूछा था प्रोग्राम के दौरान कितने गाने प्ले किए गए, यानी पूरे कार्यक्रम में कुल कितने गीत प्ले किए गए, उनकी संख्या आपको बताना था। तो हमें सबसे पहले सही जवाब जिन्होंने भेजा वो तो सुपरस्टार हैं, और एक सही जवाब मिला वो स्टार हैं। तो जो स्टार हैं वो हैं बीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार जी। तो अजीत भावसार जी आपके लिए ढेर सारी बधाई। और अब चलेंगे वहां जहां सुपरस्टार हैं। सुपरस्टार कौन है उनसे बात करते हैं। देखिए उन्हें आपके सामने ही हम लाइव कॉल लगा रहे हैं, वो कॉल उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक जिंगल तो प्ले करनी बनती है क्योंकि वो हमारे सुपरस्टार हैं। जी हाँ, सुपरस्टार से अभी बता रहे हैं हम, आप बने रहो हमारे साथ। तो अब हमारे साथ पिछले हफ्ते के फिल्मी फ्राइडे के फिल्मी फ्राइडे के सुपरस्टार का स्वागत है कार्यक्रम में, और बहुत बहुत मुबारकबाद बधाई।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग जी।
1: मैं खुर्जा से तिलकराज अरोड़ा।
0: तिलकराज अरोड़ा जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद बधाई आपको फिल्मी फ्राइडे के सुपरस्टार बनने की। बताइए कैसा लग रहा है आपको?
1: मुबारक आपको भी, आज तो किसी चमत्कार से कम नहीं हुआ। मुझे बिल्कुल भी सपने में भी उम्मीद नहीं थी आज मैं सुपरस्टार बनूंगा।
0: अच्छा ये बताइए, हमने गाने गाने गाने गाने गाने गाने कितने सुनवाए थे कार्यक्रम में?
1: 8 गाने सुनवाए थे सर आपने।
0: कौन कौन से याद हैं?
1: ओहो, ये तो बड़ा हार्ड क्वेश्चन है।
0: हाय, यही तो है। पहला गाना तो, एक गाना तो हमने अपने सुपरस्टार की पसंद का सुनवाया था। फिर एक आपने, फिर एक नया गाना सुनवाया था, एक ऊंचा लंबा कद। फिर उसके बाद 6 गानों की मिक्सिंग सुनवाई थी आपको।
1: बिल्कुल राइट।
0: मुझको राणा जी माफ करना, है ना, ढूंढ रही हूँ एक ऐसा दीवाना, कोई ना कोई चाहिए। और फिर उसके बाद सीधे साधे अक्षय वगैरह, ऐसे करके वो 6 गाने मिक्स थे एक साथ।
1: आपने तो फिर भी बहुत गाने सुनवा दिए, आपको याद है, हमें तो एक भी गाना शायद भूल गए।
0: होता है भाई, ये आपके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और याद रखना पड़ता है। तो चलिए भाई, बधाई हो आपको। और बताइए क्या हो रहा है आजकल?
1: बस आज तो बस ये है, हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेंगे, सुपर स्टार बनवाया है आज।
0: बिल्कुल। तो ये बताइए, 21 जून आ रहा है, विश्व योग दिवस है, और योग करते हैं आप?
1: योग सर जी, हम तो यो है ना, ये मानिए हम 5 साल की उम्र से ही करते हैं। आज मेरी उम्र 65 साल है, आज भी करते हैं।
0: अच्छा, अपने जीवन में योग से जो परिवर्तन आया है वो से आप महसूस करते हो, दूसरों के साथ साझा करते हैं?
1: बहुत ही परिवर्तन है जो है, बिल्कुल आज की तारीख में भी हम बिल्कुल फिट है।
0: फिट है
1: योग की? फिट बिल्कुल एकदम।
0: क्या बात है, मतलब चेहरे पर मुस्कुराहट रहती होगी, मन फ्रेश रहता होगा, दिलो दिमाग ताजा रहता
1: होगा, सेहत बिल्कुल ठीक, खाना पीना सब अपने समय पे बिल्कुल ओके।
0: हाँ, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं,
1: कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं,
0: बहुत ना के बराबर कभी
1: दूर होती है।
0: चिंता तो दूर होती है, टेंशन कम होती है, तनाव कम होता है, और हार्ट का जो स्वास्थ्य है ना, हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है।
1: रेडियो सुन के पूरी कर लेते हैं।
0: हाँ, गीत संगीत, गीत गा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है,
1: गीत हो गया ये, रेडियो सुनना भी।
0: सही कहा आपने, रेडियो और गीत संगीत भी एक योग और मेडिटेशन का ही काम करता है।
1: जी सर।
0: तो अब ये बता दीजिए कि हम अपने सुपरस्टार को उनकी पसंद का एक गाना सुनवाते हैं, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज हमें सुपरस्टार बनाया है, ये गाना हम ऊपर वाले को ही समर्पित करते हैं, आरती सुनना चाहेंगे, ओम जय जगदीश हरे।
0: आरती फिल्म से?
1: जी नहीं, फिल्म है पूरब और पश्चिम।
0: ठीक है, हम आपकी पसंद पर ये पूरब और पश्चिम फिल्म से आरती प्ले करेंगे, और इसी के साथ चूंकि आरती के बाद सब कुछ समापन हो जाता है, तो हम चाहेंगे कि कार्यक्रम को भी यहीं पर वाइंड अप करें, यानी कि आरती प्ले करके जाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद तिलक राज अरोड़ा जी, आपको एक बार फिर से पुनः बधाई फिल्मी फ्राइडे के सुपरस्टार बनने की। हमें इसी स्नेह और प्रेम से सुनते रहिए और हमें सेवा का अवसर देते रहिए, धन्यवाद।
1: शुक्रिया।
0: और अब दोस्तों हमें भी दीजिए इजाजत आज के फिल्मी फ्राइडे को वाइंड अप करने की, यानी कि चलने की, और आप सुनिए ये आरती। अगले हफ्ते ढेरों फिल्मी बातों के साथ हम हाजिर होंगे आपकी सेवा में, तब तक आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड फिल्मी भव।

0: Well, me Friday.
1: Cut one.
0: Take one.
2: 5, 6, 7, 8.
3: So, baby.
0: Lights, camera, action. Action.
4: Ladies and gentlemen, hold your heart. Hold your breath.
0: We will meet again.
5: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.4 MHz पर। आइए अब सुनते हैं लोकगीत। श्रोताओ, लीजिए सुनिए अनुपम वर्धन के स्वर में ये लोकगीत।

0: श्रोताओं, इसी लोकगीत के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.4 MHz पर।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसान

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

बोल बच्चन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें, शब्बीर अहमद के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत। आपको याद दिला दें कि आज दोपहर 3 बजे सखियां सुन सकेंगी अपने फरमाइशी गीत हेलो सहेली कार्यक्रम के अंतर्गत। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और नटाली दे लूसियो की आवाजें थी। स्वानंद किरकिरे के बोल अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम विविध भारती पर सुन रहे हैं चित्रलोक।

हवाई ज्यादा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रोचक कोहली की आवाज में, विभु वीरेंद्र पुरी के बोल और रोचक कोहली का संगीत। कार्यक्रम में विद भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक और वक्त है एक अंतराल का।

0: अग्निपथ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अजय अतुल का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

0: कॉकटेल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत। भाई खुशियों के जो छोटे छोटे पल हमें मिलते हैं उन्हें ही चुनिए, यकीन मानिए इन्हीं से रोशन होती है हमारी दुनिया।
1: जुगनू बन के तू जगमगा जहां।

स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए और दिन भर जहां भी रहिए रहिए विविध भारती के साथ। अब आज के लिए दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा। कार्यक्रम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।

0: देर में।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
2: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक कर रहा।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने जवां दिलों की धड़कनों पर राज किया, वो अभिनेता जिनके साथ लोग खूब फिरके।

दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। बंगाल के बारिसाल में उनका जन्म 16 जून 1952 को हुआ था। ये वही जगह है जहां मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास भी पैदा हुए थे। बहरहाल, पिता बसंत चक्रवर्ती, माँ शांतिमयी चक्रवर्ती। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था, पर कॉलेज के दिनों में वो बगावती हो गए, नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए। अचानक भाई की एक हादसे में मौत होने के बाद मिथुन वापस लौट आए। सन 1972 में मिथुन चक्रवर्ती ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 1974 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एक्टिंग का डिप्लोमा हासिल किया। उन दिनों वो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पढ़ाते भी रहे। यहाँ से मिथुन मुंबई आ गए, पर काम आसानी से उन्हें नहीं मिला। गुजारा करने के लिए वो अभिनेत्री हेलेन की डांस टोली में डांसर बन गए थे। ये उनके संघर्ष के दिन थे। कभी फुटपाथ पर सोना पड़ता उन्हें, कभी टैक्सी में सोना पड़ता।

दोस्तों, ये वो दिन थे जब मशहूर निर्देशक मृणाल सेन अपनी फिल्म मृगया के लिए कलाकार तलाश रहे थे। मिथुन को चुन लिया गया। सन 1976 में मिथुन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सब चकित रह गए। पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड, पर इसके बावजूद काम में इजाफा नहीं हुआ। दो अनजाने फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, मेरा रक्षक जैसी फिल्में आईं और गईं, पर मिथुन हताश नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक दौर उनका आएगा, वो दौर होगा जब दुनिया उनके पीछे भागेगी। कामयाबी का पहला स्वाद मिथुन ने तब चखा जब जाने माने कैमरामैन और निर्देशक रविकांत नागाइच ने उन्हें फिल्म सुरक्षा में कास्ट किया। बस फिर क्या था, गन मास्टर 69 लोगों के जहन पर छा गया। जिस मिथुन चक्रवर्ती को लोग नजरअंदाज करते थे, उसे पलट कर देखने लगे। सुरक्षा की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल तैयार किया गया, जिसका नाम था वारदात।

इस फिल्म के बाद कामयाबी के कुछ तमगे मिथुन चक्रवर्ती के दामन में आ चुके थे। मिथुन 80 के दशक के युवाओं के नायक बने, आम इंसान के नायक बने। बॉक्स ऑफिस पर आम जनता उनकी फिल्में देखने के लिए उमड़ती रही। सन 1979 में आई राष्ट्रीय पिक्चर्स की तराना, जिसके गाने आज भी याद किए जाते हैं। बरसात के इस मौसम में, बरसात हो या न हो, आइए इस गाने के जरिए भीगते हैं बरसात में।

0: मिथुन की कामयाबी में उनके फिल्मों के संगीत का भी हाथ रहा है। सन 1980 में आई फिल्म हम पांच बड़े मशहूर सितारों के अभिनय से सजी इस फिल्म में उन्होंने बाजी मारी। लोगों ने खूब पसंद किया ये गाना और ये फिल्म भी।
1: का जानू मैं सजनिया का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया, घर में गरीब के उठाए।

दोस्तों 80 का दशक डिस्को क्रांति के लिए जाना जाता है। पश्चिम से डिस्को की एक आंधी आई और इसने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। भारत में इस क्रांति का परचम बतौर नायक मिथुन चक्रवर्ती ने लहराया और बतौर संगीतकार बप्पी लहरी ने।

दोस्तों, डिस्को गीतों से सजी फिल्मों के अलावा मिथुन रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे और पारिवारिक फिल्में भी। उनकी सब फिल्मों की बातें करना यहाँ तो संभव नहीं, पर उनके करियर का एक बड़ा लैंडमार्क बनी सन 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। सुनिए ये गाना।

दोस्तों इसी बरस यानी सन 1985 में आई जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती की बातें हो रही है आज के फनकार कार्यक्रम में।

0: दोस्तों, सन 1990 में मिथुन चक्रवर्ती के करियर की एक और फिल्म आई, अग्निपथ, मुकुल आनंद की अग्निपथ। इस फिल्म में उन्होंने कृष्ण अय्यर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: तुझे सलाम, मेरे हीरो, मेरे जानू, मेरे बालम, तुझे
2: यो कृष्णन अय्यर यम, ये के इतने सारे नाम।
1: तूने क्यों मुझे बचाया?
2: बस अपना फर्ज निभाया।
1: क्या तू कुछ भी कर जाता?
2: कर जाती।
1: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
2: अच्छा अच्छा, कर जाता।
1: मेरे लिए मर जाता?
2: हाँ मर जाता।
1: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।
2: यू आर इन लव,
1: वी आर इन लव।
0: दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती भले ही कमर्शियल सिनेमा करते रहे, लेकिन जब भी मौका आया उन्होंने सार्थक सिनेमा भी किया। सन 1992 में बुद्धदेव दासगुप्ता की फिल्म ताहा देर कोथा की इस फिल्म के लिए मिथुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रा का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1998 में मिथुन ने फिल्म स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई और उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। इन तमाम फिल्मों के साथ साथ मिथुन कमर्शियल सिनेमा का भी दामन थामे रहे। सन 1993 में आई फिल्म

दोस्तों, तकरीबन 500 फिल्मों में काम करने वाले मिथुन चक्रवर्ती जनता के पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिथुन हाउसफुल 2, कांची, खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में की हैं मिथुन ने। वे बीच बीच में टेलीविजन पर भी नजर आते रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी एक आम आदमी के रजत पट पर आने और छा जाने की कहानी है।

दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। शोध, आलेख और स्वर आपके रेडियो सखी ममता सिंह का। अब कहते हैं नमस्कार।

0: तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दिन भर। आज के फन का
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारी विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हमने अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 20 जून सन 2026 को सायं 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, नवजात शिशुओं के इलाज में थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया कब, क्यों और कैसे, शंकाएं एवं समाधान। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 19 जून सन 2026 को सायं 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिएगा, विषय है नवजात शिशुओं के इलाज में थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया कब, क्यों और कैसे, शंकाएं एवं समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 19 जून सन 2026 को सायं 4 बजे से, यानी आज शाम 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581251700। इसी के साथ रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में। जी हाँ, आइए अब सुनते हैं आपकी पसंद। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के आपकी पसंद के इस कार्यक्रम में। जी हाँ दोस्तों, बी रेडी, तैयार हो जाइए आप भी कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गीतों के लिए। करना ही है आपको आना है आकाशवाणी बरेली के पेज पर और आपकी पसंद से संबंधित पोस्ट में अपना कमेंट कर दीजिए। गीत तो हम चुनिंदा कमेंट्स पर ही फरमाइश पूरी कर पाएंगे, लेकिन गारंटी है अगर आप प्रत्येक श्रोता एक एक कमेंट करेंगे तो हर किसी श्रोता का एक कमेंट शामिल जरूर होगा। तो प्रत्येक श्रोता का कमेंट शामिल होगा, एक ही बार कमेंट करें, बार बार कमेंट नहीं करें, और साथ ही टेक्स्ट मैसेज के साथ अपना कमेंट भेजें। कोई भी पिक्चर मैसेज या इमोजी वगैरह हम शामिल नहीं करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज के आपकी पसंद कार्यक्रम को, और पहला गाना सुनवाते हैं फिल्म अंदाज से, किशोर कुमार साहब की आवाज है। गीत को पसंद करते हैं पद्मा टाकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और इनका पूरा परिवार। हमारे ये साथी हैं कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान अफजाल रजा, मोनिश सादिक रजा और इनके परिवारी जन, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना और इनके तमाम हम नवा, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखिलाल वर्मा, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकबल, नफीजा प्रवीण, गांव नथना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जैसी, सीता और गीता का कमेंट है, रघुनाथपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी कमेंट करते हैं, कमर कॉलोनी बड़वा खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली और इनके सभी साथी, चंडीगढ़ से सतीश अनिजा, बिमला अनिजा, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा, बन्ने बुजुर्ग पलेला टीकमगढ़ से, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसी अब्दुल हक डावर, जयाहुल डावर और मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे जी, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु और गीतिका खोरवाल, पीपरलूड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा का कमेंट है, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजन आयाब और लड्डू, डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी, गगन

संदीप और आरजू जजौरिया गुड्डू के साथ ये पटेल नगर मलोड से कमेंट करते हैं। गांव कुमार हिडा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम सद्दाम और इनके सभी साथी, रामगढ़गंज से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब और इनके तमाम साथी हैं, अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, जावेद अंसारी, सूरज अख्तर, सुराज अख्तर, जस्मीन, सकीला, सना, समा, हिना, रजिया सुल्ताना और इनके परिवारी जन, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, पीतमपुरा नई दिल्ली से रानी गौड़, उमेश गौड़ और इनके सभी साथी, रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर, विविधा वंडलकर और इनका पूरा परिवार, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुष वर्मा, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोडाना, सुदाबा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप और इनके सभी साथी, दादा बाबू रोड गेरडिया झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, असन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और आप हैं सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव, हर्षित शर्मा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार, मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभयमीत, भगवान देई, स्वाति सिंह, तान्या गौतम और इनके सभी साथी, बाकरगंज फरीदपुर पानी की टंकी के पास से सिवहारा बिजनौर से आप हैं आसिफ चौधरी, अरफात चौधरी, अदीब और कादिर चौधरी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव और आप हैं शंकरपुर, उसावा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अनुज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरत श्री यादव, आकूट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए के, संजीव डाबेनाव और आप हैं दयानंद कॉलेज भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र से, विष्णु मिस्किन, ऋतिका, वाणी, आरब, चंद्रकला, काशीनाथ, गणेश, सोनी, आरोही और प्रियांशी, गांव देगांव तहसील पूर्णा महाराष्ट्र से सदाशिव थोरात, कविता श्रेया और बंटी थोरा, नर्मदा पार्क मंगल बेड़ा से माशा आलम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल और इनके तमाम साथी हैं और आप हैं गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, जगदीश जौहरी, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुगू, भाविक सिक्का और इनके सभी साथी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन, आशिक हुसैन, मुन्ना अंसारी और इनके तमाम हमनवा हैं, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु खोरवाल, होली चौक उत्तम नगर से और आप हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु, रिधान खुराना और इनके सभी साथी, उत्तराखंड से ये मैसेज हमें मिला है, उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, अरुष, शौर्य, दिनेश और इनके तमाम साथी हैं। ये कमेंट है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां का, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, अहमदपुर खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, बाबा कुटीर रायगढ़ से, गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, ग्राम ढकिया केसरपुर बांसखेड़ा पीलीभीत से एके राजपूत, अनिल कुमार, कैलाश चंद्र, भगवान दास, मदनलाल, रवि कुमार वर्मा, नवनीत, खुशी, संतोषी, प्रिया और चंचल कुमारी, मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना, कल्पना, मुन्नी कुमारी, चांदनी और नंदिनी कुमारी, और यह जो कमेंट मिला है वो कटरा चांद खा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखी लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य का, जय जिनेन्द्र, श्रोता संघ परवणी महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश संगई, प्रज्ञेश संगई, प्रीतेश संगई और इनका पूरा परिवार, सौंगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र हिया, अंश कुमार चंदन, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल और इनके सभी साथी, गंज डोंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफन, बरमास्टर लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं, बहेड़ी से अंजुम भाई, खालदा बेगम और इनके सभी साथी, मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह धूलापुर मुरादाबाद से, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर,

और ये मैसेज भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा का है। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सभिया, अनस और रेहान, तो आप सबके नाम करते हैं फिल्म अंदाज से ये गीत किशोर कुमार साहब की आवाज में।

0: 1054 से प्राप्त की जा सकती है।
1: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओ, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रोग्राम जारी है आकाशवाणी बरेली FM 100.4 MHz पर। जी हाँ, आपकी पसंद। अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिएगा। हर एक कमेंट शामिल होगा, मतलब प्रत्येक श्रोता का कमेंट शामिल होगा। अब चार कमेंट एक श्रोता भेजेंगे तो चारों थोड़े ही शामिल होंगे, एक ही शामिल होगा। आइए अब प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे, और आपकी पसंद का अगला गाना फिल्म जवाब से आपको सुनवाते हैं। पंकज उदास जी ने इस गीत को गाया है।

गाना फिल्म जवाब से आपको सुनवाते हैं। पंकज उदास जी ने इस गीत को गाया है और सुनना चाहते हैं सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा। इसी गीत में अब साथ लेते हैं आप सबको सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और इनके सभी साथी, और गुजरात पाटन से धीरज बी रवारी और इनके तमाम हमनवा हैं। आप हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और कुसुम कुमार सुरलकर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण साहू, राहुल साहू, चंपा साहू और इनका पूरा परिवार, और आप हैं नई मस्जिद करेली से इंतजार अंसारी, हिबजनूरी, नथू, शाकिर, नन्हे, सूरज मौर्य और इनके तमाम हमनवा, चंद्रेश गौहर, मदनरा गौहर, मयंक, तन्वी और जयपाल यादव अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में हैं। और ये जो कमेंट मिला है वो आप सब दोस्तों ने भेजा है। राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हितल जैन, कृष्णा और राजेश जैन हैं, और आप हैं तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा खुर्जा उत्तर प्रदेश से। कमेंट करते हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर मनदीप कालका, ये हमारे सभी साथी सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज और इनके सभी साथी हैं। अंडार नंदगाड छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा और इनके सभी साथी, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय का कमेंट है। और आप हैं मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लोबना और यश मंसूरी। कमेंट करते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पर्ल डिकेस्टो और विलिस डिकेस्टो, और आप हैं गली सेकलापुर बरेली मौर्य मंदिर से रतन माला मौर्य, मुकेश, प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव और चंद्र प्रकाश मौर्य। बड़ीगढ़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का कमेंट है। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा कमेंट करते हैं। गनगुला धातागंज से इशरत खान, शायरा बेगम, राहुल खान, साबरीन बेगम, शहबाज खान, सैफ, ईशान आजम और अरहान खान है। और ये जो कमेंट मिला है वो प्रदीप सलूजा जी, आपके मैसेज तो हमने पाड़ दिए हैं। चलिए, और प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, प्रथम सलूजा, A5B ब्लॉक जनकपुरी नई दिल्ली से, और हितेंद्र दास जी आसाम से कमेंट करते हैं, और माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, अजीत कसाना जी लदावली जिला मुरादाबाद से कमेंट किए हैं, और रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं। मजनू घटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक हैं, और लसुड़िया, नरसिंहगढ़, राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, नलेश्वर नगर, नरबेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मेहरकर, और आप हैं सरलाही सोकनाहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार, वंदना कुमारी, प्रियंका कुमारी शर्मा और उनके सभी साथी। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पवार और उनके तमाम हमनवा। बीरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, परवीन सुल्ताना, तबस्सुम सुल्ताना, अब्दुल भाई अब्दुल और सुल्ताना, और चारभाटा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मेश्राम, मधु सत्यार्थ और ईवी का कमेंट मिला है। और आप हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाड़कर, राही सरिता गंवाड़कर, प्रिंस एकांश गंवाड़कर, और बदलापुर मुंबई से प्रणीता गंवाड़कर, सिद्धांत और अर्जुन गंवाड़कर, साथ में टुक टुक जी, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गंवाड़कर, सुमित, धोनी गंवाड़कर, परी और इनका पूरा परिवार है। और अभी हमारे कौन साथी आए हैं जी, बिल्कुल आप हैं कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले और इनका पूरा परिवार, और तेज बहादुर यादव, ममता यादव, रोनित और बेबी वानी का आपने कमेंट किया है। गांव मऊ शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से, और अगला जो कमेंट पढ़ते हैं वो राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार और इनके सभी साथी, और गांव पावों पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से दिनेश सिंह रावत, सिद्धार्थ हनी सिंह, मान सिंह रावत, और ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम सुंदरम गुप्ता और इनका पूरा परिवार, बिटू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया, झज्जर हरियाणा से हैं, और शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति और कार्तिक आर्यन वर्मा, राज पैलेस मनुनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं, और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, वैदेही, हंसिका जोशी, अंकिता जोशी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट और इनका पूरा परिवार, जगदीश धाकड़, नायमा रंजुभाई धाकड़, युवराज सिंह, शिवांगी धाकड़, मालवा रेडियो श्रोता संघ, हिंगड़ी आलोट, रतलाम मध्य प्रदेश से ऑक्सीजन पार्क, राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई, हीरामन शिंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडा ने। ये कमेंट हमें मिला है चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता राम और श्याम रवि, आर्यन रंजीत कुशवाहा,

आनंद कुशवाहा और इनके सभी साथी, पुराना तालाब डुमराव से बलीउल अंसारी, आसमानाज अंसारी, शबनम बानो जेल रोड बक्सर से राज एसडी अंसारी, फातमा नाज चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, और ये जो कमेंट है वो सिद्धार्थपुर सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप विश्वदीप और अशोक येले का है। आप हैं पंचकूला सेक्टर 9 से आशु चौक अश्वनी, गोविंद चौक टोनी दीवान, लव दीवान, राधे ढींगरा और इनके सभी साथी, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल निशा और इनका पूरा परिवार। आप हैं गांव खरियाण हणी सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह विजारेनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा अर्जुन, नव्या विजारेनिया, और ये पटियाली रोड गंज डंडवारा से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, अकेल कुरैशी, आजाद कुरैशी, बेबी अरिबा, हरिबा, हबीबा और इनका पूरा परिवार। भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, जावेद राणा, राहत अली, वकील अहमद और इनके तमाम हमनवा हैं। मछली गोदाम कैडी मोड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ सिंह और इनका पूरा परिवार। और आप हैं जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरीत, रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन, सुनीता ऋषिवन, नीलकंद चंद्रहास, हीरेंद्र संजीवन, त्रिलोक, रणजीत सिंह साहू और इनके तमाम साथी। और ये जो कमेंट हमें मिला है, सतरंग श्रोता परिवार, कुंभार गली श्री रामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी दले, ऋषिकेश और जीविका दले, पुनावले पुणे से अजय सोनबने, करिश्मा, अविका, विशाखा सोनबने और इनका पूरा परिवार। एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तनवी बोध। और ये कमेंट करते हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और इनके सभी साथी। गंज डोंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिलू, परवेज बेगम, इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और इनके तमाम साथी, अरुण चंद्र शर्मा, रेणुका शर्मा और उनके साथी, विराटनगर नेपाल से कमेंट किए हैं, गाड़ी खाना चाईवासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा, नितिन, सावन कुमार, सचिन और शक्ति का कमेंट है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित अहूजा कमेंट करते हैं। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमर राज, दिव्या भारती और बिहार से वसीम अकरम, बेबी जोई और गुड़िया खातून हैं। और आप हैं शनि बाजार कस्बा उघेती से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन, देव गुप्ता, प्रियल गुप्ता, कायरव गुप्ता और इनके सभी साथी। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू, मेघलानी, बबीता, सुभाष, योगी, बब्बू और डब्बू का कमेंट है। और आप हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप हैं पीपरपाला पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर, रावर करनाल से विनोद लखनपाल और इनके तमाम साथी हैं। सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंद कौर, मनु जिला पटियाला नाभा पंजाब से हमें कमेंट करते हैं। और फरीदपुर जिला बरेली से ग्रामा पोस्ट नगरिया विक्रम, राज सिंह अनारकली, यश कुमारी, रूपेंद्र कुमार सिंह, पूजा प्रजापति, वंदना, दुष्यंत, प्रियंका प्रजापति, गार्गी और भोलू का कमेंट है। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा कमेंट करते हैं। और बीड शहर महाराष्ट्र से आप हैं नंदकिशोर घटे, साक्षी घटे, संगीता घटे, जयश्री महत्रे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टबूल और पी बी कुल थे। और मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक, अली रहमान कहां से हैं, ईदगाह जनूबी जिला भाखड़ पंजाब से। राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार। और ये कमेंट मिला है कोका बिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मोरा सनील कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंगेल, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल कमेंट करते हैं। राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, चुलबुल रानी और इनके तमाम साथी। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता बमारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू। गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मारूतराव पंचाल और इनके सभी साथी। सोनू रविराज, गुलशन लक्की, जालंधर सिटी पंजाब से। और मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनुखान, अदनान खान, फैजान खान। और आप हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत, परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सोहान, अरजान, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी साथी। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। और आप हैं बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, सविता मखीजा, स्वाति, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और इनका पूरा परिवार। गंगा सिंह रावत जी हैं रामपुर रोड हल्द्वानी से। और आप हैं कदमा जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल और इनके सभी साथी। नई बस्ती गंज डंडवारा से मोहम्मद यासीन आसमी, नाजमा बेगम आसमी, तौसीफ आसमी, मोहम्मद तैमूर आसमी और इनके तमाम हमनवा। राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल गंगवार, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश मौर्य, राजू, चंद्रपाल, उल्फर शर्मा, बबलू गंगवार, वेदपाल, संजीव गंगवार और इनके सभी साथी। कस्बा कुलड़िया नवाबगंज जिला बरेली से। और नागपुर महाराष्ट्र से कमल सानी, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कर, रामगढ़ कैंट से निपी साहनी और इनके तमाम साथी। पटियाली रोड गंज डंडवारा से आमिर हुसैन बेगम, तैयब शेख फौजिया, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और इनके परिवारीजन। आप हैं कौन है भाई, गुजरात से, कच्छ गुजरात से पहली बार शामिल जरूर करेंगे। रमेश चावड़ा जी,
और नाम भी तो लिखिए अपने।

है ना। रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर का कमेंट है, घीसू दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनी भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ, कुणाल दिलवारे राजपुर मध्य प्रदेश से, चंद्र विश्वा बुलढाणा महाराष्ट्र से, किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े, विशाल वानखेड़े, राजुल मोताला महाराष्ट्र से, राज गवई, राजवीर गवई और इनके सभी साथी, मोला गड़िया बरेली मस्जिद के पास से, कैशर शमसी, अजीम सलीम, रजिया शमसी और बेबी का कमेंट मिला है, नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से, बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा और इनके सभी साथी, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से, नारायण भाऊ खड़से, ललिता, आशा रानी, संजना परी, गणेश कार्तिक, देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, स्वाति, प्रज्ञा चौधरी और इनके सभी साथी, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू, निशांत कौशिकी, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा, सैयद ओनो, सैयद नोमान, तनवीर मसर, निजामुद्दीन, राम भाऊ तादले, राजकमल रेडियो लिसनर क्लब आष्टी, जालना मराठ वारा से, धोरतर जोड़ा आष्टी से, दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते और आप हैं पीएस यादव, अजयपाल सिंह यादव, पवन कुमार, प्रभात कुमार, मयंक, मुन्नी देवी यादव और इनके सभी साथी, टोडरपुर बिसौली बदायूं उत्तर प्रदेश से और चौकड़ा धाम सालोनी कॉलोनी सनावत खरगोन से, कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी, नवोदित सिंह, वैभव पाल सिंह, प्रद्युम्न सिंह, ध्रुवी चौहान और इनका पूरा परिवार, और आप हैं डॉक्टर आर वी सिंह, अरजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित, अभय, दीक्षा यादव और इनके सभी साथी, अल्लाहगंज शाहजहांपुर से, और आप सबके नाम करते हैं फिल्म जवाब से ये पेशकश।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जी हाँ दोस्तों, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद और आपका अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली FM 100.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आपकी पसंद का अगला गाना धर्म कर्म से मुकेश जी की आवाज है। मजरूर सुल्तानपुरी के बोल हैं और धुन बनाई है राहुल देव वर्मा ने। पसंद करते हैं आप सब अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, काव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक, विनोद पुरी और इनके तमाम साथी। कस्बा गुंडौर से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा का कमेंट है। जमुना प्रसाद मौर्य, किरण दृष्टि और मानवी मौर्य कमेंट करते हैं। कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से। कामठी नागपुर से किरण शर्मा, कैलाश प्रसाद शर्मा, आशीष कुमार, अमृता शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से समंता शर्मा जी। सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्भी, वाई हिमांश और इनके सभी साथी। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, नंदिनी, शोभा रघुवंशी, पूजा रक्षाताई खड से, रूशाली खड से और इनके सभी साथी। गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडी, कल्पनाताई शैलेश, प्रतीक्षा स्वप्निल और रक्षिता लोखंडी। कमेंट करते हैं रामचंद्र गुप्ता पांडे, राजबाड़े, ग्राम काला पारा सरगुजासी और ये जो कमेंट मिला है राजपुर सूर्यपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति और आप है पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सूफियान, अनस, आयजा, अल्फिया, सदा, हसनैन, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आफिया और इनका पूरा परिवार। ममना हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, राम शरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा भी कमेंट किए हैं। निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा और इनके सभी साथी हैं। एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामोन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश का मैसेज मिला है, कमेंट मिला है। संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, छत्रपति संभाजी नगर अम्भई तालुका सिल्लोड़ से हमारे ये साथी हैं। अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोटके। साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन और रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी। उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी, विनीत नाचानी। देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, गनूला रजक और मुरली क्षत्रिय। श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र से हरिभाऊ बिडबे, अनिकेत सोनवणे, शुभांगी श्रावण और अनिता बिडबे कमेंट करते हैं। बांडीवाली फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और गरिमा बगड़िया, जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, रवि, शिल्पा गर्ग बस स्टैंड मानसा पंजाब से कमेंट किए हैं। मुकेश राजपूत कुमारपुर से और कोई साथी हैं। पंजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागनी श्रीवास्तव, मुस्कान वैंक सेंटर चनेटी बरेली के पास कैंट से, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी और इनके सभी साथी, अम्मा जमील वकील प्रेमी, गुड़िया बेगम, ये सब हैं तहसील रोड गंज डंडवारा से। उन्हेल मध्य प्रदेश उज्जैन से हैं भेरूलाल बख्तरिया, धाकड़ भोला बख्तरिया, प्रवीण, रियांश।

प्रतीक बंकतरिया। बालक राम वर्मा जी जगह का नाम नहीं लिखे हैं। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनकी सभी साथी, संतोष खड़ से और विनोद खड़ से, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हैं। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। रायपुर अनेरी जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन और आफिया परवीन। मदरसा गेट भाऊपुर मरिया हूँ, जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद अजरा तबस्सुम और इनके सभी साथी। मौला हलबयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सादा रानी, हिना कौसर और इनके सभी साथी। दोस्तों यहां तक हमने 192 यानी 192 कमेंट शामिल किए हैं। धर्म कर्म से ये गीत आप सबकी नजर लीजिए, सुनिए।

आकाशवाणी बरेली एफएम 104.4 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप इस समय सुन रहे हैं आपकी पसंद। अगला गीत आपको सुनवाते हैं वारिस फिल्म से। लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजें, वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का म्यूजिक डायरेक्शन। और सुनना चाहते हैं मालियान सरधना वेरड़ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जेवीएम जैन और इनके सभी साथी। इसी गीत में अब आप सबको साथ लेते हैं। आप हैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट भाकर सिटी से रिहाना खान, हफीजुर रहमान खान और इनके सभी साथी, विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी पलोमा, डॉक्टर ईशानी हमें कमेंट किए हैं, सेक्टर 18 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा से, और वैष्णव कॉलोनी सनाबत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री और इनके सभी साथी, कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोने, योगिता प्रली, पार्थ हागोने और इनका पूरा हागोने परिवार। हमारे ये साथी हैं कौन हैं, गौरव मानसी अरोड़ा, बीबीआईपी रोड नई दिल्ली मोती नगर से, और गौरव मदान जी हैं, है ना। चलिए, और एम असलम सैफी, जबुन शाह बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी जाहिद सैफी, आबाद खान ने दीदार रेडियो श्रोता संघ

रामगेट कासगंज से, सफीदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाडो लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव कुश और इनका पूरा खन्ना फैमिली, खरसावा झारखंड से सुकर नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक और इनके तमाम साथी हैं, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, तनुजा ईशान देवांगन पलारी छत्तीसगढ़ से हैं, और सिंधौली मीरगंज से आप हैं जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयुब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और इनके सभी साथी, मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर, बंटी, राजेश कुमार, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमपति भारती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथम सिंह का कमेंट मिला है। सीतामऊ रोड नाटाराम जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से दशरथ सेन, भैरूलाल शर्मा, राजा खेड़ी और इनके सभी साथी, और ये तो कमेंट पढ़ चुके हैं हम, तो क्या किया जाए जी। बार बार कमेंट न करें बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि आप बार बार कमेंट करेंगे तो हम फिर डिस्टर्ब होते हैं, ऐसे में कुछ नाम डबल बोल दिए जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कमेंट सिर्फ एक बार भेजें और ये यकीन रखें कि आपका कमेंट शामिल होगा। गढ़ी कोटा पंचकुला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अक्रम अंसारी, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा, उमर अंसारी और समीना अंसारी कमेंट करते हैं। बोरसरा नाला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, बबली, अंशु और प्रियांशु साहू हैं। भगवान सिंह यादव, अर्पित देव सिंह, मिस्ट्री यादव, मजरा दौलतपुर, आंवला जिला बरेली से हैं, और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हमें कमेंट किया हरदेव, मीका, बलविंदर, बिरक, जैतिक, बिरक, मीका बिरक और इनके सभी साथियों ने। सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, हिंदू, पार्वती, हिमांशु गोदारा, हीरा वाली फाजिल का पंजाब से कमेंट करते हैं, और कमेंट करते हैं गुलाम रोड हर गोविंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित, रितेश, प्रीतिशा संधू और मैक्स, और ये कमेंट टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका, वाणी थांडी का है, और कमेंट करते हैं खुकरावाली से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारासा, राजधानी रायपुर से नीलू, मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और उनके सभी साथी, मानपुर साहब जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, हबीबुर रहमान और इनके तमाम साथी हैं, चनेश्वर गोट कराची से अमर रमेश कुमार खत्री, मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा और इनके तमाम साथी, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला, खुशबू, ज्योति ठाकुर, चरौदा बाजार नवापारा, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से हैं, और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा और इनके सभी साथी हैं, और ये हमारे साथी हैं जावेद इनायत, यूसुफ इनायत और लेसेस्टर इंग्लैंड से कमेंट करने वाले दोस्त हैं, और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी हैं, और महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित कुमार, पीयूष कुमार हैं, हांडीखेड़ा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा हैं, और लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल, निमी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और इनके तमाम साथी हैं। असलगांव बाजार जलगांव जामोद बुलढाणा महाराष्ट्र से राजू माठे, गजानन संजय, ज्ञानेश्वर प्रकाश दांडगे जी, और शेगांव से संतोष शैशकाले जी, गजानन सालोकर, सुरेश भिटे पाटिल और इनके सभी साथी, पदमपुर श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा का कमेंट है, और मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हनान, जीनत जावेद, नाहिदा रानी, आयत, मोहम्मद इंतजार, गांव भोजपुर, तगा चिलकाना, सहारनपुर से कमेंट करते हैं। कोल सिटी बरकाखाना से अफजाल तार, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निफी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक और इनके सभी साथी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा है, फुलाई नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि आकाश और आकांक्षा करवा का है कमेंट, और लहुडरा बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापति, मुरेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, भुवनेश्वरी देवी, कलावल करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी और इनके सभी साथी हैं। कस्बा सेंथल से फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर हुसैन तासिफ, मोहम्मद अजहान अंसारी, अलमीर बशर अंसारी और उनके सभी साथी, हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास, जितेंद्र ऋषि और राहुल का कमेंट है। बाबूदीन मेरठ कैंट से कमेंट करते हैं, और कमेंट करते हैं मोहम्मद अकरम अंसारी, नगरिया कलां बरेली से अलकनाथ मंदिर के पास से आप हैं बेचलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेन्द्र, इला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार मौर्य, विनोद दीक्षित, राज, महावीर कश्यप, रमेश चंद्र सैनी और गौतम राम, गांधीभागा कोला से रमेश कटनकर, वैशाली और धनंजय कटनकर, सरोज चौक अमरावती से ये नाम हम शामिल कर चुके हैं, और फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल, विशु लाड़ी, शालिनी, तिवांशी, वाणी खेड़ा और इनका पूरा परिवार,
कस्बा मीरगंज बिजली घर से आदर्श देवाकर, लव देवाकर, उमेंद्रपुरी गोस्वामी, भाई कल्लू मिस्त्री और पहाड़गंज मल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक का कमेंट है। शाजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से।

संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे कमेंट करते हैं। सिद्ध बाबा भाटापारा छत्तीसगढ़ से संतोष कुमारी, संतोष कुमार, संतोषी, वैष्णव, वैभव, काना, शिवम, वैष्णव और इनके सभी साथी, और गदगांव जिला बदायूं से राजकुमार प्रजापति, सुधीर सागर और इनके सभी साथी, और आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से कुंवर कृपाल सिंह, पूजा परिहार, विक्रम सिंह, दिलीप सिंह, नरेंद्र सिंह और इनका पूरा परिवार, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश आवले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि, शीतल, राजेश और इनका पूरा परिवार है, और पोसंगी पुरगांव जनकपुरी नई दिल्ली से कृष्ण लाल सलूजा, राधा रानी और इनके सभी साथी, और आप है मालवा रेडियो श्रोता संघ गुलबालोद आलोट से विक्रम मालवीय, रचना मालवीय, कमलाबाई, बंदेवी, आकाश माहेश्वरी, विनायक और इनका पूरा परिवार, कमर कॉलोनी बड़वा, खरगोन से प्रवीण और मीना श्रीमाली का कमेंट है, और कमेंट करते हैं हमें राजनांदगांव गदगांव से, गदगांव तहसील बिसोली से राज कुमार प्रजापति और इनके सभी साथी, जिला मुरादाबाद धूलापुर से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून है, और हमारे ये जो साथी हैं वो रामपुर उत्तर प्रदेश से मोहन स्वरूप, दीपक कुमार, सोनू सागर, यामीन, छोटेलाल, पटिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया नारंग, पिंदारा जिला बदायूं से गौतम कुमार सागर, गांव जाखुद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, योगेश, दीपक, पूजा और इनका पूरा परिवार, रतन माला, पुरुकेश, प्रियांशी, पुष्पा, ये कमेंट हमने शामिल कर चुके हैं दोस्त, बार बार कमेंट न किया करें, बड़ी मेहरबानी होगी। तो संतोष एस काले, तेजस, लोकेश, गजानन सालोनकर, राजू माठे कहाँ से हैं, शेगांव से, और कमेंट किया हमें सुरेश कुमार साहू, कमलेश, देवेंद्र, गजेंद्र कुमार, रवि साहू, सोनू, धर्मेंद्र कुमार, राघवेंद्र, भावना, यशदीप और इनका पूरा परिवार, माँ भारती रेडियो श्रोता संघ अकटोहा तहसील लवकुशनगर छतरपुर मध्य प्रदेश से, विजेंद्र कुमार जयजान, कांतारानी, गुंजन साहिल और वाणी जयजान कमेंट करते हैं, भोला कॉलोनी घरौंदा जिला करनाल हरियाणा से, और आप हैं नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह कहाँ से हैं, जिला बेगूसराय बिहार से, संदीप कुमार, संजय कुमार सिंह मोतिहारी बिहार से, यहां तक हमने 267 कमेंट शामिल किए। आइए सुनते हैं आप सबके नाम वारिस फिल्म से ये गाना।

जी हाँ, यह है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप इस समय सुन रहे हैं आपकी पसंद। वैसे हमारी ये कोशिश थी और हम ये सोच के आए थे कि लगभग 300 से ज्यादा कमेंट आएंगे। अभी भी कार्यक्रम में लगभग 10 मिनट का समय बच गया। खैर कोई बात नहीं, आपके कमेंट कम पड़ जाते हैं लेकिन हमारी कमेंट की प्यास नहीं बुझती। बढ़ते हैं आगे और मुझे लग रहा है कि अब तो कार्यक्रम में आज का आखिरी गीत प्ले करना पड़ेगा। देखते हैं अगर हमारे और दोस्त अभी भी कमेंट कर देंगे तो उन कमेंट को हम शामिल करेंगे। फिलहाल आपकी परछाइयां फिल्म से आपको ये गीत सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में और इस गीत को सुनना चाहते हैं जो दोस्त, उन सब के कमेंट कुछ यूं हमें मिले हैं। बस देखते हैं अभी कोई एक दो कमेंट और आ चुके हैं। चलिए तो ये जो फिल्म आपकी परछाइयां का गाना है वो सुनना चाहते हैं प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, फागुनी जोशी, ध्रुवी जोशी और इनका पूरा जोशी परिवार। मगर शामिल करते हैं आप सबको कोटबिल्ला जिला पंचकुला से अब्दुल हमीद, अब्दुल रशीद, बंतो, रुल्दी, खदीजा, सुहाना, रिजवाना, जावेद, परवेज, जाहिदा और रिजवान खान। हमारे ये जो साथी हैं वो ग्राम बजुआ, गंगापुर, भोजीपुरा, बरेली से हंसमुख, हसन, समस, इनाया, शाहनूर, फलकनूर, ताज मोहम्मद, अबनूर और इनके सभी साथी। तिगड़ी कश्वा शीशगढ़ से शाहरुख खान, हसीम खान, अरहम बाबू, किश्वा नूर और इनका पूरा परिवार है। चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम, बुद्ध नगर खंडवा से नदीम, बहजोई से राजू भाई और इनके तमाम साथी। तो आइए सुनते हैं फिल्म आपकी परछाइयां से ये गाना।

और अब दोस्तों चलना पड़ेगा क्योंकि कार्यक्रम में अब तो आपके कमेंट भी नहीं मिल रहे हैं। यहां तक 273 कमेंट आ चुके हैं और आखिरी कमेंट जो अभी अभी हम पढ़ने वाले हैं वो कर्मचारी नगर रोड बरेली से गौतम ऋषि मौर्य, मिहिलाल मौर्य, प्रीति मौर्य, रानी मौर्य और सुनीता मौर्य का है। इस दौरान कोई और अगर कमेंट हमें मिला है तो जरूर शामिल करके जाएंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ के जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि आप हैं तो हम हैं, वरना कहाँ हम इतना दम है। और 273 कमेंट ही रहेंगे, मुझे लग रहा है कि इसे आगे नहीं बढ़ने वाले। तो फिलहाल अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो फिर हम आगे बढ़ लेंगे, क्योंकि समय हुआ पूरा आज के आपकी पसंद के इस कार्यक्रम का। आप सभी दोस्तों ने बहुत खूबसूरत साथ निभाया धुआंधार कमेंट के, लेकिन धुआंधार हमारे मुताबिक नहीं हुए। खैर कोई बात नहीं, अगली बार फिर मौका मिलेगा हमें भी और आपको भी ढेर सारे कमेंट्स धुआंधार कमेंट्स के साथ आपके नाम पढ़ने का। उम्मीद करते हैं कि आज का आपकी पसंद कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो अपनी बेबाक राय, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव और अपनी शिकायतें आप चाहें तो हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपका पत्र मिला कार्यक्रम के लिए, पत्र भेजिए, ईमेल कीजिए, है ना। हमारा कार्यक्रम के लिए पत्र भेजने का पता है, कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं, आपका पत्र मिला @bareli@gmail.com पर। फिलहाल हम चलते हैं, हमें दीजिए इजाजत, कीजिए स्वीकार, सप्रेम नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 100.4 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सबरंग।

आकाशवाणी बरेली FM 100.4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं सबरंग। श्याम बिहारी दास, जय श्री देवीदास सी के स्वर में आइए ये भक्ति रचना सुनते हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोताओं, इस समय आकाशवाणी बरेली से FM 100.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं सबरंग। जी हाँ, सबरंग में आइए अब बी प्राक की आवाज में अगला एक एल्बम सॉन्ग आपको सुनवाते हैं। एल्बम का नाम है जोहरा जबी और पेशकश ये लीजिए, सुनिए।

इस ट्रैक के माध्यम से मतलब वक्त कभी भी बदल सकता है। सबरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से। आइए सुनते हैं अब तेरे बिना एल्बम से ये गीत अभिजीत की आवाज में।

0: सारी रात रोते रहते हैं रुलाते रहते हैं, और सारी रात रोते रहते हैं रुलाते रहते हैं, धक्के लिखे हैं कर्मों में सो खाते रहते हैं, ना कोई हंसाने वाला ना नचाने वाला हमको, तो खुद का हाथ पकड़ के खुद को नचाते रहते हैं, हम इतने पागल हो गए तेरे जाने के बाद के बुझे हुए दियों को बुझाते रहते हैं। अरे उसने हमको छोड़ा है ये बात कह के तेरे जैसे लोग जाने आते रहते हैं।
1: सबरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से, और अब आखिर में आइए सुनते हैं एक भक्ति रचना जुबीन नौटियाल की आवाज में।

0: श्रोताओं, जुबीन नोटियाल और साथियों के सुर में इसी रचना के साथ आज का सब रंग का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 100.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
3: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़ SARDP

0: ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
0: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पज से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
0: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडूंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काईवॉक वहां पे तैयार हो रहा है, पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-2-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में, सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है। जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर। साथ ही साथ गाइड्स, और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पर सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक बृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर

0: सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा, कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं।
1: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज़ हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइन एप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है, इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
0: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बने। इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में, और सरकार इसे कैसे देख रही है?
1: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में, बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
0: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है, और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है, और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
1: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं, और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पर लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए, और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
0: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
1: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, and it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross border

0: समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं।
1: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में, माननीय होम मिनिस्टर, गृहमंत्री

0: जी, हमारे डोनर मिनिस्टर साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे, और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी, और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे, और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2043 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा, वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा, और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सबका इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट, सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, एंड व्हेन दे डू दैट दे ऑल्सो रिटेन देयर यूनिक आइडेंटिटी।
1: थैंक यू सो मच सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन दिस स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद आर मुकुंदन, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। इंटरव्यूअर इज शिशिर सिन्हा, जर्नलिस्ट।
4: नमस्कार। मोदी गवर्नमेंट इज कम्प्लीटिंग 12 ईयर्स। ड्यूरिंग दोज 12 ईयर्स वी हैव सीन वेरियस अप्स एंड डाउन इन द इंडियन इकॉनमी। We have seen challenges like COVID, we have seen challenges like Russia-Ukraine war, and now the current West Asia crisis. Despite all those things, Indian economy has grown more than 7% during those 12 years. And now the expectation is it will grow at much faster rate. So what kind of role India Inc. has to play in this entire growth journey? To talk about all those things, we have with us Mr. R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry. Mr. Mukundan, thank you very much for joining us from Morocco, and it's a pleasure to have you on the show.
5: Thank you very much.
4: Mr. Mukundan, my first question to you, how do you assess the Indian economy of last 12 years?
5: So I think a lot of positives happened, and if I were to say what are the way I would put, sort of contextualize what has happened, you've already given the environment. There were challenges like COVID. External environment is very volatile. There's a challenge of AI coming in. What I think we have achieved is to have a more frictionless economy. There is less friction. And I'll explain what I mean by that. The whole digital payment, Jan Dhan, Jam Trinity, if you really look at it, it has reduced the friction in the economy. Also, the GST, for example, it's a landmark reform. It has ensured that, again, the friction in transaction of goods. If you recall, in the past, trucks would be waiting at state borders for hours. Today, actually, you can reach any part of India and has reduced logistic costs. I think the first F which they have achieved is to get to more frictionless economy. Second, I think what India has done is to use force multiplier, multiple force multiplier. And I'll give you examples. One is, for example, if you look at the way we have handled the PLI scheme, the defense exports, for example, 33 times from what it was at the beginning. So it's not a small feat to start from where we are and we are 33 times. People don't talk about it. And from a net importer, I think we are also now a good exporter of the defense equipment. Mobile phone, for example, has grown 6 times, mobile assembly. Again, of course, aided by PLI scheme. But these schemes were important. They were thought of at various times. And various other elements of reforms were carried through, in my view. For example, the labor codes, the issue related to Bharat Mala.

0: और जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है योग को जान लेना। और आप जब उसको दिल के करीब कर लेंगे, अपने दिल के पास कर लेंगे, तो आप यकीन मानिए आपका दिल, दिमाग, तन, मन सब कुछ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा। फिलहाल हमारे साथ लाइन पे हैं योगा अर्चना वर्मा, योगाचार्य हैं ये, और इनसे हम बात करते हैं योग को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर। हेलो हेलो जी मैम, हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी मैम।
1: हाँ
0: मैम, आपका प्रोग्राम स्वयं सद्धा में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद परंदम जी, धन्यवाद बहुत बहुत।
0: मैम सबसे पहले तो आप अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगी क्या?
1: मैं अर्चना वर्मा हूँ, योगाचार्य हूँ, प्राणी कीलर, और अपनी संस्था को चला रही हूँ, इस्तेकार कर रही हूँ।
0: जी जी।
1: उसके अलावा आध्यात्मिक कार्य में, अपने गुरुदेव के कार्य, सेवा के कार्यों में मैं जुड़ी हुई हूँ।
0: ओके, तो मैम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं की लाइफ में योग कितना काम का है?
1: महिलाओं की लाइफ में योग का जो है बहुत अच्छा रूप है, और महिलाओं का पूरा जीवन जो है बहुत तरह के उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। तो जो प्रारंभिक जीवन काल होता है, जब किशोरावस्था होती है, तब भी एकदम से हॉर्मोन्स के परिवर्तन से उतार चढ़ाव आने लगते हैं, शारीरिक और मानसिक। तो उस समय भी अगर योग अभ्यास प्रारंभ कर दिया जाए तो एक अच्छी सी नींव बन जाती है, और उस बीते पूरा जीवन अच्छे से जिया जा सकता है स्वस्थ रूप में। तो योग जो है नारी को शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक, ये पूरा स्वास्थ्य पूरे जीवन अंतराल में प्रदान करता है। इसलिए योग की बहुत बड़ी भूमिका है, प्रारंभ से लेके जब मेनोपॉज होता है और जब ये पीरियड्स का अंत होता है, वो जो काल है उसमें भी पूरे जीवन काल में अगर योग अभ्यास नारी करती रहे तो मानसिक रूप से, शारीरिक और भावनात्मक रूप से संतुलित रहेंगी और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करेगी।
0: बिल्कुल। अच्छा मैम, महिलाओं के लिए कौन सा योगासन सबसे ज्यादा लाभदायक है?
1: देखिए, योग अभ्यास में जब हम प्रारंभिक अवस्था में आते हैं, जब टीन एज की बात करते हैं, उस समय योग अभ्यास में हम लोग आसनों के तौर में पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन कराते हैं।
0: अच्छा।
1: उसके अलावा बच्चों को धामरी प्राणायाम अवश्य कराते हैं, जो मन के और भावनाओं को संतुलन में लाता है। आपका अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन, इसके अलावा योग निद्रा और छोटे छोटे ध्यान के पैकेज कराते हैं।
0: अच्छा।
1: फिर जैसे जैसे विकास की आयु होती है, जब उनका विवाह होता है, उस समय जो परिवर्तन का काल है, एडजस्टिंग करनी पड़ती है लाइफ के साथ और नया जीवन प्रारंभ होता है, तब बहुत से आसन जैसे भुजंग आसन है, सेतुबंधासन है, इन आसन को हम लोग इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा ध्यान और प्राणायाम, योग निद्रा बेसिक तौर पे अवचेतन मन की ग्रंथियों का निवारण करती जाती है, जिससे किसी भी प्रकार का दोष जो है ना अंदर संचित नहीं होता है और बिल्कुल समग्रता से जीवन जीते हुए उन्नति करते जाते हैं। और फिर अभी इसी प्रयास से आगे बढ़ते हुए जब ये

0: जो निवृत्ति का काल आता है वो भी 10 साल 12 साल चलता है महिलाओं के जीवन में। उस समय जैसे नींद के इश्यू आ जाने लगते, नींद नहीं आती है, हॉट फ्लैशेस है, या स्मरण क्षमता है, या शरीर की सारी जो आंतरिक क्रियाएं, सारा सिस्टम डल होने लगता है, उस समय योग की बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें भी आसन बहुत अच्छे से करे जाते हैं, तो इसमें भी हमारे चक्की चाल आसन है, पूर्ण तितली आसन है, भुजंग आसन है, सेतुबंध है, ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसके साथ ही हम लोग प्राणायाम में प्राणाकर्षण कराते हैं,
1: अच्छा,
0: उच्चाई कराते हैं, ये सब बहुत अच्छी भूमिका है जो पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करते हैं। और जो सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी पे नहीं, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सूक्ष्म कारण शरीर पे इसका पूरा पूरा प्रभाव आता है।
1: अच्छा मैम, महिलाएं जो हैं, जो लोग वर्किंग हैं या जिनके बच्चे स्कूल सुबह सुबह जाते हैं, आजकल तो चलिए छुट्टियां चल रही हैं, और ऐसे में उनको बहुत जल्दी होती है, टिफिन भी बनाना है, उनको अपने घर के भी काम करने हैं, अपने ऑफिस के लिए भी निकलना है, तो क्या योग सिर्फ सुबह ही हो सकता है या किसी भी टाइम आप कर सकते हैं?
0: देखिए, योग जो सुबह करने का सर्वोत्तम काल है।
1: अच्छा,
0: उसके अलावा अगर योग सुबह नहीं आप कर पा रहे हैं तो खाना खाने के 4 घंटे के अंतराल पर आप, अच्छा, योग अभ्यास कर सकते हैं।
1: 4 घंटे के
0: अंतराल? तो उसके बाद आप जो है 20-25 मिनट का एक प्रोटोकॉल बना के
1: जी
0: शाम को भी कर सकते हैं अच्छे से।
1: तो मैम, अगर हम आपसे आपकी लाइफ में पूछें कि आपने कैसे, किससे प्रेरणा ली योग में जाने के लिए, योग करने के लिए, कितना टाइम आप दे पाती हैं अपनी फैमिली को, और ये जो योग के आप बता रही हैं ना कि क्रम चलता है, एक प्रोसेस चलता है कि अगर आप सुबह आपके पास टाइम नहीं है, 4 घंटे के बाद आप योग कर सकती हैं, या जो और आपके घर में कुछ कभी काम वाम होता है, तो कैसे कैसे मैनेज कर पाती हैं, कैसे तालमेल बिठा पाती हैं आप?
0: बहुत अच्छा प्रश्न। तो योग हमारे जीवन में तो प्रारंभ से ही था, शुरुआत में मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की थी,
1: अच्छा,
0: और ईश्वर की शक्ति के प्रति हमेशा आकर्षित थी। तो जीवन में फिर गुरु दीक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल गया,
1: अच्छा,
0: और उन्हीं के उसके बाद जो एक नियम निष्ठा मिली तो वो अभ्यास प्रारंभ कर दिए, और धीरे धीरे उन अभ्यास से क्या हुआ, योग जीवन में बिल्कुल उतर गया।
1: अच्छा,
0: और उससे पता चला कि ये आत्म विकास का साधन है, ये आत्म जागरूकता का साधन है, ये हमें होलिस्टिक अप्रोच पे हमारा डेवलपमेंट करता है, ये पता चला। फिर धीरे धीरे इसी क्षेत्र में शिक्षण भी प्राप्त कर लिया, बहुत से प्रशिक्षण करे, शिक्षा इसी में प्राप्त करके फिर सिखाने के मतलब तौर पे आ गए, और सब सेवा के रूप में प्रशिक्षण देने लगे, और धीरे धीरे इसी प्रशिक्षण के माध्यम से खुद का भी विकास होता गया, और ये सारे कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो समय निकालने के बाद जीवन शैली बन गई, सुबह जागृति हो जाती है क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक ही सेट हो गई अभ्यास के माध्यम से, तो पूरा 8 घंटे के समय पे भोजन कर लेते हैं, समय पे सो जाते हैं, सुबह प्रातःकालीन 3:30-4 बजे तक जाते हैं, और पूरा सब काम सिस्टमेटिक समय पे हो जाता है।
1: क्या बात है, तो क्या क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को जो ये प्रोग्राम सुन रही है योग को लेकर?
0: संदेश तो बस यही है कि अगर आप जीवन को प्रफुल्लता के साथ जीना है, समग्रता के साथ जीना है, सब कुछ प्राप्त करना है, उन्नति करनी है, तो फिर योग को जीवन में अपना लें, थोड़ा ही सा समय दें, 20-25 मिनट का एक प्रोटोकॉल बना के करें, और निरंतर करते रहें सब चीज।
1: मैम बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और आपने एक, जैसे कहता ना कि कोई चीज सोई हुई थी अंदर, उसको आपने जगा दिया, और जो हमारी लेडी लिसनर्स हैं वो सुन रही होंगी और उनको भी ये लगेगा कि हाँ चलो अब नहीं सही, आज से ही शुरुआत करते हैं, योग को अपनी जिंदगी में आत्मसात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और फिलहाल 12:16 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है स्वयं सिद्धांत, तरन्नुम है आपके साथ, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो योग के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं, योग को अपनी जिंदगी में आत्मसात कर चुकी हैं, और लोगों को प्रेरित कर रही हैं कि वो भी योग की तरफ ध्यान दें, यानी ध्यान से ध्यान की तरफ जब हम लेकर जाते हैं किसी को तो हमारी जिंदगी और भी ज्यादा खुशहाल हो जाती है। फिलहाल वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद म्यूजिकल ब्रेक, और नेक्स्ट हमारे साथ कौन रहेंगी उसको जानने के लिए सुनते रहिए रेनबो, द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
4: तौल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों

0: जी हाँ, बिल्कुल। शहर की लड़कियाँ ऐसी ही हैं हमारी, जो बिल्कुल हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, और कह सकते हैं कि एकदम चुस्त दुरुस्त हैं। 12:22 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है स्वयं सिद्धा, और 2 दिन बाकी हैं, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं जब हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल योगा डे। और कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास सेहत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपके पास सेहत है तो समझ लीजिए आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी जो दौलत है वो आपके पास है। और अब जो आजकल की जो थीम है, यानी इंटरनेशनल योगा डे की 21 जून वाली जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो अगर आप चाहती हैं कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त रहें, एकदम लड़की की तरह लगे, तो इसके लिए आपको अपनी जिंदगी में योग को शामिल करना होगा। फिलहाल हमारे साथ अगली जो हमारी कह सकते हैं कि वो योग के लिए प्रेरित करने वाली हैं, योग टीचर हैं डॉक्टर जया श्रीवास्तव जी। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्वयं सिद्धा में।
1: जी धन्यवाद
0: मैम। थोड़ा सा अपने बारे में आप परिचय दे दीजिए हमारे लिसनर्स को।
1: जी, मैं डॉक्टर जया श्रीवास्तव स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, स्टेट आयुर्वेद कॉलेज लखनऊ में।
0: मैम सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है, और जैसा कि ये जो प्रोग्राम है ये हम योग को अपनी जिंदगी में आप कैसे शामिल करके अपनी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, तो मैम क्या कहना चाहेंगी आप उन महिलाओं को जो अभी बहुत ही कम एज में हैं?
1: जी, उन महिलाओं को जो बहुत ही कम योग एज में हैं, वो आजकल बहुत ज्यादा वो सेडेंट्री लिविंग एक जगह हो जाती है, वो रह के बैठ करके कंप्यूटर्स पे काम करते हैं या लैपटॉप वगैरह पे, एक का आजकल चलन चला है जिसमें कि आप अगर बैठे हो लंबे समय तक काम कर रहे हो, जैसे ज्यादातर इंजीनियर्स वगैरह हैं, या फिर जो भी आप लोग में से कोई भी जो सेटिंग वाला काम ज्यादा करता है, वो 45 मिनट्स में एक हल्का वॉक ले ले, 10 मिनट्स का वॉक ले करके आके फिर अपनी सीट पे बैठ जाए।

0: या फिर बैठे बैठे जो आप अपने रिलैक्सेशन, जो आप शरीर में जो जकड़ाहट होती है उसको रिलैक्स करने के लिए वाइब्रेट करके एक योगा का अभ्यास है जो कि 10 मिनट्स का है। आप सीट पे अपने बैठे बैठे काम करते हुए, जिससे कि फ्रोजन शोल्डर या फिर जो आजकल फिंगर्स से काम करते हैं उसपे, तो फिर ये सारे जो फिंगर्स के लिए रिलैक्सेशन, गर्दन और आंखों के लिए रिलैक्सेशन की जो एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैठे बैठे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, ज्यादा सेडेंट्री लिविंग, बैठ बैठ के खाना, और इसकी वजह से पीसीओडी वगैरह का चलन आजकल गर्ल चाइल्ड में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर एडोलेसेंस में भी है, या फिर यंगर जैसे फीमेल ग्रुप में भी बहुत ज्यादा है। उसके लिए योगा का अभ्यास जो है उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जीवन शैली में परिवर्तन के साथ साथ अगर डेली वो 30 मिनट से 45 मिनट्स तक अगर योगा का अभ्यास करते हैं मॉर्निंग में उठकर एक रेगुलर टाइम पे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं उस समय, उसके आधे घंटे बाद करते हैं या उसी समय करते हैं, तो उनको बहुत फायदा मिलेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है और जो मेंटल रिलैक्सेशन है जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा निकल रहा है ना, वो उसकी वजह से उनकी पूरी साइकिल गड़बड़ हो रही है।
1: अच्छा,
0: मेंस्ट्रुअल साइकिल डिलेड हो रही है।
1: अच्छा मैम, एक चीज है कि क्या आप योग भी अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं? आप योग क्रियाएं भी करते हैं लेकिन साथ ही साथ आप पैकेट बंद जो फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, उनको अगर आप खाते रहें और योग भी करते रहें तो क्या इससे हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगा?
0: नहीं, इससे हेल्थ इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है? जो जीवन शैली में परिवर्तन करना है ना, उसमें आपका डेली रूटीन, आप जैसे आयुर्वेद बताता है दिनचर्या रात्रिचर्या का पालन करना है, फिर इसके अलावा आपके भोजन का जो खाने का ट्रेंड है उसको भी टाइम पे खाइए, और नेचुरल फूड्स लीजिए। नेचुरल मतलब जो भी नेचुरल फल सब्जी है, सब कुछ आप प्राकृतिक चीजें लीजिए, पैक्ड चीजें या बंद जो है वो सब में प्रिजर्वेटिव्स है और उसमें ट्रांस फैट्स है, वो सारी चीजें आपको सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगी, ओबेसिटी बढ़ाती है। तो फिर आपका जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, तो आपका हार्मोन भी इम्बैलेंस होगा। तो सिर्फ आपका योग करने से ही नहीं होगा, और फिर ज्यादा मोटे लोगों को वो योग करने में भी तकलीफ होती है। तो आप जो है अपने डाइट को भी रूटीन में लाना है, स्लीप पैटर्न को भी अपने ठीक करना है, टाइम पे सोना। आजकल बच्चे रात में 2-2, 3-3 बजे रात में सोते हैं, उससे बॉडी में कार्टिसोल बहुत ज्यादा रिलीज होता है, तो फिर वो कार्टिसोल फिर ओबेसिटी को ही बढ़ाता है। उसके अलावा मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है, तमाम जो आजकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, स्लीप डिप्रिवेशन हो रहा है। योग निद्रा का पालन करें, टाइम पे सो जाए, 10 से 2 बजे की नींद बहुत आवश्यक है। 10 से 2 के बीच में जो लोग सो लेते हैं उनकी उनके में हार्मोनल इम्बैलेंस कम होता है। सिर्फ योग करेंगे ऐसा नहीं है, सब कुछ एक साथ करेंगे तभी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से उनको मुक्ति मिल पाएगी।
1: अच्छा, एक चीज मैम पूछना चाहेंगे कि जो आजकल की यंग जनरेशन है उनको फोन की कह सकते हैं ऐसी आदत पड़ी है कि मम्मी कितना भी कह लें, पापा कितना भी कह लें, लेकिन उनकी जो आदत है वो कहती है कि अगर हम फोन रख भी देते हैं तब भी हमें नींद वही आती है, 2 बजे आती है, 3 बजे आती है, 1 बजे आती है। तो क्या कोई ऐसी योग क्रिया है जिससे इस चीज पे जो कह सकते हैं एक लत बन गई है, एक गलत आदत पड़ गई है, क्या उससे दूर हुआ जा सकता है? क्या ऐसा कोई योग है जो हम रात में सोते टाइम बच्चों को प्रेरित करें कि ये जो योग क्रिया है उसे कर लो तो तुम्हारी नींद जो है वो अच्छी हो जाएगी? क्या ऐसा कोई एक योग क्रिया है?
0: जी, आप जैसे कि जो बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा मोबाइल की लत है, तो पहले तो पेरेंट्स ही छोड़े मोबाइल का।
1: बिल्कुल,
0: मोबाइल का यूज पेरेंट्स छोड़ेंगे, पेरेंट्स को कम देखेंगे ना बच्चे की, कम कर रहे हैं ये यूज, तो बच्चे अपने आप छोड़ देंगे। फिर सबसे पहली बात है उनका एक सोने का टाइम फिक्स करो। अगर वो 10 बजे रात को सोते हैं तो 8 बजे तक उनको स्क्रीन से अलग कर देना है, ना टीवी देखना, ना लैपटॉप, ना फिर मोबाइल, क्योंकि ये जो ब्लू लाइट होती है ना, ब्लू लाइट आपके मेलाटोनिन जो होता है, जो कि स्लीप हार्मोन होता है, उसको हैम्पर्ड कर देता है, बिल्कुल बंद कर देता है। तो आप 2 घंटे पहले आप उनको अच्छे से खाना वाना खिला करके उस समय आप सोने को। अब जब वो सोने जाता है बच्चा, मान लीजिए 10 बजे बेड पे जाता है, तो उसको फिर आप थोड़ी देर के लिए ओम चैंटिंग करने के लिए कहिए, भ्रामरी प्राणायाम करने को कहिए, है ना, और थोड़ा सा मेडिटेशन, मतलब अपने आप में शांत बैठने को करे। दिन भर में उसने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये सारी सोच डेवलप करने को उसको बोले, और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, फिर योग निद्रा थोड़ा सा अगर वो सीख पाए बच्चा, तो योग निद्रा से उसको बहुत अच्छी नींद आएगी। और 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद बहुत जरूरी है, बिना ब्रेक के, जिसमें कि आप एक बार भी यूरिन करने के लिए भी ना उठे, तो वो अच्छी नींद मानी जाएगी। फिर उसका हार्मोन जो है वो बैलेंस होगा।

0: उसकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जितनी चिड़चिड़ाहट है वो सब खत्म होगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा उस बच्चे का।
1: मैम बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप प्रोग्राम में शामिल हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम।
1: और 12:29 हो चुके हैं और हमारे साथी योगा आचार्य डॉक्टर जया श्रीवास्तव जी, और उन्होंने बताया कि अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि स्क्रीन टाइम से आपको जो दूरी है वो बनानी होगी, स्क्रीन टाइम को कम करना होगा, तभी आप एक खूबसूरत परी की तरह नजर आ सकती हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: और आपको वक्त बता दें, 12:36 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है स्वयं सिद्धा, और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे महिलाएं अपने जिंदगी में योग को शामिल करके एक अच्छी और बेहतर लाइफ को जी सकती हैं। बहुत सारे योगाचार्य हैं जिनसे हमने आपसे बात कराई, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमसे जुड़ेंगी इस प्रोग्राम में। आपको सुनते रहना होगा रेनबो।

0: 12:40 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है स्वयं सिद्धा, और अभी हमने डॉक्टर ऋचा निगम से हम बात करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने बात करी योगाचार्य जी डॉक्टर अर्चना वर्मा थी, उसके बाद हमने बात करी डॉक्टर जया श्रीवास्तव जी थी, और उन्होंने ये बताया कि अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में योग को शामिल करेंगे तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ऐसे चमत्कारी फायदे होते हैं जिनको हम और आप हजारों करोड़ों रुपए की दवाएं खाकर भी नहीं पा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ लाइन पर और हैं, और वो जो हैं वो भी योग इंस्ट्रक्टर हैं, और उनका नाम है डॉक्टर ऋचा निगम जी। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार। मैं सभी श्रोतागणों को अपना नमस्कार कर रही हूँ, क्योंकि हमारे मानना ये है कि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं सबसे पहले योग के लिए जागरूक होनी चाहिए।
0: जी जी,
1: ठीक है। तो मेरा नाम योगिनी ऋचा निगम है
0: जी।
1: और मैं लगभग 25 साल के रिसर्च लेडीज हेल्थ पे करने के बाद में 2013 से अपना सेंटर बालागंज लखनऊ में चला रही हूँ।
0: क्या बात है।
1: तो जो निर्मल योग मेडिटेशन सेंटर के नाम से है, आप गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सभी पर हम लोग अवेलेबल हैं। तो लेडीज के हेल्थ पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा मानना रहता है कि अगर एक नारी शिक्षित है, अगर एक नारी स्वस्थ है, तो वो 3 पीढ़ी को स्वस्थ करती है, और 3 पीढ़ियों को आगे अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए वो पूरी तरह से अग्रसर हो सकती है, क्योंकि उसी को आगे चल के बच्चे को जन्म देना है, तो फिर वो आगे और भी पीढ़ी जो आएंगी वो भी स्वस्थ करने के उनको शिक्षा दे सकती है।
0: तो मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जैसा कि महिला कहती है कि हम बिल्कुल फिट हैं, हम स्वस्थ हैं, तो कैसे पता चलेगा कि वो जो कह रही है कि हम स्वस्थ हैं, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको अपनी हेल्थ में इम्प्रूव करना है, कैसे कैसे जानेगी वो महिला?
1: देखिए, हम लोग होलिस्टिक योग सिखाते हैं, तो इसमें हम लोग जो है वो 3 डायमेंशनल अप्रोच का जो है वो विधा लेते हैं, जिसमें कि हमारा ये मानना है कि एक नारी तभी स्वस्थ कहला सकती है जब वो फिजिकली फिट हो, मेंटली स्ट्रांग हो और इमोशनली बैलेंस हो। अगर ये तीनों चीजें एक नारी में है तो वो अपने आप को स्वस्थ कह सकती है, क्योंकि कोई भी योग की बात करता है तो आजकल इतना भ्रांति फैल गई है कि किसी को अगर योग के बारे में बोलो तो बोलेंगे अरे मैं तो पतली हूँ, मुझे योग की जरूरत नहीं है। तो क्या आप अपने आप को स्वस्थ कह रही हैं अगर आप पतली हैं? क्योंकि आप ये समझिए कि पतला होना, मोटा होना, ये आपके स्वस्थ होने का पैमाना नहीं होता है। आपके स्वस्थ होने का पैमाना है कि आप किसी भी छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा नहीं रही हैं, चीजों को जो भी है उसके रिएक्शंस को सोच समझ करके आप लोगों को दे रही हैं, या फिर आप अपनी डाइट जो ले रही हैं वो संतुलित आहार हो, आपका जो भी सात्विक भोजन है वो आप कर रही हैं, तो घर पे आप जो भी चीज एक्ट कर रही हैं, बच्चों को किस तरह से पाल रही हैं, उनके उनसे आपको जो भी स्ट्रेस हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, या हस्बैंड के साथ में बेचारा जो थका रहा दिन भर के बाद आता है, आप उनके साथ बात करने के बजाय शिकायत का पिटारा खोल के बैठ जाती हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो आप जब खुद में संतुष्ट होंगी तो

0: ही आप दूसरे को संतुष्टि प्रदान कर सकती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि कहना चाहते हैं संशय यहाँ पर कि अगर आपके बैंक बैलेंस में जीरो है तो आप किसी को उधार नहीं दे सकते या किसी को बांट नहीं सकते।
1: बिल्कुल,
0: तो जो खुशियाँ आपको बांटने के लिए आप सोच रहे हो कि लोग परिवार में सब मुझे प्यार करे, सब मुझे सम्मान दे, तो क्या आप वो कर पा रही हैं? आप खुद को सम्मान दे पा रही हैं? आप खुद को प्यार कर पा रही हैं? यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि हर लेडी को सेल्फ लव सीखना चाहिए। और सेल्फ लव वो तभी सीख पाएगी जब वो अपने ऊपर थोड़ा फोकस करेगी, क्योंकि नारी परिवार में सबके ऊपर तो ध्यान दे देती है पर अपने बारी जब आती है तो अपने को सबसे पहले इग्नोर कर देती है।
1: बिल्कुल,
0: तो हमारी ये मुहिम बस इसीलिए है कि हर नारी जागरूक हो कि वो अपने लिए ध्यान देना शुरू करे। और इसी के उस पर हम लोग मेंटल पे भी ध्यान देते हैं, काउंसलिंग वगैरह करते हैं लोग लेडीज की, उनके पर्सनल मैटर्स को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इवन हमारे पास जो लेडीज आती है उनको बच्चे कैसे पालने हैं उनको भी सिखाते हैं ताकि वो बच्चों को एक अच्छा एनवायरमेंट दे पाए। पालने का मतलब चूचू पॉटी वगैरह साफ करना नहीं, इवन वो बच्चों को क्या शिक्षा देनी है, जो बात वो कह रही है वो किस वे में कहना चाहिए, अपनी बात को रखने का एक तरीका। फिर उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस जो भी आती है उसमें आपका योग में हम लोग अष्टांग योग को लेके चलते हैं, जिसमें कि आपका यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सारे एस्पेक्ट हम लोग जो है वो कवर करते हैं। और बहुत ही इजी वे में कि आप दिन भर घर में जो काम कर रही हैं उसी में ही आप योग को धारण कर लीजिए। आपको पता भी नहीं चले कि आप एक योग मैट बिछाएंगे तभी आप योग हो, ऐसा नहीं, आप योग करिए नहीं, योग को धारण कर लीजिए। तो थोड़ा सा ये हमारा होलिस्टिक योग जो है थोड़ा वाइड लेवल पर है, जिसमें कि हम लेडीज को धीरे धीरे करके मोटिवेट करते हैं। और बहुत सारी लेडीज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जिससे कि उनके जीवन में जो भी परिवर्तन आए उससे वो बहुत सेटिस्फाई फील कर रही हैं। तो अभी तो यही हमारा उद्देश्य है इस योग संस्था को चलाने का।
1: तो मैम क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे एजिंग शुरू हो जाती है महिलाओं में 35 के बाद, कहा जाता है डलनेस आ जाती है, फाइन लाइंस आ जाती हैं, और जो तेज होता है चेहरे पे, जो एक स्पार्क होता है, जो नूर जिसे कह सकते हैं, वो कम होने लगता है, क्या योग करके वो चीजों को मेंटेन रखा जा सकता है?
0: बिल्कुल रखा जा सकता है, लेकिन योग करके नहीं, योग को धारण करके रखा जा सकता है। आप ये सोचिए कितना भी आप मेकअप कर लीजिए या कितना भी आप कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आपके स्ट्रेस है माइंड में आपके चेहरे पे वो नूर आ ही नहीं सकता है।
1: बिल्कुल,
0: जब आप रिलैक्स होंगी तब आपके बॉडी के ऑर्गन सही से काम करेंगे, आपके हॉर्मोन्स अच्छे से सिक्रेट होंगे, ऑक्सीजन प्रॉपर जो है वो माइंड तक जाएगी। जब ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो रहेगा आपके अंदर तो आपके चेहरे पर ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है और आप स्ट्रेस भी अपने आप को कंट्रोल कर सकती हैं, जो स्ट्रेस आपको हो रहा है। तो चेहरे पे नूर जो अंदर से आता है, ना कि फेशियल करा करके या फिर से, तो योग को जब आप धारण करती हैं, यानी कि आप अपने जो भी शब्द कह रही हैं वही सोच रही हैं और वही उसका जो है हो रहा है, तब आपका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है। और वो कॉन्फिडेंस लेवल केवल योग से ही आ सकता है। मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं करना चाहूंगी, पर जिम जाने पे आपकी फिजिकल फिटनेस बन सकती है, वॉक करने से आपकी जो है वो एक्टिवनेस आ सकती है,
1: मेंटल
0: योग खुद हाजी
1: मेंटल फिटनेस जो है वो आपको योग के माध्यम से ही
0: आप फिजिकल फिटनेस आप मेंटल फिटनेस भी आपको योग के साथ मिलेगी। और जब आप मेंटली स्ट्रांग होना स्टार्ट करेंगे आप अपने इमोशंस पे अपने आप ही कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे।
1: मैम
0: ये तो है,
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अगर महिलाएं चाहती हैं खूबसूरत दिखना और खूबसूरत लगना तो वो ये फेशियल और ये सारी चीजों को भी इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है कि वो ना करें, लेकिन नेचुरल तरीके से करें। लेकिन अगर आप योग अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे तो फिर आप ऑलरेडी खूबसूरत लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: इसके लिए हम लोग इस समय एक कैंप भी चला रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: जो कि आज से स्टार्ट हुआ है और ये आपका 23 तारीख तक चलेगा, हमारे सेंटर पे भी है। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सिखाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो किसी को अगर संपर्क करना है हमसे तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। लेडीज केवल सिखा रहे हैं, जिसमें कि आपका नंबर ये नोट कर लीजिए कि 8577827023, ये हमारे निर्मल योग मेडिटेशन सेंटर का ऑफिशियल नंबर है, 8577827023। आप इस पे संपर्क करके और इस कैंप में इनरोल करा सकते हैं।
1: निःशुल्क है ये? निःशुल्क है ये?
0: बिल्कुल निशुल्क है, बिल्कुल निशुल्क है। केवल आपको हमें व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करना होगा, ये व्हाट्सएप पे भी नंबर अवेलेबल है। जिसने नहीं नोट किया वो एक बार फिर मैं बोल दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिए, 8577827023।
1: मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा वक्त दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें करी। और
0: धन्यवाद, आपके जरिए हमारी बात भी बहुत सी महिलाओं तक पहुँच पाएगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस उद्देश्य में सभी महिलाएं आगे आए।

0: कि सभी जागरूक हो, सभी स्वस्थ हो, सबके परिवार खुशहाल रहे और सबके बच्चे एकदम अपनी माँ को एक आइडियल रूप में देखे जैसे वो चाहते हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी। और हमारे साथ ऋचा जी थी और उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो अगर आप चाहती हैं वाकई अंदर से खूबसूरत होना, वाकई नूरानी होना, तो फिर आप अपने जिंदगी में योग को धारण कर लीजिए।

0: जी हाँ, अगर आप इसी तरह खूबसूरत दिखना चाहती हैं, खूबसूरत लगना नहीं बल्कि दिखना चाहती हैं, तो फिर आप अपने जिंदगी में योग को शामिल कर लें, योग को धारण कर लें, तो आप जिंदगी को बहुत ही हेल्दी तरीके से जी सकती हैं। और फिलहाल हमारे साथ लाइन पर हैं प्राची जैन जी, जो इस बारे में और ज्यादा बात करने वाली हैं। वक्त बहुत कम है हमारे पास, लेकिन बात ही इतनी विस्तार की है, और ये जो फील्ड है, ये जो क्षेत्र है योग के बारे में, इतना विस्तार है इसमें कि अगर इसमें घंटों बातें की जाएं तो भी कम है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप एक छोटी सी छोटी योग क्रिया को अपनी लाइफ में शामिल कर लेती हैं, तो फिर आपकी लाइफ एकदम वाह बन जाती है, कमाल की बन जाती है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्वयं सद्धा में। मैम, थोड़ा सा अपने बारे में आप संक्षिप्त परिचय दे दीजिए।
1: जी, मेरा नाम प्राची जैन है और मैं एक योग प्रशिक्षिका हूँ। पिछले 10 साल से योग सिखा रही हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, और महिलाओं को, बच्चों को खासकर जागरूक कर रही हूँ योग के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति।
0: तो मैम, महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
1: महिलाओं के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि महिला

0: परिवार में सबका ख्याल रखती है, अपने पति का, बच्चों का, सास ससुर का, लेकिन कहीं ना कहीं अपना ख्याल रखना भूल जाती है। तो मैं महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि अपने स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाइए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकती हैं, अपने आसपास के माहौल को खुश रख सकती हैं और अपने परिवार का और अपने बच्चों का बेहतर तरीके से ध्यान रख सकती हैं।
1: और मैम, 2 मिनट आपको रोकना चाहेंगे, 2 सेकंड के लिए बल्कि। जो महिलाएं 50 क्रॉस कर चुकी हैं, 50 की उम्र पार कर चुकी हैं, उनको कौन से ऐसे योग हैं, योग क्रियाएं हैं जो अपनी जिंदगी में जरूर धारण करना चाहिए?
0: तो जो 50 से ऊपर की महिलाएं हैं, सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में प्राणायाम को जरूर उतारना चाहिए। प्राणायाम हमारी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा होना चाहिए और उसके साथ कुछ सूक्ष्म व्यायाम क्रियाएं हैं जो हमको करनी चाहिए। बहुत इंटेंस वर्कआउट में, योग आसन में अगर हम ना जाए 50 से ऊपर तो ज्यादा अच्छा है। सूक्ष्म व्यायाम है उनको जीवन में उतारिए और सूर्य नमस्कार को अगर हम जिंदगी में ला सकते हैं, अपनी दिनचर्या में उतार सकते हैं, तो सूर्य नमस्कार 12 आसन को मिलाकर बना है और इन 12 आसन में हम हर तरह के आसन को इंक्लूड करते हैं, जिसमें हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, सारी तरह के पोस्चर्स ऐड हो जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार अगर हम कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार करें। और सूर्य नमस्कार को करने की भी कई विधियां हैं, जैसे अगर आप मैट पे नहीं कर पाते हैं तो आप कुर्सी पे भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो अलग अलग वेरिएशंस हैं सूर्य नमस्कार के, और जो कि एक प्रॉपर टीचर की गाइडेंस में ही हम लोगों को सीखनी चाहिए।
1: अच्छा, तो मैम इसमें योग क्रियाओं के साथ साथ खान पान पे कितना ध्यान दें वो महिलाएं जो 50+ हैं?
0: खान पान पे तो देखिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। पूरा पोषण लीजिए, अपने भोजन में फाइबर को इंक्लूड कीजिए, प्रोटीन को इंक्लूड कीजिए। प्रोटीन एक हमारे जो कोशिकाएं हैं उनकी संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्रोटीन को ऐड करना है। हेल्दी फैट्स को ऐड कीजिए, बहुत सारे लोग फैट को छोड़ देते हैं कि फैट नहीं लेना है, नुकसान करता है, लेकिन हेल्दी फैट जैसे हम नट्स खाते हैं, नट्स के रूप में थोड़ा हमको देसी घी खाना चाहिए, तो हेल्दी फैट्स को लेना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट्स को भी छोड़ देते हैं पतले होने के लिए, मोटापे से बचने के लिए, तो एक लिमिट में कार्ब्स भी बॉडी को बहुत जरूरी है। तो पोषित आहार लीजिए, बाहर का खाना मत खाइए, ज्यादा चिकना तेल मत खाइए, और जो चीजें बेसिक प्रिकॉशंस हैं भोजन में कि चीनी, प्रोसेस्ड शुगर नहीं खाए तो बेहतर है, मैदा का सेवन ना करें तो बेहतर है, बाकी आप पूरा पोषण लीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद, फलों को जरूर इंक्लूड कीजिए अपने भोजन में। और समय भोजन क्या खाना है, इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि किस समय पर भोजन करना है वो अपनी एक रूटीन को सेट करना जरूरी है। जैसे हमारे शास्त्र भी बोलते हैं कि दिन ढलने के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए, तो अगर पॉसिबल है तो ऐसा फॉलो कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप शुगर के पेशेंट है या किसी भी बीमारी से अगर आप ग्रसित है तो फिर अपने डॉक्टर की सलाह से ही आपको ये टाइम डिसाइड करना चाहिए।
1: मैम बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आप इस प्रोग्राम में आप शामिल हुई, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: और 12:57 हो चुके हैं, प्रोग्राम स्वयं सदा को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, जिसका नाम है होठों पे तेरी बात। और आज का सवाल आपसे ये है कि जिंदगी में आपको पहली खुशी कब मिली थी? आप हमें मेल कर सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एफएम रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। एफएम 100.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे प्रसारण इस समय सुन रहे हैं। दोपहर के 1 बज चुके हैं। आइए अब आपके फरमाइशी पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत सुनते हैं।

नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के अनुरोध गीत में। तो आप तैयार हो जाइए हमारे साथ गीत संगीत के उस बारिश में भीगने के लिए, जिसकी ख्वाहिश, जिनकी फरमाइश आप सबके माध्यम से हमें मिलती है। तो दोस्तों, आज के अनुरोध गीत कार्यक्रम का आगाज करेंगे फिल्म फरेब के इस गाने से, जिसे गाया है सुनिधि चौहान ने, सईद कादरी के बोल हैं और धुन बनाई है अनु मलिक ने। जी हाँ, मगर ये जो गाना है, जिनके नाम होने वाला है ये गाना, वो कौन कौन है?

तो शुरू करते हैं आप सबके नाम पढ़ना। आप हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमलागंज आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से, वलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। और इसी गीत में आप सबको भी साथ लेते हैं। कौन कौन हैं आप? आप हैं जिला बदायूं कस्बा बिलसी मोहल्ला नंबर 5 से रहमान अलवी, अनोखी बेगम, फिरासत, गुलशन, जानवी, निजाकत, शाइना बेगम, चांद बानो, गुड्डू अलवी, आदिल अलवी और इनके तमाम अलवी परिवार के सदस्य। और ये जो पत्र हमें मिला है, मोहम्मद कैसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम, नवेद शमसी, रजिया शमसी और बेबी का, गढ़िया बरेली मस्जिद के पास से। तो आप सबके नाम फरेब फिल्म से सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में ये गाना।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बरेली। अनुरोध गीत इस समय आप सुन रहे हैं नहले पे दहला, फिल्म का नाम है। सुनिधि चौहान और विनोद राठौर व साथियों की आवाजें। देव कोहली के बोलों को संगीतबद्ध किया है आनंद राज आनंद ने, पसंद किया है। ऑक्सीजन पार्क राहुल अगर अमरावती से आप हैं, सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हीरामन शिंदे, प्रणय।

प्रसिद्धि और प्रतिभा गुंडा ने। इसी गाने में शामिल करते हैं आप सबको। आप हैं दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री गुप्ता, नन्हे मुन्ने, अन्विका, तनुश्री गुप्ता और इनके सभी साथी, पिहरी बाजार, झुमरी तिलैया, गिरिडीह से अभय कुमार, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी, मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश शाह, रिया जिया, टूसी आयुषी, अनुरुद्ध और इनका पूरा परिवार। तो वही आप सबके नाम फिल्म नहले पे दहला से ये गाना।

FM 14.4 मेगाहर्ट्ज़ पर अनुरोध गीत आप सुन रहे हैं। क्या कूल है हम, फिल्म का यह गाना सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाज में, समीर के बोलों को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने, और आप सबके नाम है यह गाना। कौन कौन है आप? हैं बरेली दोरा रोड राम गंगानगर कॉलोनी सेक्टर से आप प्रीतम कुमार मौर्य, उमा देवी, मानवीर त्रिदेव और रोही मौर्य। साखरकर कौन कौन है? ज्ञानेश्वर साखरकर, सूरज साखरकर, आकाश, प्रमिला साखरकर, सिद्धार्थ नगर निवासी अमरावती से, जबलपुर मध्य प्रदेश से माधव नामदेव, सीमा नामदेव और इनके सभी साथी।

यह आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी बरेली एफएम 104.4 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप अनुरोध गीत सुन रहे हैं। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम यमला पगला दीवाना, गीत गाया है ममता शर्मा और जावेद अली ने, बोल और संगीत अनु मलिक का। मगर जिनके नाम करना है ये गाना वो आप सब हैं, कौन कौन है तैयार हो जाइएगा, आपके नाम बोलने वाले हैं हम, तो आप कहां खोए हैं। जी आप हैं कस्बा बहती बतायू से धीरेन्द्र, धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, देवेंद्र गुप्ता, डीके और इनके सभी साथी हैं। इसी गाने में शामिल करते हैं मुल्ला हलबयान शेरकोट बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, राजी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर और इनके सभी साथी, कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश रिंकी, कपिल वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू मौर्य, एरोही, स्वाति मौर्य और इनके सभी साथी। ये पत्र हमें कहां से मिला है? ये पत्र हमें मिला है जहां से वो आप सब हैं। जी सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरोल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुज्ताबा खान, आफिया खान, रऊफ और शहीद। आप हैं गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इनका पूरा कटनकर परिवार, डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, बबलू, विकास सक्सेना, सुहेल अंसारी, मौसुल, अमन अब्बास।

थे अमजद अंसारी, दीपक और इनके तमाम साथी नखासा रोड उसहित बदायूं से। कोई और साथी है क्या? बिल्कुल है, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, सुनीता शर्मा और इनके तमाम तमाम हम नवा। तो चलिए अब सबके नाम, यमला पगला दीवाना से ये वाला गाना।

अब फास्ट म्यूजिक रिदम को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, अब आते हैं थोड़ा धीरे धीरे वाली रिदम के साथ। अनुरोध गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से, न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 100.4 MHz पर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा जी, आप सब सुनना चाहते हैं नई वाली डॉन का यह गाना, सुनिधि चौहान की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लाइका म्यूजिक डायरेक्शन, मगर इस गाने में आपको भी साथ लेंगे खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके सभी साथी।

ऑप्शन के सभी साथी। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। भोपालगढ़, राजस्थान से धर्मेंद्र शिपा और इनके सभी साथी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, अक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से हैं। और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, कटरा चांद खा, पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण दृष्टि और मानवी मौर्य, कस्बा सेंथल जिला बरेली से फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर हुसैन, तासिफ हुसैन, मोहम्मद अजान, अलमीर वशर अंसारी और इनके तमाम साथी। कटरा चांद खा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश मौर्य, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य। तो आप सबके नाम कर रहे हैं फिल्म अपराधी से ये वाला गाना, लीजिए सुनिए, झूमते रहिए।

जी हाँ, अनुरोध गीत में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है हम। शोभा जोशी और मोहम्मद अजीज की आवाजों में गीत को पसंद करते हैं यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार और इनके सभी साथी। शामिल करते हैं आप सबको मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से फजरुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई और तारा चंद्र बबली पीएससी निकटिया से हैं। और ये पत्र हमें मिला है जिला पीलीभीत मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी लोग। लच्छनपुर से आप हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, मोपका भाटापारा से भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित, सुमित्रा साहू और इनके सभी साथी। आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा और इनके सभी साथी। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम

104.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ज़ोन AIRF पर आप सुन रहे अनुरोध गीत। हम पांच फिल्म का यह गाना लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में आप सबने सुना चाहा है। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्रीवास्तव और इनके सभी साथी। और साथ लेते हैं आप सबको। आप हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनू मदीबा और दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। आप हैं अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रेयांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर और बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और इनके सभी साथी। सतीश अनेजा, बिमला अनेजा चंडीगढ़ से हमें पत्र भेजे हैं और ये पत्र मिला है रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और इनके सभी साथियों का। तो आपकी फरमाइश, आप सबके नाम।

और अब दोस्तों आज के अनुरोध गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, फिल्म का नाम विजय, सुरेश वाडिकर और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, निदा फाजली की बोल हैं और धुन बनाई है शिवहरि ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक धींगरा और इनका पूरा परिवार। इसी गाने में आप सबको शामिल करते हैं। आप हैं वारिस अली खान, शकील अहमद, सलीम अहमद, जावेद अली और समीर अहमद, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से, सेक्टर 67 मोहाली, चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज और बिट्टा बजाज, साथ में साहिल जी भी हैं, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शकीर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, वैष्णव कॉलोनी सनावत से हमें ये पत्र भेजे हैं और पत्र मिला है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर और इनका पूरा परिवार, नारायणपुर कोटवा बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया निवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलां से आप हैं अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय। इसी गीत में शामिल करते हैं आप हैं राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना, मनोरमा देवी, अजय और इनके तमाम साथी, छावनी, अशरफ खां, पानी की टंकी के पास, होली चौक, बरेली, उत्तर प्रदेश से। एक पत्र और अभी हमारे हाथ में था, कहाँ गया, मिल गया, जी हाँ, जिला बदायूं, ग्राम दूनेनगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल संगम, वैभव आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरिता और अंतिमा। तो आप सबके नाम करते हैं फिल्म विजय से ये ट्रैक।

दोस्तों विजय फिल्म के इसी गीत के साथ आज का अनुरोध गीत कर ये कार्यक्रम यही भर संपन्न होता है। उम्मीद करते हैं आज का ये सुरीला सफर आपका खूबसूरत गुजरा होगा। तो आपके रेडियो हम सफर गजेंद्र के साथ ये सफर यहीं तक, आगे आपके साथ निभाएंगे आपका ब्रजेश तिवारी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अनुरोध गीत गजेंद्र जी के साथ, और स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है प्रोग्राम रसरंग का। ट्यून किया है आपने 100.4 FM। फिलहाल आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम का टेस्ट क्या है। हाँ जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं गैर फिल्मी गीत, गजल, कवालियाँ और गैर फिल्मी संगीत का वो गुलदस्ता है ये प्रोग्राम, जहाँ लेकर आते हैं हम गैर फिल्मी संगीत के वो सारे ही फूल जो आपको बेहद पसंद है। फिलहाल प्रोग्राम की शुरुआत में आपके लिए लेकर आ रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की मधुर स्वर में ये गजल।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध।
0: डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग और जगजीत सिंह की उस मधुर गजल के बाद अब नंबर है राहत फतेह अली खान जी की मधुर आवाज में। ये कव्वाली लेकर आ रहे हैं आपके लिए, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी।

पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तू देखो। इस खूबसूरत कव्वाली के बाद अब नंबर आया है मधुर शर्मा की मधुर आवाज में इस नज्म का कि काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों।

ट्यून किया है अपने 100.4 एफएम, सुन रहे हैं प्रोग्राम रसरंग। इस प्रोग्राम रसरंग में अगला रस लेकर आ रहे हैं परेश पाहुजा की इस खूबसूरत सी वॉइस में।

पूछता हूँ सतिंदर सरताज की गाई इसी लोक संगीत के साथ ही प्रोग्राम रसरंग अब यहीं संपन्न होता है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हो रहे हैं और आइए अब सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

हम सुन रहे थे वचन फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में, प्रेम धवन के बोल और रविशंकर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत सीमा फिल्म से, मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा

0: की आप तो बादशाह व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत को जो कि है फिल्म बरादरी से तलत महमूद की आवाज है। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: श्री 420 फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं अगला गीत परिवार फिल्म से। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं, शैलेंद्र के बोल है और सलिल चौधरी का है संगीत।
1: दत्त मुरली की धुन सुन आई राधे जमुनक तट पर निरत करत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग्दिग्नाथ राम तत थई राम तत थई राम तत थई।

लहकी मृदंग धनका झट झट झट झट नगिन देश दे सगन नदादा किट झट झट झट झड़न नगिन सग सगन का सगन का किट झट झट सगन का जी सगन नदा साधा किट सग सगन का साधन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा साथ या थे यथ साथ या थे यथ साथ या थे यथ

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी
1: हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
4: परेशान हूं मैं।
3: फैटी लिवर इन्फेक्शन एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन न्यूट्रिशन एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
3: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
3: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: मंगल हो, प्रणाम, नमस्कार।
1: ये बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

भारती सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: इंतजार, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, किसी चीज का, किसी बात का हो या फिर किसी घटना के होने का इंतजार हो, इंतजार थोड़ा मुश्किल काम है ना? तो चलिए इस मुश्किल को आसान करने की कोशिश करते हैं हमारी और आपकी बातचीत से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो सहेली में। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार और झटपट हमें कॉल लगाइए। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज उठी है और हम बात करते हैं आज कॉल करने वाली हमारी पहली सहेली से। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, बताइए कौन बात कर रही है इस समय हमसे?
1: मैं शबाना बोल रही
0: हूँ। शबाना जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: उमरी खदाना।
0: उमरी खदाना
1: जी।
0: अच्छा, बताइए क्या करती हैं आप?
1: इस टाइम तो मैं कुछ नहीं कर रही, दुकान पे बैठी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर रखी।
0: तो ये आपकी खुद की दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की?
1: हाँ जी, अपनी खुद की है।
0: अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या क्या काम करती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर?
1: मैं तो सिर्फ

0: टेस्टिंग जैसे सामान होते हैं, LED, डिस्क, पंखे वगैरह, लाइट का टोटल सामान, और सुधारते भी हैं, रिपेयरिंग करते हैं मेरे हस्बैंड आके, हम लेकर रख लेते हैं।
1: अच्छा, तो आपके हस्बैंड और आप दोनों मिलके इस दुकान को चलाते हैं?
0: जी हाँ।
1: तो जब आप दुकान संभालती हैं तो घर पे बच्चे भी अकेले आराम से रह लेते होंगे, क्योंकि इतने समझदार हो गए?
0: हाँ, काफी समझदार है। बड़ा लड़का 16 साल का हो चुका है, 15 में लग चुका है, और छोटा 12वें साल में लग चुका है, 12 का हो गया, 13 में लग चुका है।
1: शबाना जी, आप दुकान पर जब संभालती हैं तो उसी वक्त रेडियो भी सुनती हैं?
0: जी हाँ, रेडियो सुन लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, टीवी में रेडियो चला लेते हैं।
1: तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: ओम शांति ओम फिल्म का दीवानगी, दीवानगी का मैं गाना सुनना चाहती हूँ।
1: ठीक है, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: सहेली बताइए, कौन बात कर रही हैं हमसे?
1: हम नीता मिश्रा बात कर रहे हैं आपसे।
0: नीता मिश्रा
1: जी, आप
0: नीता,
1: कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ नीता जी। मुझे बताइए कि आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: ये हमने लगाया यूपी से, लखीमपुर खीरी से।
0: लखीमपुर खीरी से आप बात कर रही हैं। बताइए,
1: जी,
0: लखीमपुर खीरी का मौसम इस समय कैसा है?
1: यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही है।
0: अभी तक बारिश के कोई आसार नहीं है?
1: नहीं, बहुत बूंदाबांदी हुई थी कल थोड़ी देर बस।
0: तो जब थोड़ी बूंदाबांदी होती है तो वो तो गर्मी को और बढ़ा देती है, क्योंकि
1: हाँ,
0: उमस
1: तभी
0: बहुत हो
1: बहुत
0: जाती
1: ज्यादा
0: है।
1: गर्मी, बहुत ज्यादा।
0: तो बताइए, आपके शौक क्या क्या हैं नीता जी?
1: हमारे शौक हैं गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए, हम किस सहेली से बात कर रहे हैं?
1: स्वाति विक्रम थोरात।
0: स्वाति जी, आप कहाँ रहती हैं? कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मैं जिला अहिल्या नगर से तालुका पारनेर है, वहाँ से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: मैडम मैं हाउसवाइफ हूँ, दो बच्चे हैं।
0: आपके बच्चे कितने बड़े
1: ओहो,
0: हैं?
1: बड़ा बेटा तीसरी कक्षा में पढ़ता है और बेटी 4 साल की है।
0: तो उनके स्कूल शुरू हो गए हैं अभी?
1: स्कूल तो शुरू हो गए है अब।
0: और आप रेडियो सुनती हैं, तो कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: रेडियो को सभी चैनल में सुनती हूँ,
0: अच्छा
1: जब मौका मिलता है ना तब भी सुन लेती हूँ।
0: अच्छा तो बताइए, आज कौन सा किताब सुनना चाहती हैं?
1: मैं बागबान फिल्म का मैं यहाँ तू वहाँ सुनना चाहती हूँ।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का बागबान फिल्म का गीत।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए, कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मधुर पारिक।
0: मधुर पारिक, मधुर पारिक, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जयपुर, राजस्थान।
0: बड़ा सुंदर शहर है जयपुर।
1: बहुत सुंदर है।
0: यहाँ पर बहुत सारे किले हैं और बहुत सारे देखने वाली चीजें हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आप जयपुर में बचपन से ही हैं या अभी हाल ही में कभी रहने लगी हैं?
1: मैं पहले आगरा रहती थी और अब हम लोग जयपुर रहते हैं।
0: तो आपने आगरा में भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी। आगरा का तो ताजमहल है।
1: जी बिल्कुल, देखा है ताजमहल।
0: और जयपुर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर जयपुर कोई घूमने आए, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां हम जाकर आनंद उठा सकते हैं और बहुत अच्छी यादें बनाकर लौट सकते हैं?
1: जयपुर में बहुत अच्छे किले हैं, जैसे कि एक नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, आप वहाँ जा सकते हैं, बहुत सारी यादें बना सकते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और सिटी पैलेस है, जहाँ पे हमारे पुराने राजाओं की स्मृतियाँ हैं
0: जी।
1: और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, जैसे कि गोविंद देव जी।
0: तो ये किलों की और मंदिरों की नगरी है एक तरह से जयपुर।
1: जी बिल्कुल।
0: मधुर, आप खुद क्या करती हैं?
1: जी मैं एक किंडरगार्टन टीचर हूँ।
0: ये किंडरगार्टन टीचर क्या होता है? क्योंकि टीचर हमने सुना है, मतलब अध्यापिका हैं आप, लेकिन किंडरगार्टन टीचर क्या होता है?
1: किंडरगार्टन टीचर छोटे बच्चों की टीचर होती है। दरअसल ये 4 से 6 साल के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो जो देते हैं वो होती है किंडरगार्टन टीचर।
0: यानी हाल ही में जिन बच्चों ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया है या जो पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, तो इनके साथ किस तरह से आप डील करती हैं? क्योंकि वो बच्चे जो आज तक अभी 4 साल तक की उम्र तक घर पर थे और

0: अब अपने माँ बाप को और अपने परिवार को छोड़कर वो पहली बार किसी सीढ़ी पर जब कदम रखते हैं, वो स्कूल की सीढ़ी है, तो वहाँ उन बच्चों को
1: जी
0: किस तरह संभालती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी?
1: जी बिल्कुल। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दरअसल बहुत ही अंदर से कुछ एंजाइटीज होती हैं, डर होते हैं कि हम किसी नए इंसान से मिलेंगे तो वो हमें हमारी माँ के जैसे प्यार करेगा या ना करेगा। तो वही हम उन्हें एक मदर टच देते हैं, माँ वाली फीलिंग देते हैं, जिससे कि वो कंफर्टेबल हो पाए, हम उनको कुछ नया सिखा पाए।
0: मधुर, आप ये जो काम है किंडर टीचर का, ये
1: जी
0: कितने समय से आप कर रही हैं?
1: जी मैं 6 सालों से ये काम कर रही हूँ।
0: तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको।
1: जी बिल्कुल। और मुझे मेरा समय छोटे बच्चों के साथ बिताना बहुत पसंद है।
0: क्या बात है, छोटे बच्चों के साथ में कई बार हम अपनी जो एंजाइटी, तनाव या हमारी जो समस्याएं हैं ना, हम उन्हें भूल जाते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और परिवार का सहयोग मिलता है जब आप काम करने जाती हैं?
1: जी बिल्कुल, मुझे मेरे पूरे परिवार का सहयोग मिलता है।
0: मधुर जी, आप हमें ये बताइए, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ अभी ना जाओ छोड़कर, हम दोनों मूवी का।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।
2: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ बताइए, हम किन से बात कर रहे हैं इस समय? कौन सी सहेली लाइन पर है?
1: हम सविता शर्मा ग्वालियर से। मैडम जी,
0: सविता शर्मा ग्वालियर से बात कर रही हैं।
1: मैडम
0: बताइए सविता जी, क्या करती हैं आप?
1: हम खाना बनाते हैं। मैडम
0: खाना बनाना आपका प्रोफेशन है या घर में तो हर महिला खाना बनाती है, आप उस बारे में बता रही हैं हमें?
1: खाना बनाने जाती हूँ।
0: तो कौन कौन से खास खाने बनाती हैं ये बताइए।
1: देखो मैडम, हम जो नए नए फैशन के हैं वो तो कम बनाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी पराठा आलू सूखी कटहल की सब्जी यही सब बनाते हैं।
0: और कटहल का अचार भी
1: हाँ
0: डाला जाता है। खाने के अलावा जो अलग
1: हाँ
0: स्पेशल चीजें होती है, अचार है, ये सब चीजें भी बनाती हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, अचार बनाते हैं कटहल उसके लिए मैडम छोटा वाला कटहल होना चाहिए, बीजा वाला नहीं होना चाहिए।
0: तो इन बातों का बड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है।
1: हाँ, उसको उबाल कर उसे एक दिन सुखा लीजिए, थोड़ा सा उसका पानी निकल जाए, फिर इसके बाद में उसको ठंडा हो जाए तो उसमें

0: मसाला पूरा डालकर, तेल डालकर मिलाकर उसे कांच के बर्नी में भर के और रख दीजिए।
1: और ग्वालियर शहर का मौसम इस समय कैसा है? वहाँ बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी गर्मी है?
0: हाँ, ग्वालियर में बारिश भी हो रही, गर्मी भी हो रही है बहुत, और बारिश होती है तो बहुत ही सारा बारिश होती है,
1: मतलब मिला जुला सा मौसम चल रहा है, कभी गर्मी और कभी बारिश।
0: हाँ कभी गर्मी, इस समय तो बहुत धूप है मैडम।
1: अच्छा, तो ये बताइए कि धूप से आपको राहत मिल जाए, इस गर्मी में आपको ठंडक दे जाए, ऐसा कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: हम तो सुनना चाहते हैं दम दम दिगा दिगा मौसम दिगा बिगा, बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह कि सुभान अल्लाह।
1: बहुत सुभान अल्लाह, आपकी बातें भी हैं और आपका गीत भी है, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: रत्ना जी बात कर रही हैं।
1: जी
0: रत्ना जी, आप अपने बारे में हमें बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: बस मैं घर पे ही रहती हूँ।
0: रचना जी, झांसी बड़ा सुंदर ऐतिहासिक शहर है।
1: जी मैम।
0: और आप कब से झांसी में रहती हैं?
1: जी मैम, मेरे तो 20 साल हो गए मेरी शादी को।
0: अच्छा, तो ब्याह कर आप झांसी शहर में आई थी।
1: जी मैं सागर की हूँ, अभी झांसी में शादी हुई, 20 साल हो गए, तो इधरी रहती हूँ।
0: और आप बता दीजिए, आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे शागन फिल्म के गाना सुनना है, बहुत प्यार करती हूँ।

0: मेरी शादी को।
1: अच्छा, तो ब्याह कर आप झांसी शहर में आई थी?
0: जी, मैं सागर की हूँ, अभी झांसी में शादी हुई, 20 साल हो गए, तो इधरी रहती हूँ।
1: और आप बता दीजिए, आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मुझे शागन फिल्म के गाना सुनना है, बहुत प्यार करती हूँ।

0: विमलेश नमस्कार।
1: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
0: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
1: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
0: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
1: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
1: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
0: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
1: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
0: जी,
1: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
1: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
0: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
1: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
0: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
0: बिल्कुल।
1: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है, इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं, डल का मतलब ही झील होता है, इसलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहाँ ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हो रहे हैं और आइए अब सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ

0: वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहाँ कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है, यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-440-5559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो
2: जहाज पर नौकरी करता
1: है, जो रहस्यों और रोमांच से
2: करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है, कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने
1: आप को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
1: थोड़ा सा फंबल था,
2: कि कोई चीज
1: तो अब आज का कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर।
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया।

उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया।

थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलीपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं ना मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं। पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां

सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सबके बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े,

0: तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

0: तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।
1: नाम है हमारा CO2 और CH4।
2: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
3: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
1: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
4: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम

0: ट्यून किया है आपने 100.4 FM, सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं शाम के ठीक 4। श्रोताओं, समय हो गया है प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का। नमस्कार, ट्यून किया है आपने 100.4 FM और सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और आप जानते हैं ये प्रोग्राम आपके बेहद करीब है, और करीब क्यों है, क्योंकि इसमें बात होती है हमारे और आपसे ही जुड़ी हुई, और उसमें बात भी हम और आप ही करते हैं। हाँ, उसके माध्यम दो तरीके के हैं। एक तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 0581251700, और दूसरा आप हमारे आज के जो भी विषय होते हैं उसका जो पोस्ट होता है उस पर कॉमेंट करके। तो श्रोताओं, आपको बताते चले कि आज है नेशनल रीडिंग डे, यानी कि राष्ट्रीय पठन दिवस, और ऐसे में जो है हमारा आज का विषय है कि पढ़ने की आदत विकसित करना कितना जरूरी है, ये तो हमारा विषय हुआ। और वैसे भी कहा जाता है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, जीवन में जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ कभी ना कभी आपके जीवन में जरूर काम आता है। और पढ़ने की जो आदत है ये हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है, हमारे आचरण का विकास करती है, हमारे चरित्र का विकास करती है। तो हमें जरूर पढ़ते रहना चाहिए, न सिर्फ एकेडमिक्स यानी कि न सिर्फ पढ़ाई की बातें, बल्कि ज्ञान की बातें, धर्म की बातें, जो भी आपको और आपके चरित्र को उच्च कोटि का बनाए, वो सारी ही बात है। अब इतनी सारी बातें तो हो गई पढ़ने के बारे में, ढेर सारे लिसनर्स हमें फोन कर रहे हैं, और इस कड़ी में आइए देखते हैं हमारे पहले लिसनर कौन है और जानते हैं उनके विचार। हेलो जी, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: तौफीक मंसूरी।
0: तौफीक मंसूरी जी कहाँ से बात कर रहे हैं? तो तौफीक जी क्या करते हैं आप?
1: सिलाई का मतलब सर।
0: सिलाई का काम है, वेरी गुड। तो तौफीक जी, आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं?
1: बढ़िया बात सर, बहुत बढ़िया।
0: आज का विषय है कि पढ़ने की आदत डेवलप करना कितना जरूरी है।
1: सर पढ़ना सर बहुत जरूरी है आज दौर में सर, जिंदगी में
0: जी
1: सर बिना पढ़े का सर गुजारा नहीं आज दौर में।
0: जैसे
1: सर पहले का टाइम था सर, पढ़ने भी काम चल जाता था सर।
0: हाँ हाँ,
1: आज के दौर में सर पढ़ा हुआ ना बहुत जरूरी है सर।
0: अच्छा, कोई एक बात बताइए जिसमें पढ़ाई बहुत काम आती है, आप ही के प्रोफेशन से जुड़ी बताइए। मान लीजिए सिलाई का आप काम करते हैं, सिलाई के काम से ही जुड़ी कोई बात बताइए।
1: सर सिलाई का हमारा ऐसा है, अगर पढ़े हुए नहीं है सर ये बेकार है काम।
0: अच्छा,
1: काम कर ही नहीं पाएंगे सर।
0: अच्छा, कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है पढ़ाई की आपको सिलाई में?
1: सर इसमें सर सभी जरूरत पड़ती है, इसमें सर इसी टाइप में नंबर भी देखना पड़ते हैं।
0: अच्छा,
1: और सर नाम भी लिखना पड़ता है कस्टमर का सर।
0: वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।
1: कस्टमर का नाम भी लिखना पड़ता है सर।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो तौफीक जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि भाई पढ़ाई लिखाई करना और आज के डेट में बिल्कुल जरूरी है। पहले थोड़ा बहुत काम चल भी जाता था, लेकिन अब काम चलना मुश्किल है,
1: मुश्किल है सर।
0: तो तौफीक जी, आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है साजन का घर
0: जी,
1: और उसमें गाना है अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हेलो,
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहां से?
2: थाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान नजर।
1: अच्छा अच्छा सुल्तान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
2: भैया आज करता हुआ अच्छा बनाया आपने सर जी।
1: अरे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कैसे हैं सुल्तान जी?
2: जी हाँ सब ठीक है, आप बताइए सर आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं। तान जी क्या करते हैं आप?
2: मैं जॉब पे बैठता हूँ, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली में जॉब है कपड़े की।
1: अच्छा कपड़े की, वेरी गुड। तो सुल्तान जी आज का हमारा विषय मालूम है आपको?
2: जी किताबों के ऊपर है
1: जी। किताबें पढ़ना या पढ़ने की आदत को डेवलप करना क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है?
2: जैसे सर जी आज के टाइम तो देखो आज लोग मोबाइल में ज्यादा टाइम दे रहे हैं, लेकिन किताबों में अगर टाइम दे देना ज्यादा तो शायद है कि हमारे अंदर वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है किताबों से, जो फोन से कभी जिंदगी में नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही बात,
2: चाहे साइंस और तरक्की कर ले ज्यादा जो चीज किताबों के अंदर है वो फोन के अंदर नहीं आ सकती।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुल्तान जी, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना कि जैसे

0: ये कि हम अगर आपने और आपके संबंध यानी आकाशवाणी से जोड़ के इस चीज को देखें, तो जैसे कमेंट हम लोग पढ़ते हैं है ना, और एक लेटर पढ़ते हैं, तो कमेंट पढ़ते
1: तो लेटर ज्यादा फायदेमंद होते हैं कमेंट से ज्यादा।
0: अरे क्या प्रेम होता है उसमें, इतना जो है अपनत्व की भावना होती है उसमें, तो पढ़ना वैसे भी बहुत जरूरी है चाहे किसी भी माध्यम से।
1: ये है कि थोड़ा सा ये जमाना चल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, तो हम लोग इतना ये इससे ध्यान दे रहे हैं
0: जी।
1: बनने से पहले सिर्फ किताबों से ही सारी चीज, चाहे वो कोई तीर्थ स्वारों की डेट होती थी
0: जी,
1: किताबों तो करती थी
0: बिल्कुल। तो अच्छा
1: और सारी जानकारियाँ,
0: ये आपके काम में पढ़ना कितना जरूरी है?
1: अरे सर जी, पढ़ाई तो आजकल हर किसी के काम में जरूरी है, चाहे वो घास काटने वाला भी हो ना, तो वो भी पढ़े लिखा ही होना चाहिए आज के टाइम में।
0: जी जी,
1: बिना पढ़े की जिंदगी खराब है आज के टाइम।
0: हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं ये बात तो कॉमन है, सामान्य बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसको आपके काम से जोड़ के देखें, तो आपके काम में पढ़ाई कहाँ काम आती है?
1: हमारे इसमें आती है कि हमें कोई हिसाब लिखना है, जोड़ना है
0: जी,
1: किसी के हमें जो है कपड़ा बेच के उसको हम जीएसटी दे रहे हैं, तो सारा कुछ है पढ़ाई के ऊपर।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल।
1: इसके बिना तो फिर हम कुछ कह नहीं सकता, पढ़े लिखे नहीं हो और किताबों में ना पढ़े हम ये चीजें। अगर
0: बिल्कुल बिल्कुल सुल्तान जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप कोई भी काम कर रहे हो पढ़ना जरूरी है, और काम न भी कर रहे हो तो भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। कितनी अच्छी सुंदर कहानियां हैं, इतना सुंदर कविताएं हैं, इतने सुंदर शेरो शायरी है, इतनी सुंदर गजलें हैं, तो पढ़ना तो बहुत जरूरी है। खैर सुल्तान जी,
1: किताब खुलती है सर, उसकी खुशबू किताब
0: करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, आपने तो
1: दिल में सर उसकी जो याद होती है ना, फिर वो हमेशा रहती है, उनकी तो डिलीट हो जाती है एक मिनट में।
0: बिल्कुल,
1: वो याद जो हमने पढ़ी है कहानी, कभी हमने पढ़ी रखी है, बहुत सारी कहानियां किया जाते नहीं कर सकते क्योंकि टाइम सीमित होता है।
0: जी जी जी,
1: प्रोग्राम का
0: बिल्कुल। तो सुल्तान जी आपने हमें फोन किया, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: सर सुना दीजिएगा, चांद तारों नजर आया तेरा तेरा।
0: हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: जी
0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहाँ से?
0: सर मैं सिद्धार्थ नगर इज्जत नगर बरेली से राजेश श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ।
1: राजेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, आज का विषय है पढ़ना या पढ़ने की आदत डेवलप करना कितना जरूरी
0: है। मेरे तो मानना यह है कि बचपन से ही जो हमारे घर वाले हमें संस्कार देते हैं
1: जी,
0: उसमें पढ़ाई भी शामिल है
1: जी।
0: अगर पढ़ लिखा इंसान तो गुजर जाते हैं कि एक जानवर की तरह होता है
1: जी।
0: पढ़ने लिखने से हमें बहुत सारी सीख आती है, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, इसलिए तो पढ़ाई लिखाई को जरूरी बताया गया है
1: जी। तो बिल्कुल सही बात है, पढ़ा लिखा इंसान जो है संस्कारी होता है और एक संस्कारित समाज की स्थापना करता है, और आज की डेट में तो बहुत जरूरी है पढ़ना। और बात चाहे सिर्फ पढ़ाई लिखाई की ही ना हो, बात कुछ भी पढ़ना हो, हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम जरूर आता है। तो राजेश जी, आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
0: सर आज गीत सुनवा दीजिए, फिल्म हिम्मत का गीत है, मोहम्मद रफी का गाया हुआ, शुक्र के तू है लड़का।
1: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार जी,
0: नमस्कार।
1: आपके बहुत पुराने श्रोता हूँ, फर्स्ट टाइम बात हो रही है आपकी तरफ।
0: अच्छा
1: जी बिल्कुल, ऐसे मानो 25 सालों से आपसे जुड़े हुए हैं आकाशवाणी
0: अच्छा
1: बरेली चैनल से।
0: हमारे कौन से श्रोता हुए आप?
1: जी ब्रजेश सिंह, ग्राम चमरुआ, जिला संबल से बात कर रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा जी, ब्रजेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और आपकी बात हो रही है ब्रजेश तिवारी से। तो ब्रजेश
1: बरेली
0: जी
1: के
0: क्या करते हैं
1: एफएम
0: आप, क्या करते हैं?
1: जी काम तो सिलाई का भी है और चिनाई का भी कर रहे हैं, राजगिरी का जैसे।
0: अरे बाप, वेरी गुड। तो ब्रजेश जी, आज हमारे कार्यक्रम में आज का विषय है कि पढ़ाई की आदत को विकसित करना, डेवलप करना कितना जरूरी है।
1: जी इतना जरूरी है कि हम खाना छोड़ दें और पढ़ाई को जरूर करें,
0: क्या बात है,
1: और कितनी भी हो सके मेहनत करें जो कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें। लेकिन आने वाले समय में ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे अंगूठा टेक रह जाएं। आज भी मैं छोटे छोटे बच्चे हमारे 8 साल 6 साल पूरा काम छोड़ के पहले उन्हें स्कूल छोड़ूंगा समय से।
0: अच्छा
1: बिल्कुल, कितना ही बहाना लें, कितना ही सिर का दर्द पेट का दर्द, बच्चे जैसे बहुत सी बात बना के कह देंगे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उनकी बात टाल के स्कूल छोड़ के आता हूँ समय।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
1: कहने का मतलब यह है पढ़ाई बहुत जरूरी है आज के टाइम में।
0: अच्छा कुछ दो चार फायदे गिनाइए पढ़ाई के।
1: पढ़ाई के ये फायदे हैं, जैसे आपको नौकरी जो मिलेगी तो पढ़ाई से मिलेगी।
0: बिल्कुल।
1: आप कहीं भी सफर करेंगे तो आप पढ़ाई के बिना किसी बस में बैठ नहीं पाओगे, जानकारी तुम्हें है नहीं और किसी से तुम नंबर मिलवाओगे या किसी से पैसे डलवाओगे वो तुम्हारे साथ धोखा कर देगा, तुम्हें जानकारी नहीं है तब।
0: बिल्कुल।
1: कुछ ऐसा होता हमसे गिनती आ नहीं रही, किसी ने हमें पैसे दिए हैं 100 के बदले में, जैसे हमें लौटाए हैं उसने 90 रुपए, तो कुछ आदमी जब ना जानकार तो एकदम जेब में रख लेते हैं सही से। लेकिन उसने को अगर गिनती मान लें तो उसके 90 की जगह 100 देने पड़ेंगे उस दुकानदार को। मेरे साथ भी कई जगह ऐसा हुआ है, जैसे हमने कोई सामान लिया किसी से तो उसने फुटकर पैसे जल्दी से हमें दे दिया, चलता बना वो एकदम।
0: अच्छा
1: तो हमने वो पैसे एंट्री करे, भाई कितने का सामान हमें दिया, कितने रुपए वापसी करे, तो कई जगह हमें ऐसा हुआ 20-20 रुपए हमें माइनस होकर मिले।
0: अच्छा
1: तो हमने वो सामान भी पलटी करके दे दिया उसे, जो पैसे दिए उसने वो पैसे भी वापसी करे उसे हमने।
0: बताइए
1: अभी इतने का सामान इतने रुपए लौटाए तुमने, क्यों कम क्यों करे हमसे,
0: मतलब
1: वो गलती मान लेते हैं।
0: जीवन में हर कदम पे आपका पढ़ाई जो है वो आपकी काम आने वाली है।
1: और देखो खेती में सबसे ज्यादा पढ़ाई जरूरी है जी, हम कोई दवाई लाते हैं करने जैसे, तो उसकी किस भी लिमिट में हमें दवाई मिलानी है, जो कि आपकी लिमिट ज्यादा होगी तो वो एक तरह से केमिकल ही तो होता है दवाई।
0: बिल्कुल सही बात है, अगर हमने उसे सही मात्रा में नहीं प्रयोग किया तो। बिल्कुल। फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: तो मोहम्मद रफी का सुनवा दीजिए, जैसे ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।
0: हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहां से?
1: आपका शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी, तो हमारे संभाजी नगर से हमें फोन करने वाले हमारे श्रोता का क्या शुभ नाम है?
1: बाहुबली मेरा नाम है भाई साहब।
0: बाहुबली जी, वाह, बड़ा सुंदर नाम है आपका।
1: जी, जब जब मैं अपने नाम का उच्चारण करता हूँ तो सामने वाला थोड़ा अचरज में गिर जाता है। कहीं इन्होंने बाहुबली मूवी देखकर तुम ग्रह नहीं रखा।
0: हाँ
1: राई अच्छा,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ऐसी कोई बात नहीं है। बचपन में जन्म के साथ ही हमारे माता पिता ने हमारा नाम बाहुबली रखा
0: हाँ
1: और सुनने वालों को थोड़ा सा आश्चर्य होता है,
0: तो
1: स्वाभाविक है।
0: हम इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं बाहुबली जी, कि कहीं बाहुबली सिनेमा तो आपके नाम को देखकर नहीं बन
1: नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं भाई साहब।
0: गई?

0: इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। जैसा जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए, पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ और लास्ट 24वें भगवान महावीर
1: जी।
0: ऋषभ देव को दो पुत्र थे, एक भरत और बाहुबली। भरत ने तो साम्राज्य संभाला और उसके नाम से हमारे भारत भूमि को भारत नाम गिरा, और जो बाहुबली थे अपने आत्म कल्याण के लिए वन में चले गए, और उन्होंने बोले तो सत्य का अन्वेषण करके अपना जीवन सफल किया।
1: बिल्कुल, तो बाहुबली जी आप आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, वहाँ कैसा लग रहा है आपको?
0: अरे आकाशवाणी बरेली पर मेरा संपर्क बहुत कम हो रहा है, क्योंकि मैं प्रयत्न तो करता हूँ मगर सफलता
1: कम लगती
0: मिलती
1: है।
0: नहीं।
1: तो बाहुबली जी, आज कार्यक्रम में हमारा विषय है कि पढ़ने की आदत विकसित करना या डेवलप करना कितना जरूरी है।
0: पढ़ने की आदत बोले तो बचपन से मैं तो बड़े बड़े उपन्यास और जो भी मुंशी प्रेमचंद हो गया उनका गोदा
1: जी,
0: और हमारे मराठी, वैसा मेरी मातृभाषा मराठी है
1: जी,
0: तो मराठी में जो भी बड़े बड़े लेखक हुए, साहित्यकार हुए
1: जी,
0: जैसे आचार्य अत्रे, एक बड़े बोले तो लेखक और प्रधान कविता लिखने वाले
1: जी,
0: उनको राष्ट्रपति का
1: अवार्ड भी मिला है। तो बाहुबली जी, आपने पढ़ने की बात की, आपने बहुत सारा पढ़ा है, लेकिन बस चलते चलते ये बता दीजिए कि कितना जरूरी है
0: जीवन में। पढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी सही राह पर चल सकती है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो बाहुबली जी, आज आपने हमें फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे?
0: इन प्यार की राहों में तेरा ही सहारा है फिल्म पुनर्मिलन।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: कर के तुम्हारा है इन प्यार की राहों में तेरा ही।
1: तो श्रोताओं, हमारे जो पोस्ट है आज की, उस पर भी हमारे ढेर सारे श्रोताओं ने कमेंट किया है। आइए कुछ प्रमुख कमेंट्स को शामिल करते हैं जो प्रासंगिक है हमारी पोस्ट को लेकर के। ये हमारे को कमेंट करते हैं गंगा सिंह रावत जी, रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से, और कहते हैं पढ़ने की आदत आज के समय में बच्चों में दिखाई नहीं देती। पुस्तकों से पढ़ना बच्चों को बोरिंग लगता है और मोबाइल में ई बुक पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। स्कूल की किताबें पूरे साल बाद भी कोरी की कोरी रह जाती है, और किसी विद्वान ने कहा है कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। पंचतंत्र जैसी किताबें बच्चों को ज्ञान के साथ साथ नैतिक शिक्षा का पाठ भी पढ़ाते हैं, पर सवाल वही है कि बच्चे किताबें तो सही पर जो है वो पढ़ें इन चीजों में अपना दिल लगाकर, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और आरवी सिंह जी कहते हैं शाहजहांपुर से, अल्लाहगंज जनपद शाहजहांपुर से, कहते हैं पढ़ने की आदत बहुत जरूरी है, इसलिए सभी लोग पढ़ें, सभी लोग आगे बढ़ें, यही हमारा संदेश है। आरवी सिंह जी का भी मैसेज आया है। बीआई धाकड़ जी कहते हैं, भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, कि जीवन में हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पढ़ने से मतलब सिर्फ विद्यार्थियों की किताबों से नहीं, पढ़ाई से नहीं, बल्कि व्यक्ति जो नित्य समाचार पत्र, रामायण पाठ, भगवद गीता और साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं अन्य स्रोत से पाठन करता है, वो सब भी पढ़ना जरूर चाहिए। और अगला जो कमेंट हमें भेजा है, ये हमें भेजा है प्रवीण चौहान जी ने, और लिखते हैं कि पढ़ने से ज्ञान मिलता है, पढ़ने से हमारा दिमाग गहराई से सोचने समझने लगता है, जिससे नए नए विचार जन्म लेते हैं और प्रेरणादायक किताबें हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है। अगला मैसेज हमें करने वाले हैं करेली से लाल मोहम्मद अंसारी, और आप कहते हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ पेश करने वालों को नमस्कार। नमस्कार जी, आज का विषय पढ़ाई विकसित करना जरूरी है और बहुत जरूरी है। आज बच्चों को पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान विकसित करना चाहिए। बच्चों का मन किसी वजह से पढ़ाई में नहीं लग रहा हो तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को उस ओर ध्यान दिलाए। अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं, और ये मैसेज किया है मौलागढ़ नई बस्ती भोजीपुरा से अंसारी हसन, तरन्नुम अंसारी होता राना अंसारी ने, और कहते हैं पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, आजकल के बच्चे बहुत जी चुराते हैं, हर किसी को यही सलाह देते हैं कि पढ़ना बहुत जरूरी है, भविष्य में कल भी काम आएगा, आज भी काम आएगा, और पढ़ना बहुत जरूरी है। आप हैं जो है हमें मैसेज करते हैं नवापारा जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, और आप कहते हैं पढ़ना बहुत जरूरी है, किताबें दिमाग का जिम है, सोचने की ताकत, शब्दों का खजाना, एकाग्रता बढ़ाती है, तनाव को कम करती है और कल्पना उड़ान भरती है। अच्छी बात कही। सहारनपुर से राधा नामदेव जी कहती हैं कि बहुत जागरूक विषय है, पर अफसोस कि आज हम लोग किताबों से बहुत दूर हो चुके हैं, जिसका जो है जिम्मेदार मोबाइल है। किताबों से पढ़ने पर मेमोरी चिप इंसान के दिमाग में आजीवन रहती है, लेकिन मोबाइल से ज्ञान लेने पर मेमोरी कार्ड बहुत जल्दी डिलीट हो जाता है। तो किताबों से ज्ञान के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आता है। अच्छी बात कही आपने राधा नामदेव जी, और आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के साथ हम सब मिलकर सुनते हैं आपकी और हम सबकी पसंद का ये गीत।

0: ये था हमारा आज की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम। श्रोताओं, आज हमारा विषय था राष्ट्रीय पठन दिवस यानी कि नेशनल रीडिंग डे के उपलक्ष्य में कि पढ़ने की आदत को विकसित करना कितना जरूरी है। ये दिन खास यूं है क्योंकि आज ही के दिन पुस्तकालय आंदोलन के जनक कहे जाने वाले PN पणिक्कर जो है उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है। उन्होंने पढ़ने की संस्कृति को बढ़ाने के लिए खूब सारे पुस्तकालय खोलने और पढ़ने पर जोर देने की बात की वकालत की थी और लोगों में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। वर्ष 2017 से आज के दिन ही इस दिवस को राष्ट्रीय पठन यानी नेशनल रीडिंग डे के विषय में मनाया जाता है। तो अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए और पढ़ने की बात करें तो केवल यहाँ किताबी ज्ञान पढ़ाई लिखाई से ही नहीं है, जो भी साहित्यिक चीजें समाचार पत्र पत्रिकाएं जो भी ऐसी चीजें जो हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती हैं जरूर पढ़ना चाहिए। और ट्यून करते रहिए ओनली ऑन 100.4 FM आकाशवाणी बरेली, क्योंकि यहाँ हम बहुत सारी चीजें वो भी आपको उपलब्ध कराते हैं जो पढ़ने के साथ साथ आपको सुनने को भी मिलती हैं। तो सुनते रहिए कार्यक्रमों को। अब फिलहाल कार्यक्रम से मुझे यानी ब्रजेश को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ट्यून किया है आपने 100.4 FM। और श्रोताओं आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुनना ना भूलिएगा आपसे कुछ देर बाद ही यानी कि शाम को 5:05 से भजन संध्या, 5:10 से रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में रोजगार मेला 2026 का सीधा प्रसारण। युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी नियमित समय शाम को 6:00 जिसमें होगा आज का सवाल कुछ खास है आज और नजराना है शाम नेहा सिंह के साथ। कार्यक्रम ग्राम जगत लेकर हाजिर होंगे किशन पाल शाम को 6:30 पर जिसमें होगी चर्चा बच्चों को शिक्षित करें, साथ ही प्रोग्राम में होगी वार्ता और लोकगीत। शाम को 7:00 समय रहेगा कृषि पाठशाला का जिसमें बात होगी कृषि में ड्रोन का प्रयोग किस तरह, श्री विनोद कुमार शुक्ल से बातचीत करेंगे रविंद्र कुमार। और रेडियो हेल्पलाइन सुनना न भूलिएगा शाम को 7:31 पर। रात्रि 8:00 से सुन सकेंगे आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। तो श्रोताओं ये तो था विवरण हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का। अब

विवरण हमारी कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का। सुबह 8:15 पर सुनना न भूलिएगा प्रोग्राम नमस्ते बरेली। 8:45 पर समय रहेगा लोकगीतों का। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन सकेंगे आप सुबह 9 बजे से, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम 9:30 पर लेकर हाजिर होंगे जान है तो जहान है। कार्यक्रम आपकी पसंद सुनना न भूलिएगा सुबह 10 बजे से। सबरंग का समय रहेगा 11 बजे। 11:30 पर सुन सकेंगे आप केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला। दोपहर 12:05 से रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से एफएम रेनबो के प्रोग्राम, और 1 बजे लेकर हाजिर होंगे आपका पसंदीदा प्रोग्राम अनुरोध गीत। कार्यक्रम जनमंच का समय रहेगा दोपहर 2 बजे से, जिसमें विषय है सरकारी योजनाओं से बदलता गांव का स्वरूप। प्रतिभागी हैं बुंदन बक्स, छेदा लाल और श्री सफी अली। संचालन है रविंद्र कुमार का। 3:55 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करने का सीधा प्रसारण, जिसे रिले करेंगे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम को 4 बजे समय रहेगा कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का, और सुनना न भूलिएगा प्रोग्राम शाम को 4 बजे से। भजन संध्या लेकर हाजिर होंगे 5:05 पर। 5:30 पर सुन सकेंगे हेलो बरेली। युवा साथी सुनेंगे प्रोग्राम यू वाणी शाम को 6 बजे से। 6:30 पर लेकर हाजिर होंगे किसान वाणी, जिसमें सुन सकेंगे आप आज की बात आकाशवाणी गाँव में किसान के साथ। साथ ही होगा आज का मौसम, आज की नसीहत और कृषि समाचार। कार्यक्रम राम जगत का समय रहेगा शाम को 7 बजे, और 7:31 पर सुनिएगा प्रोग्राम रेडियो हेल्पलाइन। रात्रि 8 बजे सुनिए विशेष प्रोग्राम योग दिवस पर डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से बातचीत, जिसे रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। तो श्रोताओं, ये तो था विवरण हमारी कल की सभा में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का। ट्यून किया आपने 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भजन संध्या।

हंसराज रघुवंशी के गाए इसी मधुर भजन के साथ अब भजन संध्या ही संपन्न होता है। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अगला प्रसारण, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां से आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चले।
1: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहाँ हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
2: Yeah, the Prime Minister has arrived already, is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he's having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here in a short while. He'll be entering the plenary hall, wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they're numbering about about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it will be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
1: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
2: And we got appointment letters, Preeti, when we got a job. And now you see, everything is digital. So India's also gone ahead with the world because everything is digitized now. And today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters. And that is going to cost

0: about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs. And the total budget is for this is about 99,446 crores.
1: बिल्कुल. और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे.
0: Yeah, these two beneficiaries are going to bring the Prime Minister to the dais. What a privilege for them. I think it's going to be a lifetime experience for them. And I just want to tell you the motto for this is Rozgar ya Karobar, Saath hai Bharat Sarkar. What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through for getting the number, and 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डाले तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा. तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में. और हाँ बोलो. इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके. और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है. तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हों. और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना. और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे. ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो उसमें आती है.
0: People will feel secure. Okay, the government is there to help us out. So we should not feel that okay, I'm not going to achieve anything. But let our Prime Minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार
1: जी. और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे. और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है आसानी से सब पहुंच सके और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है जी.
0: Yeah, and you know, this program operates under a dual incentive structure, split into two distinctive parts. The first part is support for the first-time employees. Jinko pehli bar naukri mili
1: hai.
0: This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees

0: And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you're reasonable, you're well qualified for their jobs, you'll be picked up.
1: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा, बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा. कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुँच गए हैं. तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं. और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का. इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी. 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान, और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति. विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
0: That's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this one, the one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025. It started last year till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
1: 4 saal.
0: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members, and then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
1: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं, और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
0: बिल्कुल, to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
1: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है. और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो.
0: यस, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द यूथ, यू नो, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पिलर्स, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू होल्ड दिस नेशन. सो ही इज पुटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन देम, एंड ही सीज दैट ऑल आर एम्प्लॉयड, ऑल गेट एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ देम आर लेफ्ट विदाउट अ जॉब, बिकॉज यू नो हाउ मच फ्रस्ट्रेशन इट लीड्स टू व्हेन अ पर्सन डजंट हैव अ जॉब. सो दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन दिस एंड इज ब्रिंगिंग आउट दीज स्कीम्स. एंड देन I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is social security for all.
1: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
0: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now, and already 15 lakh people have already got the employment letter, the job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
1: और थोड़ा सा सार देखें, एंड्रू तो जरूर बताना चाहेंगे। योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि 2 किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है।

0: और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है। और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10 से 20 हजार तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, और 20,000 से 1 लाख तक है तो सैलरी तो कंपनी को
1: तीन
0: तीन
1: तीन
0: हजार
1: हजार
0: रुपए
1: यस
0: प्रति कर्मचारी मिलेंगे। इसका आपने जिक्र भी किया था, है ना?
1: या या एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोड़ जॉब्स अक्रॉस इंडिया, प्रमोट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी कवरेज, सपोर्ट फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स, दैट इज व्हाट इट सेज नाउ. द स्कीम एम्स टू मेक इट इजियर फॉर यंग पीपल टू एंटर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट व्हाइल एनकरेजिंग बिजनेसेस टू हायर मोर वर्कर्स एंड एक्सपैंड इंडियाज ऑर्गेनाइज्ड workforce, and then support first-time job seekers, and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a they take in a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands. And of course, it is always on the for the development of the country.
0: जी, ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत, और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच, और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध, और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा, ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
1: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights, and he has achieved it almost. He's taken India to great heights, and right now, and of course, internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
0: 4 श्रम संहिताएं लागू, मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता 2020, 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली, और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना।
1: And I'm really eager to see our Prime Minister come and press that button, you know, when the money will go to 15 lakh people into their accounts. And they'll be getting the letters. And it's going to be a wonderful experience. Preeti, in fact, I've never seen something like this, you know. Just at the press of a button, 15 lakh people, beneficiaries, get the employment letter. India's also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So we are, in fact, we are going digital in every field. So we should be proud of our country, and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, or almost 700 people are seated over here, right up to the top.
0: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई
1: इट्स फुल,
0: है
1: नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी. पीपल आर दे ऑल सी दे आर ऑल जॉब सीकर्स, एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल दे विल बी गेटिंग द जॉब्स. दे ऑल कीपिंग द फोन्स रेडी ऑन द टेबल, सो एज सून एज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसेस द बटन, इट विल कम टू द फोन दैट दे हैव गॉट द लेटर.
0: An amount will be transferred. और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए, और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं, आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है, और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी, और रिमोट बटन प्रेस करके, और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं.
1: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स, यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least two

0: new employees, while larger firms, 50 or more baseline workers, must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार. जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
0: And see, the beauty is that the person who will be giving the bouquet is one of the young beneficiaries, and he'll be so happy in his heart that I'm getting a job and our Prime Minister has given this job to me. So and I'm telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vigyan Bhavan, and they'll be dreaming, you know. I'm sure I'm going to come up. And I think they're all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the... short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button. The magic button. the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top, and his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
0: And see the dais, how many bouquets are there?
1: हम्म

0: जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है,
1: यस
0: फिर तो राह रुकेगी नहीं, आप जहां जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी,
1: या
0: है ना।
1: एंड सी हु एक्सपेक्टेड दैट 3.5 crore पीपल आर गोइंग टू गेट जॉब्स इन इंडिया, राइट? द इम्प्लीमेंटेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, 15 lakh हैव ऑलरेडी गॉट इट टुडे, दे विल बी, इट विल बी कंफर्म फॉर देम थ्रू द प्रेस ऑफ दैट बटन बाय द प्राइम मिनिस्टर, एंड देन ओवर द ईयर मींस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3.5 crore people in India will be employed. They'll be having the job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And Ministry of Labour, you know, they have always, the Labour and Employment, they've always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they've generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meager amount, some may get very meager amount, some get a good job. But it helps them. At least they don't starve. They have, they get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
0: जब हम परीक्षा देकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रू, तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी, और जब आपकी नौकरियां बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया, नहीं?
1: Yes.
0: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूंगी, रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार
1: So, in fact, the person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here, and there's one person
0: translate kiya
1: yeah, he's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and is saying, and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know, and. It's really very interesting, you know, and just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it will be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
0: Mm.
1: Yeah.
0: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा।
1: Yes.
0: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी, बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है, ज्यादा नहीं। और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा। और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो, नहीं?
1: Yeah, I think everything has stopped. They are all in attention, and I think the Prime Minister is arriving with the other dignitaries. He'll be taking his seat on the dais, and once he comes in, the program will begin. He'll be felicitated with a bouquet by one of the beneficiaries. That'll be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student. Who'll be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived, he has entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
3: एक बार
2: जोरदार तालियां हो जाए। देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए,
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का।
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
3: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का सादर स्वागत एवं अभिनंदन।
1: द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड, ही हैज टेकन हिज सीट ऑन द डेस्क।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
1: फ्लैंक्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑन हिज राइट एंड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट टू हिज लेफ्ट,
0: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
2: अनुरोध करेंगे।

0: ये हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामणि डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां।
1: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने।
0: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।
2: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविय जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
3: And now the welcome remarks
0: जोरदार तालियां हो जाएं।
3: by Shri Mansukh Mandavia, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था, और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी, उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को

0: ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करें तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं।

0: आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
1: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
2: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
4: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana, and that was a short film. And now, very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously, and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters, and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button, and you can see the people cheering.
5: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
6: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15,00,000 लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
4: What a time, what a moment.

दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह

मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके।

इसी नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही है, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और

पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग

भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और

गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है, एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करें और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को

0: बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होके रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। सुन रहे थे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में रोजगार मेला 2026 का सीधा प्रसारण। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके भैया कन्हैया की ओर से राम राम। श्रोताओं, आज हम आपसे बात करेंगे बच्चों को शिक्षित करें और साथ ही चलेंगे एक गांव की ओर क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता में। और जो हमें मिले हैं उनसे हमने कब बातचीत करी है, जहां आपको सुनवावेंगे और समय मिलो भैया तो करावेंगे मनोरंजन एक लोकगीत के माध्यम से। और श्रोताओं, आपको पता है हमारी जो सरकार है वे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे किसान साथियों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं को संचालन कर रही हैं। उन्हीं में एक योजना है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। इसमें हमारे किसान भाइयों को समय समय पर उनके सहयोग के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमारे किसान भाइयों के सहयोग के लिए किस्त जारी करी जाते हैं, और जो कि वे अपनी खेती बाड़ी में वह किस्त के पैसन को उपयोग करके अपने जो खेती बाड़ी के काम काज है उनको पूर्व करते हैं। और अब यानी कि 20 तारीख कल हमारे किसान भाइयों की 23वीं किस्त प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की जारी हो रही है। और अब जो खरीफ में हमारे किसान साथी हैं अपनी फसलन की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके बहुत ही सहयोग के लिए जा किस्त उनकी मदद करेगी। और कल प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जारी हो जाएगी। तो भैया, हमारो और आपको सबको प्रयास यह है, हम और आप मिलकर के अपनों विकास करें और जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको सही उपयोग करें। सही उपयोग के साथ साथ उन योजनाओं को सही इस्तेमाल कर अपनों विकास करें। और श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो छोटे मोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जरूरी है। और बहुत ही जरूरी क्यों है, जहां हम और आप सभी जानते हैं, क्योंकि अगर हमें एक अच्छे समाज को निर्माण करने हैं तो बहुत ही जरूरी है कि हम अपने बच्चन को पढ़ावें लिखावें और साथ ही

0: साथ में उनके भविष्य के लिए जो विकास की योजनाएं हैं उनको उनके प्रति सशक्त बनावे। एक अच्छे समाज की नींव हम तभी रख सकते हैं जब हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षित होंगे। उनके उज्जवल भविष्य की कामना हम तभी कर सकते हैं जब हम उन्हें पढ़ावेंगे लिखावेंगे। ये केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि बच्चों में सही नैतिक मूल्यों और सामाजिक भावनात्मक कौशल और समस्या समाधान की जो क्षमता है वो विकसित करते हैं जब हमारे बच्चा पढ़े लिखे होंगे तब। पढ़ाई लिखाई की कहते हैं कोई उम्र ना होती है, आप जिस उम्र में चाहें पढ़नो लिखनो शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चन की उम्र है उसमें कहीं ना कहीं जो खेल कूद है वो आगे रहती है, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम उनके प्रति जो खेल कूद की भावनाएं हैं उनको हम बिल्कुल ही न तोड़े। और अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हम अपने बच्चन को अगर खेलन कूदन से ना रोकेंगे तो हम उन्हें कैसे पढ़ा सकते हैं। अरे भैया आजकल स्कूल में जो बच्चन की पढ़ाई लिखाई की शिक्षा पद्धति है उसमें खेल कूद को बढ़ावा दोगे, खेल खेल में बताई गई है कि शिक्षा दी जा सकते है, क्योंकि जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें जाने वाले बच्चन को भैया खेल कूद के माध्यम से किताबी ज्ञान अंक ज्ञान और छोटे बड़े को ज्ञान बहुत तरीका से उनको सिखाओ जाते है। और पढ़ाई लिखाई को मतलब एक रटनो ही ना होते बल्कि बच्चों को संपूर्ण विकास जो होता है बाको हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के साथ साथ खेलों कला अन्य शारीरिक जो गतिविधियां होती हैं उनको भी यह बड़ा महत्व होता है। इससे अनुशासन और जो हमारे कामकाज हैं बाके प्रति हमारे शरीर के प्रति स्वस्थ और बेहतर रहने को जो हमें तरीका है वो आता है, और साथ ही साथ में जो हमारे बच्चे हैं वो अपनी भावनाओं को समझनो दूसरों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करनो ये सब बातें तभी समझ पाएंगे जब हमारे जो बच्चा है वे भैया पढ़े लिखे होंगे। और आगे बातचीत आपसे और करेंगे लेकिन बात से पहले अब चलते भैया काऊ गांव की ओर। और कौन से गांव में चल रहे हैं जा जिनसे बात कर रहे हैं उनसे ही उनको नाम और उनके गांव को नाम पूछ लेते हैं।
1: हम अपने सुनने वालों के लिए जान लेते हैं आपको नाम कहा साहब।
2: धीरपाल।
1: कौन से गांव में रहते हैं साहब?
2: बलई भगवंतपुर
1: जी। कौन से ब्लॉक को गाँव है?
2: मजगुमा ब्लॉक।
1: अच्छा धीरपाल जी क्या काम काज करते हैं?
2: खेती का काम करते हैं सर और भेड़ चुमाते हैं।
1: खेती और भेड़ पालन आप कर रहे हैं?
2: जी।
1: तो लगभग अगर बात करें जो खेती है और ये जो भेड़ पालन है ये एक साथ आसानी से हो जाता है?
2: हो जाता है।
1: कोई समस्या तो नहीं आती?
2: कोई समस्या ना है सर।
1: अच्छा कहते हैं खेती में बहुत सारे कामकाज की जरूरत होती है, समय बहुत देना चाहिए, तो उसके साथ साथ इनके कामकाज के लिए समय मिल जाता है?
2: इनको सब मिल जाता है, दोपहर के बाद में ना खोलते हैं शाम को लेके आते हैं चुमा के।
1: अच्छा
2: हाँ।
1: और क्या देखरेख करनी होती है इनकी?
2: और देखरेख बीमारी है टाइम से इसको दवा दो नहलाओ साफ सुथरी रखो अच्छी घास खिलाओ।
1: अच्छा।
2: और उसके बाद में जो पैदावारी होती है हम बेच देते हैं।
1: अच्छा
2: हाँ।
1: तो ये आपने कहा कि इनमें बीमारी होती है उसकी देखरेख करो, तो बात करें जैसे हमारे अन्य पशु रहते हैं गाय है भैंस है बकरी है ना
2: जी,
1: तो क्या उन्हीं की तरह ये भी रहती है या इनको रखने की कोई अलग व्यवस्था करनी पड़ती है?
2: कोई सा व्यवस्था ना है इसकी, एक घर बना लेते हैं उसमें रखते हैं।
1: अच्छा
2: हाँ। उसमें अपने किवार लगा दी बंद कर दी।
1: अच्छा
2: हाँ। सुबह अपने देखी दूसरे घर में कर दी।
1: अच्छा।
2: और वहाँ से अब निकाली अब लेके चले आए खाना खाए के
1: इन्हें घुमाने के लिए।
2: घुमाने के लिए
1: आप हमें मिले हैं चराते हुए जंगल में
2: जी,
1: तो हमारी आपकी बातचीत हो रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो भेड़े हैं इनके बीच में जो दो चार बकरी हैं इनको रखने का क्या राज है?
2: जी सर सबसे पहली बात तो इसमें एक कारण ये है कि सबसे आगे चलती है बकरी और बकरी से ये है कि जरूरत पड़ती है 1000-6000 की तो अपने एक आध बेच लेते हैं उसमें से।
1: अच्छा
2: हाँ।
1: तो मतलब भेड़ पालन और बकरी पालन साथ साथ किया जा सकता है?
2: कम करते हैं वैसे भेड़ में जो बकरी सही ना रखती है एक दो रखते हैं हम लोग।
1: अच्छा एक दो रखने का क्या कारण है?
2: ये सबसे आगे चलती है सर।
1: अच्छा
2: हाँ। और उसमें जो है भेड़ में ज्यादा आग होती है ना गर्मी ज्यादा होती है भेड़ उसको झपट ना झेल पाती बकरी इसलिए एक दो रखने पड़ती है हमें तो।
1: अच्छा ये हमने सुना है कि भेड़ जब चलती है तो वो नीचे मुंह करके चलती है इधर उधर नहीं देखती है, और जब हम साथ में बकरी या कोई और तेज जानवर रखते हैं जो इनके साथ चलता रहे, आगे इनसे चले, तो वो

0: के पैरों पर चलती रहती है, ऐसा भी कुछ
1: हाँ
0: है?
1: हाँ ऐसा ही है सर,
0: अच्छा
1: एक दूसरे के पीछे चलती हैं, सब लाइन से चलेंगे।
0: अच्छा
1: हाँ इसीलिए बकरी रखने पड़ती है, या भेड़ हो कोई बड़ी चलने वाली, चलने पड़ता है।
0: अच्छा
1: हाँ और वैसे सब
0: बस चलती रहती हैं।
1: हाँ चलती रहती हैं ये
0: हम
1: सब।
0: आपसे ये भी जान लेते हैं, जो हमारी भेड़ है
1: जी
0: इसको आपने बताया कि रखने का तरीका एक जगह बना लेते हैं, वहीं पर रहती हैं, और जैसे हम बकरी रखते हैं उसी हिसाब से रह लेती हैं, तो साफ सफाई में क्या रखते हैं? जैसे हम बकरी की जगह साफ सुथरी रखते हैं, क्या इनकी भी वैसी रखनी पड़ती
1: वैसे
0: है?
1: रखने पड़ा ही था।
0: अच्छा
1: हाँ झाड़ बहार देखने जरूरी है, साफ सुथराई तो अनिवार्य है ना।
0: जी जी
1: हाँ जब आप साफ सुथरे कपड़ा पहनोगे, नहाओगे, तैसा इनका हिसाब है।
0: अच्छा
1: हाँ गंगा में पहरा देते हैं इनको, नहला देते हैं।
0: गर्मी का समय है
1: गर्मी का समय है सर।
0: जी, जैसे बकरी है तो वो कहते हैं कि बार बार जल्दी जल्दी खाती रहती है, क्या ये भी उसी की तरह जल्दी जल्दी खाना देना पड़ता है इनको?
1: ऐसा बकरी का और हिसाब है सर।
0: अच्छा
1: हाँ इसका और हिसाब है, जे अगर चारा खा लेगी तो आराम से बैठ जाएगी,
0: अच्छा
1: और बकरी ऐसी है बड़े बड़े कहावत है, वो 12 बीघा खेत में घूम लेगी।
0: अच्छा
1: हाँ
0: एक एक मुंह मारते
1: एक
0: हुए,
1: एक मुंह मारे।
0: बिल्कुल सही बात है। धीरपाल जी, जो कहते हैं ना कि कोई काम काज हम करते हैं
1: जी
0: तो उम्मीद रखते हैं कि उससे हमें अच्छा उत्पादन मिले, अच्छी आमदनी हो, तो यहाँ पर हम अपने सुनने वालों के लिए आपसे ये भी जान लेते हैं कि जो भेड़ पालन है और बकरी पालन में क्या अंतर है?
1: सर बकरी जो है और हिसाब की है, बकरी बरसात में कम टिकती है। ठीक जब बरसात होती है तो बकरी ज्यादा भागती है इधर उधर को ले,
0: जी
1: और भेड़ जो भागेगी नहीं।
0: अच्छा
1: हाँ भेड़ ठौर रुकी रहेगी।
0: एक ही जगह।
1: जी
0: अब हम यहाँ पर आपसे ये भी जान लेते हैं, जैसे एक बकरी हम पालते हैं तो उससे हमें दूध मिलता है, बच्चे मिलते हैं और हमारी आमदनी बढ़ती है,
1: जी
0: क्या ऐसा भेड़ से भी होता है?
1: भेड़ से सर उतनी भेड़ जो अब जंगल में चुमासा नहीं है। ठीक इसका घी महंगा बिकता है, और हम लोग जो हम दूते नहीं है, बच्चे पीते हैं हमारे।
0: अच्छा
1: हाँ बच्चा इसका बढ़ जाता है, मोटा होता है।
0: जी, तो ये जो दूध है इसका आप बता रहे हैं कि महंगा बिकता है, घी महंगा बिकता है,
1: जी
0: तो ये किस किस काम आते हैं, किन किन चीजों में ये काम लिए
1: जैसे आप
0: जाते हैं?
1: डॉक्टर लोग बताते हैं, जैसे टूटा कोई हड्डी का जोंड है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसके घी से जो है सही हो जाते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ
0: और क्या क्या चीज मिलती है भेड़ से?
1: भेड़ से साहब सब चीज मिलती है इससे, पहले ऊन मिलती थी, अब ऊन जो है बेकार है।
0: अच्छा
1: हाँ अब तो इसको काट देते हैं, तालाब में फेंक देते हैं
0: बाल।
1: बाल। और पहले कम्बर बुने जाते थे, पुराने बुजुर्ग लोग बुनते थे, अब जो है कम है।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो अभी जो है, जैसे आपने कहा कि भेड़ से पहले ऊन मिलती थी, कंबल बुने जाते थे,
1: जी जी जी
0: अब उन बालों का कोई उपयोग नहीं है क्या?
1: अब कोई नहीं है सर उपयोग।
0: अच्छा
1: हाँ
0: अब तो मतलब जो है, बात करें आप जब इनका पालन कर रहे हैं
1: जी
0: तो इनको बिक्री जब करते हैं तो
1: जी
0: कितने दिन की भेड़ हो जाती है तब बिक्री करते हैं, कैसे अंदाजा लगाते हैं कि अब हमारी भेड़ बिक्री लायक हो गई है?
1: ऐसा है सर, ये मोटा होता है बच्चा 6 महीने का या 8 महीने का
0: जी
1: या 1 साल का,
0: जी
1: जैसा मोटा होगा जैसे वजन होगा उसमें वैसे ही सर बिकेगा ये।
0: अच्छा
1: हाँ 5,000, 6,000, 10,000, 8,000,
0: जी
1: जैसा उसका वजन है उसी के हिसाब से ये बिकता है।
0: आपने कहा था कि इनमें बीमारी भी आती है,
1: जी
0: तो हम आपसे जान लेते हैं इसमें क्या क्या बीमारी आती है इनमें?
1: बीमारी साहब बुखार भी है इसमें, कई एक रोग लगते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ खुरपका है, मुंहपका है।
0: अच्छा
1: हाँ और कई एक मर्जे हैं इसमें सर।
0: अच्छा तो हम आपसे जान लेते हैं, ये खुरपका मुंहपका जब आता है
1: जी
0: तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं आप?
1: जी सर ब्लॉक से टीके लाते हैं हम सर।
0: अच्छा
1: हाँ टीके लगवाते हैं,
0: तो अभी लग गए आपके?
1: अभी नहीं लगे हैं सर।
0: अच्छा
1: हाँ जाएंगे अब लेके आएंगे सर ब्लॉक से,
0: हाँ
1: डॉक्टर साहब वो देंगे तो लगावा देंगे हम।
0: अच्छा
1: हाँ
0: अगर हो जाए बीमारी,
1: जी
0: टीका कराने के बाद भी समस्या नहीं रुकती है तो क्या करते हैं आप?
1: तो सर ब्लॉक को ले जाते हैं भेड़ के लिए, या डॉक्टर साहब को बुला के लाते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ
0: उसका उपचार कराते हैं फिर?
1: जी जी
0: अभी गर्मी का मौसम है, तेज धूप पड़ती है और दिन में भी काफी तापमान रहता है, तो यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमारे और श्रोता हैं जो आप ही की तरह भेड़ पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, तो ऐसे गर्मी में आप इनको कैसे सुरक्षित रखते हैं, क्या करते हैं?
1: ये सर ऐसा है, इसमें जल्दी खोल देते हैं हम, ऊपर से जो है इनका तिरपाल बांध के या वैसे कोई लिंटर उन्टर है उसमें रख के, और उसके बाद इनको 10 बजे तक खोलने हैं अनिवार्य है।
0: जी
1: और 2 घंटा चुमाई फिर पेड़ नीचे इनको रख
0: खड़ा कर
1: लिया,
0: जी
1: खड़ा कर लिया, या अपने पानी में पहरा दी तो गर्मी इनकी दूर हो जाती है।
0: अच्छा अभी बात करें आगे आने वाले समय में बरसात का मौसम आएगा, तो बरसात में खासकर इनमें आपने बताया था ना गलाघोटू और खुरपका मुंह पका वाली बीमारी होती है
1: जी,
0: इसका निदान तो आपने बता दिया, लेकिन

0: हम जानना चाहेंगे कि और बरसात के मौसम में इनको सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं आप?
1: सर दो घेर रखते हैं हम, फिर
0: अच्छा
1: डबल,
0: हाँ
1: और एक में कीचड़ हो गई ज्यादा तो दूसरे में कर दी,
0: अच्छा
1: हाँ दूसरे में हुई तो पहले में कर दी,
0: ठीक,
1: अपना बैलेंस रखते हैं बना के।
0: यानी स्थान बदलते रहते
1: जी
0: हैं।
1: जी बदलते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और बरसात ज्यादा हो रही है तो कहीं खेत में खड़ी कर लें,
0: अच्छा
1: अपने बरसात उतर गई खींचना है तो अपने उसमें कर दें।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: एक वर्ष में बात करें तो एक भेड़ से कितने बच्चे मिल जाते हैं?
1: दो बच्चे मिलते हैं सर,
0: अच्छा लगभग 6-7 महीने में तैयार हो जाते हैं।
1: 6 महीने में तैयार हो जाता है बच्चा।
0: हमने कहा था कि हम कोई काम काज करते हैं तो उसमें मुनाफा और जो लागत है उसको लेकर के चलते हैं,
1: जी,
0: तो आपसे हम अपने सुनने वालों के लिए ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप भेड़ पालन कर रहे हैं, तो एक भेड़ से एक वर्ष में लगभग आपको कितनी आमदनी हो जाती होगी?
1: जी सर ऐसा है अगर दो बच्चे देती है ठीक, और आपके ढंग अगर 20 बच्चे हो गए तो 20 आपने बेच ले, 5,000 के दाम बेच ले तो 1 लाख की हो गई।
0: अच्छा
1: हाँ और ज्यादा अगर वजन की भी तो ज्यादा पैसन की भी गई,
0: ठीक,
1: और कम से कम 5,000-4,000 की तो बिकते है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: तो इस हिसाब से अगर जो हमारे अन्य श्रोता हैं हमारी आपकी बातचीत को सुन रहे हैं, भेड़ पालन अगर वो करें तो फायदे का सौदा है?
1: बिल्कुल सर, फायदा क्यों नहीं है, फायदा है इसमें, किसी का जोर दबाव नहीं है,
0: जी।
1: आराम से अपने जंगल को ले जाओ ना जंगल को ले जाओ अपने चुनाव।
0: अच्छा, खेती के साथ भेड़ पालन ज्यादा अच्छा है या पशुपालन?
1: जी सर ऐसा है पशु में जो है समस्या कई एक प्रकार की आती है,
0: जी
1: उसको चारा चाहिए तीनों टाइम,
0: जी
1: तीनों टाइम नहलाने धुलाने चाहिए,
0: जी
1: ठीक, उसकी हिफाजत ज्यादा करनी पड़ती है।
0: जी
1: अब हमने लाठी उठाई घर से, खाना खाया आपने जंगल को चल दिए,
0: ठीक,
1: तो हमारी जो चुमके रहती है ठीक, अब
0: ठीक।
1: जैसे कम टाइम पे जैसे आगे चल के जाड़े ठंड में मौसम जो है बदलता है इनका तो चुहासा कम होता है, तो हम इनको लड़ौरी बना के और इनके लिए चारा डालते हैं, चारा डालने के बाद में जो खा लेती हैं आराम से रहती हैं।
0: यानी कि कम जगह में काम चल जाता है।
1: जी जी
0: और पशुपालन के लिए जगह ज्यादा चाहिए?
1: हाँ ज्यादा जगह चाहिए, ज्यादा चारा चाहिए,
0: जी
1: सर उसकी ज्यादा हिफाजत देखनी पड़ती है। अब इसमें हम अकेले चले आए, अकेले इनको नहला देंगे और
0: जी
1: गर्मी महसूस नहीं होगी इसको।
0: हाँ
1: हाँ आराम से पेड़ नीचे खड़े हो जाएंगे।
0: जी हमारे बहुत सारे कृषक साथी हैं पशुपालन करते हैं,
1: जी, जी।
0: आपने कहा कि इनके लिए बहुत कम जगह की और कम चारे की जरूरत होती है, बड़ी आसानी से इन्हें पाला जा सकता है। वहीं अगर मुनाफे की बात करें पशुपालन में, हमारे कृषक साथी जो हैं बहुत खेती के साथ साथ
1: जी
0: पशुपालन करते हैं और उससे जो दूध मिलता है उसको बिक्री करके आमदनी का जरिया बनाते हैं, अगर हम इनमें जो भेड़ पालन है उससे और पशुपालन में दूध से आमदनी की अगर तुलना करें तो किसमें ज्यादा होगी आपकी नजर में?
1: साहब भैंस में ज्यादा होगी।
0: अच्छा
1: जी वो रोज का धंधा है, रोज का धंधा ये, अगर वो 2 किलो आटे मतलब खाएगी तो उसमें दूध देगी 5 किलो तो उसमें ज्यादा बचत हो जाएगी।
0: अच्छा
1: हाँ अगर उसका लवारा बची गया तो और अच्छा बन जाएगा।
0: जी
1: और भेड़ में जो है 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद मिलता है।
0: क्यों
1: ऐसा है? इसमें जो है इसमें अकेले है कमाई और उसमें सब घर लगता है।
0: जी
1: मतलब पशुपालन में जो है सब घर लगता है।
0: हाँ।
1: क्योंकि हम चारा लाए जंगल से,
0: जी
1: तो वो घर वाले जो है अपने कुटी खा दी तो उनको देखेंगे बाहरेंगे,
0: सानी करेंगे, सानी डालेंगे,
1: सब काम
0: काटेंगे चारा,
1: हाँ।
0: है ना
1: बिल्कुल,
0: और उनको नहलाएंगे धुलाएंगे।
1: तो
0: और तो आप देख रहे हैं हम कि आप अकेले ही बहुत सारी ये जो है भेड़े हैं इनको आप अकेले ही चरा रहे हैं।
1: हाँ तो अकेले चरा रहे हैं,
0: है ना, और इनको जो जगह है वो आपने बताया कि कम जगह में रहना भी पड़ता है, तो अगर इस बात में तुलना करें दोनों में, पशुपालन में और बकरी भेड़ पालन में, तो कौन सी ज्यादा मुनाफे की सौदा है?
1: भाई सर भेड़ में ज्यादा मुनाफा हो जाएगी।
0: अच्छा
1: अगर समर के पालो तो
0: सही हिसाब से पालन किया
1: जाए, सही हिसाब से पालो तो
0: जी
1: भेड़ में ज्यादा हो जाएगी
0: बापेक्षा पशुओं के।
1: हाँ इसमें खर्चा कम है
0: जी
1: और उसमें ज्यादा खर्चा है
0: क्योंकि उसको बाटा भी चाहिए,
1: सब चीज चाहिए,
0: अगर आप अच्छा दूध लेंगे तो उन्हें अच्छा खिलाना पिलाना भी पड़ेगा,
1: उनका तो रोज नहाने धुलाने पड़ेगा। अब गर्मी पड़ी तीनों टाइम नहलाओ उनको,
0: जी
1: तब तो सही है, और ना नहलाओगे तो वो दूध कम देगी,
0: जी
1: जगह बदलने पड़ेगी,
0: जी
1: कीचड़ हो जाएगी उसे साफ करने पड़ेगी,
0: जी
1: उसमें कीचड़ में कीड़े नहीं पड़े तब अलग बांधो उसको। और भेड़ में कहा है, भेड़ तो आपने ले ली अपने देखा झाड़ बुढ़ार करी छुट्टी हो गई।
0: अच्छा
1: है
0: भाई ले जाकर फिर बांध दी
1: बस अपने दूसरे अच्छा। घर में कर दी।
0: जी जी जी
1: घर गंदगाई है तो पानी चल रहा हो आजकल लगा हुआ आज सबके घर में हैंडपंप तो उसमें अपने नहला दो धुलाई दो।
0: बिल्कुल सही बात। धीरपाल जी आपने बहुत अच्छे विचार अपने भेड़ पालन के संबंध में हमारे श्रोताओं के बीच में रखे हैं, लेकिन चलते चलते आपसे अपने सभी श्रोताओं के लिए संदेश के रूप में जानना चाहेंगे आप क्या कहेंगे हमारे।

0: श्रोताओं से। आज हमारी और आपकी बातचीत को इस कार्यक्रम ग्राम जगत के माध्यम से बहुत सारे श्रोता सुन रहे हैं, क्या कहेंगे उनसे आज आप?
1: मैं आप उनसे सब लोगों से हाथ जोड़ के यही कहता हूँ, बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं वो तो भेड़ चराए या पशुपाल हैं ठीक, और जो नए जवान हैं वो इन इस धंधे को छोड़ के अपने पढ़ाई लिखाई सबसे पहले करें
0: जी।
1: पढ़ाई लिखाई अनिवार्य है
0: जी,
1: ये चीज तो साहब बाद की है। अगर आपने पढ़ लिख के और कोई काम ना कर लो, कोई रोजगार ना, तो अपन चार भैंसे पाल लो
0: जी जी,
1: भेड़ चुमा लिख रहो
0: जी,
1: उससे जा अपनी आमदनी हो जाएगी
0: जी।
1: और पढ़ाई लिखाई जो है अनिवार्य है, क्योंकि मेरी बच्चा मतलब अनपढ़ रह गए, हाई स्कूल के पेपर नहीं दिए, आज वो तो अब वो पढ़ा लिखा होता उसकी तनख्वाह हाई फाई होती
0: जी।
1: कि जो बिल्कुल बेरोजगार हैं वो धन पालन की कोशिश करें, और जो अन्यथा जवान हैं वो पढ़ लिख के अपने कहीं ना कहीं टिकें, जो बिल्कुल बेरोजगार हैं वो तो धन में फंसे रहें, और जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो अपने कहीं ना कहीं नौकरी देखें, या कहीं आप जैसे लिख कर पढ़ गए आप कामयाब, आप भी लोग सब कामयाब होने चाहिए
0: जी जी जी।
1: घूमनू तो बहुत बाहर है
0: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ, घर से चले आए अब प्यास लगे चाहे भूख लगे,
0: बिल्कुल अकेले
1: तो चलने हैं
0: बिल्कुल हाँ। बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे श्रोताओं को दिया, और अपने जो भेड़ पालन संबंधी अनुभव थे, विचार थे, वो हमारे श्रोताओं के बीच में रखे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
4: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: देखो भैया, धीरपाल ने बताई ही कि भेड़ पालन से का फायदा है, और जो हमारे कृषक साथी हैं, पशुपालन कर रहे हैं, वे अपने पशुपालन करके कितनी आमदनी कमा सकते हैं, और ये जो हैं अपनी भेड़ पालन से किस तरीका से अपने परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं, और अपने भेड़न के स्वास्थ्य के प्रति कितने सजग हैं। और यह है भैया ग्राम बली विकासखंड मझगमा बरेली के रहने वाले हैं। तो भैया देखो, अब बातचीत या चर्चा आपसे और करें, बात से पहले सुन लेते हैं जो एक लोकगीत भैया, और जब लोकगीत को सुनने के लिए सोशल मीडिया कमेंट्स के माध्यम से हम तक अपने नाम जो है पे लिख करके भेजे हैं, पेशोता हैं। जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज, सत्येंद्र, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुसुम, निव्या, सरिता। ग्राम फारसी जिला हिसार से राजकुमार हुड्डी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, और इसी लोकगीत की फरमाइश की है बलई भगवंतपुर से राधा, ज्योति, धीरज पाल, कमला देवी, दरिया सिंह, सर्वेश, मीरा, नीलम, सीतापाल, ममता, माया देवी, पुष्पा देवी, सरजनी, अंजलि, अनपन और रोहित पाल ने। आप लिख रहे हैं नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से बेद मिड्डा, अलका मिड्डा। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इशरार, नरगिस खातून। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, अमन, सनोज और इनके समस्त परिवारीगण। गली शिकलापुर बरेली से हमें लिख रहे हैं रतनमाला मौर्य, मुकेश, प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव, चंद्र प्रकाश। कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से ही हैं जमुना प्रसाद मौर्य, किरण, दृष्टि, मानवी। शिवहारा बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफत, कादिर। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुन लेते जो लोकगीत।

श्रोता, हमें उम्मीद है लोक गीत आपको पसंद आओ होगा। और अब जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चा हैं उनकी पढ़ाई लिखाई की तरफ आज के दौर में और ज़्यादा जरूरी हो गई है कि हम ध्यान दें। और जो हमारे शरारती बच्चा हैं, कुछ स्कूल को समय होता है तो जान की ना सोचा था। और आने वाले समय में भैया अब स्कूल खुलने वाले हैं, सब तैयारियां बच्चे अपने घर पर कर रहे हैं, और उनके माता पिता की और जिम्मेदारी बन जाती है कि जो अवशेष काम स्कूलन के रह गए उस काम को समय रहते पूरा करावें। और जो काम स्कूल से आपके नन्हे मुन्ने बच्चन को मिलो हो, वो जब स्कूल जाए तो भैया उनको वर्क काम पूरा होना चाहिए। और एक मानसिक तौर से आपको बच्चा तरोताजा होकर अपने स्कूल में नए सत्र में प्रवेश करें। और जो तभी कर पावे वो, जब आप अपने बच्चे की पूरी तरीका से मदद और उसके कामकाज पर गौर करेंगे। और भैया कार्यक्रम को समय जो है अब हमें इजाजत न दे रहो है, और कोई बातचीत या चर्चा अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे करी जाए। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अब आपसे विदा लेने को समय आए चलो है। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने भैया कन्हैया को कार्यक्रम ग्राम जगत से यहीं पर अनुमति दीजिए और स्वीकार कीजिए हमारी। राम राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। ट्यून किया है आपने 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं शाम के ठीक 7। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि पाठशाला, जिसमें आज का विषय है कृषि में ड्रोन का प्रयोग किस तरह। जिन मेहमान हैं हमारे कार्यक्रम में, श्री विनीत कुमार शुक्ल, जिनसे बातचीत कर रहे हैं रविंद्र कुमार।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कृषि पाठशाला। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं जनसंपर्क अधिकारी इफको आंवला बरेली, श्री विनीत कुमार।

0: शुक्ला जी। विनीत जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी।
0: जैसा कि हमारा विषय है खेती में ड्रोन का प्रयोग किस तरह, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इसका प्रयोग शुरू हो गया है खेती में।
1: बहुत ही अच्छा सवाल है रविंद्र जी आपका। देखिए, भारत लगातार जिन हाथों में है वो उन्नत की तरफ बढ़ रहा है
0: जी।
1: और जब हम उन्नत की बात करें तो उन्नतशील खेती को हम कैसे नकार सकते हैं
0: जी जी।
1: आज देश की जो परंपरागत खेती की जो व्यवस्था है उसमें हम व्यवसायिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं
0: जी।
1: और ऐसे में हम जो तकनीकी है, प्रौद्योगिकी जिसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी, उसकी अगर हम बात ना करें तो वो भी अधूरापन होगा
0: जी।
1: आज के जो युवा हैं बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ करके खेती की तरफ आ रहे हैं, वानिकी के क्षेत्र में आ रहे हैं
0: जी।
1: तो ड्रोन अभी तक अगर आपने देखा होगा तो शादियों में, बर्थडे में, अलग अलग उत्सवों में आपने अपने सर के ऊपर मंडराते हुए ड्रोन देखा होगा।
0: जी
1: लेकिन
0: जी।
1: अब ये बिल्कुल बदल गया है। अब स्थिति है कि खेत की पगडंडियों से होकर के लहलाती फसलों के ऊपर ड्रोन हमारे चलते हैं। ड्रोन आज की उन्नतशील खेती की आवश्यकता बन गया है
0: जी जी।
1: अब चूंकि आपने ड्रोन की उपयोगिता की बात की, आगे बढ़कर के आने के जो काम किया है
0: जी जी
1: वो विश्व की विशालतम किसानों की सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको, यानी कि पूरी तरह से किसानों की जो सहकारी संस्था है
0: जी,
1: उसके जो मुखिया हैं इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी जी और हमारे जो प्रबंध निदेशक महोदय हैं श्री के जे पटेल जी के नेतृत्व में
0: जी,
1: अभी हाल में ही पूरे देश में 19 राज्यों से होकर गुजरने वाली 5 सचल दस्तों को हरी झंडी दी गई है
0: जी जी,
1: जिसका काम है कि न केवल हम ड्रोन की परंपरागत शैली को लोगों को समझाएं, युवाओं को समझाएं
0: जी,
1: और उन्नतशील खेती की तरफ आगे बढ़े। ये 19 राज्यों, 560 जिले और देश की 3,477 तहसीलों से होकर के ये काफिला गुजरेगा
0: जी।
1: तो रविंद्र जी सोचिए कि आज जब हम खेत पर बैठे होंगे, चौपाल पर हमारे किसान भाई बैठे होंगे
0: जी,
1: और उनके गांव में वो सचल रास्ता जाएगा, यानी वाहन जाएगा
0: जी,
1: और वहां पर ड्रोन, इसके साथ साथ जो नैनो उर्वरक है, जो आज की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब हम ड्रोन की बात करते हैं
0: जी,
1: तो ड्रोन की उपयोगिता है क्या रविंद्र जी?
0: जी,
1: ड्रोन असल में फसलों पर होने वाले छिड़काव की पद्धति का एक ऐसा अत्याधुनिक यंत्र है
0: जी, जी,
1: जिसे हम ड्रोन कहते हैं। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा शादियों में फूल की बारिश होती है ड्रोन से
0: जी,
1: हम वर वधु को देखते हैं तो यहां तक कि उनके पास माला पहुंचाने का काम ड्रोन कर रहा है, यहां तक कि घर के दरवाजे पर अगर हम विदेशों की झलक देखें आजकल की रील के माध्यम से तो हम देखते हैं कि उन पर जो घरेलू उपयोगिता के जो संसाधन होते हैं वो डोर स्टेप यानी घर के दरवाजे पर ड्रोन पहुंचा रहा है
0: जी जी।
1: तो ऐसी कल्पना अगर हम कर सकते हैं तो हम खेत पे लहलाती फसलों पर किसान भाइयों के लिए ड्रोन क्यों नहीं पहुंचा सकते? तो जब हम ड्रोन पहुंचाते हैं तो उसके साथ साथ हम तरल नैनो उर्वरक को पहुंचाते हैं
0: जी।
1: हम बहुत ही जल्दी बताएंगे आपको अगले सवाल में कि ड्रोन की उपयोगिता और जो हमारे नैनो तरल उर्वरक है इफको के
0: जी,
1: वो एक दूसरे से कैसे, इसकी जो सामंजस्य है और कैसे हम उन्नतशील खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं
0: जी। विनीत जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि तकनीकी जो है, तकनीकी का समावेश अगर हम आज खेती में नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और समय के साथ भी अगर हम कदम से कदम मिलाकर नहीं चले तो पीछे रह जाएंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि ड्रोन और नैनो उर्वरक, तरल उर्वरक, ये एक दूसरे के पूरक हैं, और चूंकि जब वो बात खेती में प्रयोग की करते हैं तो किस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये कैसे उपयोगी साबित हो सकता है?
1: छोटी छोटी चीजों में हम रविंद्र जी इसको समझना चाहेंगे
0: जी।
1: सबसे पहले ड्रोन, हमने ड्रोन को लॉन्च करने से पहले, यानी कि हमारी जो सहकारी संस्था जो विश्व की है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको
0: जी,
1: इसके लिए जो हमारे मुखिया है, इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले गांव की बेटियों को ड्रोन दी दी
0: जी,
1: और बेटों को ड्रोन पायलट के तौर पर संज्ञान में लिया और इनको एंटरप्रेन्योर के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए इनके इनकी ट्रेनिंग कराई। इनको ट्रेनिंग कराने के बाद में देश को हमने ड्रोन दिए और इनके हवाले ड्रोन करते हुए इनको जब प्रशिक्षित किया तो इनकी ड्यूटी हुई, इनका इनकी जिम्मेदारी बढ़ी कि हम गांव की पगडंडियों से होकर के, चौपालों से होकर के हम खेत की उस जगह पर पहुंचे जहां पर लोग अभी तक परंपरागत उर्वरक का इस्तेमाल करते थे
0: जी।
1: तो ये जो ड्रोन है एक वाहन के साथ होता है, उसमें इफको के जो नैनो यूरिया तरल प्लस और नैनो डीएपी, इसके साथ साथ नैनो के बहुत सारे उर्वरक हैं
0: जी,
1: इनको हम उस वाहन में लेके जाते हैं और जो हमारा जो ड्रोन पायलट है वो वहां पहुंचता है। अब उपयोगिता के लिए हमने एक ऐप लॉन्च किया है, चूंकि हम तकनीकी की बात करते हैं, प्रौद्योगिकी की बात करते हैं।

0: करते हैं। तो इफको का जो भी कोई किसान भाई है वो अपने एंड्रॉयड फोन पे या फोन के माध्यम से किसान सेवा सेंटर के माध्यम से, और चूंकि इफको का जो ऐप है इफको किसान उदय ऐप,
1: जी
0: उसके माध्यम से हम प्रति एकड़ के हिसाब से हम तय करते हैं कि हमको इसमें उर्वरक का छिड़काव करना है।
1: जी
0: तो उर्वरक के छिड़काव के लिए हम, चूंकि जो नैनो यूरिया तरल प्लस की हमने बात कही, ये पूरी तरह से रविंद्री स्वदेशी है, इसको बनाने का श्रेय इफको को जाता है,
1: जी
0: और देश ही नहीं बल्कि विश्व के पटल पर विश्वव्यापी स्तर पर इसकी ख्याति हो रही है दिन ब दिन।
1: जी
0: और अभी जो बीते दिनों में आपने देखा कि ऐसे ही सुनने को आ रहा था कि आने वाले दिनों में क्या उर्वरक की कमी तो नहीं हो जाएगी, उसके विकल्प के तौर पर भी ये बहुत अच्छा रहा कि हमारा नैनो यूरिया तरल प्लस और नैनो डीएपी, ये
1: जी
0: दोनों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है और ये किफायती भी है। रविंद्र जी,
1: जी जी
0: अगर हम देखें तो प्रति अगर हम नैनो का जो यूरिया का जो बैग है वो 45 किलो का एक
1: 45
0: बैग
1: किलो
0: है,
1: का
0: और नैनो यूरिया तरल प्लस का जो बॉटल है वो 500 ml की है,
1: जी
0: यानी कि एक बोरी के बराबर 500 ml की बोतल है, यानी
1: जी
0: कि वजन में हल्की,
1: हाँ
0: किसानों के कांधे से बोझ हल्का किया,
1: बिल्कुल
0: और उन्नतशील खेती के लिए इसमें चूंकि कम लगता है, छिड़काव होता है, तो इसी तरल उर्वरक को हम इस नैनो ड्रोन में डालते हैं।
1: जी
0: ड्रोन में किन मानकों पर इसका इस्तेमाल करता है, जो हमारे ड्रोन पायलट या ड्रोन दीदी होती हैं वो प्रशिक्षित होते हैं,
1: जी
0: वो किसान भाइयों को समझाते हैं, किसान भाई अपनी उपयोगिता के हिसाब से किसान जो इफको किसान उदय है उसके माध्यम से वो बताते हैं कि हमको इसकी आवश्यकता है,
1: जी
0: और इसके बाद फिर ये ड्रोन उस खेत पर जाता है और उसके चारों कोनों की मैपिंग करते हुए ये बताते हैं कि ये कितनी उसकी जो खतौनी है या इसका जो क्षेत्र है, वो क्षेत्रफल के आधार पर फिर ड्रोन उड़ना शुरू करता है।
1: जी
0: अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि घंटों लगते थे हमको उर्वरक के छिड़काव के लिए,
1: बिल्कुल
0: जहां हमें पूरे पूरे दिन का इंतजार करना पड़ता था, मौसम का इंतजार करना पड़ता था, और यहां तक कि अपने सहायक के तौर पर हमको किसी किसान भाई को दिहाड़ी के तौर पर भी हमें इस्तेमाल करना पड़ता था।
1: जी
0: अब ऐसा नहीं है, अब आने वाले दिनों में जिस तरह से हम शहर में बैठ करके हमें कुछ खाने की इच्छा होती है या हमें कुछ दवाइयां मंगानी होती है, तो हम प्रशिक्षित कंपनियों के लिए हम अपने ऐप के माध्यम से ऑर्डर करते हैं
1: जी
0: और आपके दरवाजे की घंटी बजती है और आपके सामने वो सामान उपलब्ध होता है।
1: जी
0: ठीक इसी तरह से जो लगातार इफको जो देश के लिए कर रहे हैं, उन्नतशील खेती के लिए कर रहे हैं,
1: जी
0: और खास तौर पर ये कैसे हो पा रहा है, जो देश का नेतृत्व जिनके हाथों में है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
1: जी
0: और
1: जी
0: हमारे जो सहकारिता मंत्री हैं श्री
1: जी
0: अमित शाह जी, इनकी
1: जी
0: जो जो सोच है उस परिकल्पना को साकार कर रहा है इफको। तो
1: बिल्कुल
0: ये आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे प्रयास हैं, और इसके साथ साथ रोजगार परक भी है।
1: जी
0: देखिए जब हम ड्रोन दे रहे हैं, हैवी ड्यूटी के ड्रोन्स हैं, वाहन के साथ हैं, सचल दस्ते के साथ हैं, एक तरफ तो हमने ये दिया
1: जी
0: और दूसरी तरफ हम महाअभियान, जैसा कि मैंने बताया,
1: जी
0: नैनो उर्वरक जो इफको के तरल उर्वरक है
1: जी
0: उसकी जागरूकता का महाअभियान फैला रहा है,
1: जी
0: यानी कि गांव गांव पांव पांव चल करके हम बता रहे हैं कि कैसे इसकी उपयोगिता कर रहे हैं, उन्नतशील खेती में कैसे हम कम लागत में ज्यादा पैदावार कर सकते
1: जी
0: हैं और रासायनिक उर्वरकों से कैसे बचा जा सकता है।
1: बिल्कुल
0: ये तो हो गया तरीका।
1: जी
0: रोजगार परक की अगर हम बात करें तो जब हम ड्रोन की बात करते हैं तो
1: जी
0: जो भी हमारा एंटरप्रेन्योर के तौर पर जो हमारी ड्रोन दीदियां हैं या
1: जी
0: ड्रोन पायलट्स हैं,
1: पायलट्स हैं
0: उनको हम प्रति एकड़ के हिसाब से जो मानक तय है उसमें 300 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनको एक तरह से पारिश्रमिक शुल्क मिलता है, और
1: जी
0: इफको भी उनको एक तरह से प्रोत्साहन राशि के तौर पर कुछ देती, जैसे कि 100 रुपए प्रति
1: जी
0: एकड़, यानी
1: जी
0: कि एक तरफ तो हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे हैं,
1: जी जी
0: देश उन्नतशील प्रगति कर रहा है, लहलहाती फसलों को देख रहे हैं, चाहे वो छोटी फसलें हों या गन्ने की बड़ी फसलें
1: बड़ी फसलें
0: हैं, हम आने वाले दिनों में पूरी तरह से खेती पर, जैसे कि भारत की हम बात करते हैं कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है,
1: जी
0: लहलहाती फसलों का देश है, तो
1: जी
0: ये निश्चित तौर पर जो ड्रोन की जो विचारधारा है वो
1: जी
0: पूरी तरह से एक क्रांतिकारी विचारधारा, एक नया मानक स्थापित करेगी, और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इफको का जो परिवार आपने हमें बुलाया है, यहां
1: जी
0: से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर इफको का बहुत बड़ा संयंत्र, 1200 एकड़ का एक संयंत्र है,
1: जी
0: जिसका नेतृत्व तो हमारे इफको आंवला इकाई के श्री सत्यजीत प्रधान जी करते हैं।
1: जी
0: लगातार उनके नेतृत्व में हम जन जागरण अभियान फैला रहे हैं, यहाँ की जो 9 विधानसभा है, अलग अलग क्षेत्र है, मंडल के 4 जो जिले हैं,
1: जी
0: लगातार हम कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ, हमारे जो स्वयंसेवी संस्था है उनके माध्यम से, और जो एक्सपर्ट है, जो विषय विशेषज्ञ है, चाहे वो IVRI हो, हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो,
1: जी जी
0: लगातार हम इस महाअभियान को इफको नैनो यूरिया तरल प्लस और डीएपी के साथ साथ जिंक और कॉपर का जो समावेशी जो प्रयोग है
1: जी
0: उसको हम किसानों को लेकर के बहुत समझा रहे हैं जन जागरण के माध्यम से, और ड्रोन के प्रयोग से निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो उन्नतशील, जो यही हम कहते हैं कि सहकार से समृद्धि की तरफ हम बढ़ रहे
1: बढ़
0: हैं।
1: रहे
0: रविंद्र
1: हैं
0: जी
1: बिल्कुल विनीत जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया।

0: भाई। और कई बार क्या है कि जब किसान भाई खेतों में खुद स्वयं अंदर जाके ये जो उर्वरक हैं इनकी पूर्ति खेतों के लिए करते हैं, तो कई बार सर्पदंश की घटनाएं हो जाती हैं। कई बार जैसे आपने अभी बताया, गन्ने की फसल, खासकर गन्ने की बड़ी फसल होती है, उसमें जाके उर्वरकों का छिड़काव करना बड़ा कठिन हो जाता है। किसान भाई बताते हैं कि सब हाथ कट जाते हैं, हाथों की बड़ी सुरक्षा करनी पड़ती है, चेहरे में गन्ने की पत्तियां लग जाती हैं। इस सब से भी ये जो ड्रोन पद्धति है ये निजात दिलाती है किसानों को, तो बहुत लाभ है। दूसरी तरफ आपने बताया कि रोजगार परक है इससे, जैसे ड्रोन दीदी या ड्रोन पायलट हैं उनके लिए रोजगार सृजन भी हुआ है। और साथ ही साथ तरल उर्वरक की जो बात है, तरल उर्वरक ने बहुत काम आसान कर दिया है किसानों का। तो अब हम जानना चाहते हैं कि किसान भाई इसका प्रयोग कर रहे हैं।
1: विश्वव्यापी पटल पर।
0: जी
1: और इसके लिए देखिए, हम तो उत्पादन करते हैं संयंत्र के माध्यम से।
0: जी जी
1: इसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी जिनके कांधों पे है
0: जी
1: वो है विपणन विभाग।
0: जी
1: उत्तर प्रदेश का जो राज्य विपणन मुख्यालय है राज्य का, वो लखनऊ में स्थित है।
0: जी जी
1: वहां से इसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है। दिशा निर्देश दिल्ली मुख्यालय से बनते हैं। श्री योगेंद्र कुमार जी जो कि इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं,
0: जी
1: साथ ही साथ हमारे संजय कुलशेष जी हैं, वो लगातार पूरे देश में इस जनजागरण के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
0: जी
1: और उनका जो दिशा निर्देश मिलता है वो राज्य के अलग अलग राज्यों के जो विपणन
0: जी जी
1: राज्य मुख्यालय हैं उनके माध्यम से पूरे प्रदेश में इस तरह से हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको दिशा निर्देश मिलते हैं। प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग होती है,
0: जी
1: फॉलोअप लिया जाता है। रासायनिक उर्वरकों की जो खपत है वो कम की जा रही है,
0: जी
1: और जो नैनो यूरिया तरल प्लस है और नैनो डीएपी जिंक कॉपर, और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा,
0: जी
1: ये न केवल पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बेहतर है, हमारी जमीनों को कम नुकसान पहुंचाते हैं,
0: जी
1: और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हमारी लहलाती फसल स्वस्थ होगी, हम पोषक तत्वों से भरी होगी, तो हमारा जो जो हमारी मानव की श्रृंखला है वो भी
0: जी
1: स्वस्थ रहेगा।
0: बिल्कुल
1: धरा स्वस्थ रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे।
0: बिल्कुल, अन्नदाता खुश तो सब खुश। और इसी क्रम में अब चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि किसान भाई, जैसे आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में तो बताया ही था कि किस तरह से कौन सा ऐप है जिसके माध्यम से किसान भाई ये ड्रोन को बुक कर सकते हैं और अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं, चाहेंगे एक बार आप फिर से बता दीजिए।
1: इफको किसान उदय,
0: जी
1: जो भी हमारे किसान भाई अन्नदाता भाई एक ऐसा मोबाइल रखते हैं जिसे हम एंड्रॉयड बोलते हैं, यानी कि जिसके ऊपर स्क्रीन रहती है,
0: जी
1: जिसको हम उंगलियों के माध्यम से मोबाइल चलाते हैं,
0: जी जी
1: उसमें किसी भी, अब तो चूंकि हमारा किसान भाई भी बहुत ही जानकार है, जागरूक है, उसमें आप इफको का ऐप है जो कि ऐप के जो प्ले स्टोर है उनमें से आप इफको किसान उदय उसको आप इंस्टॉल कर लें।
0: जी
1: उसमें न केवल आप अपने रासायनिक जो उर्वरक के अलावा कीटनाशक है, खरपतवार के लिए बीज
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: उसके साथ साथ नैनो उर्वरक तरल प्लस है, हमारा
0: जी
1: नैनो उर्वरक का डीएपी यूरिया,
0: जी
1: इन सब की न केवल जानकारी बल्कि आप एक इसके लिए इंडेंट दे सकते हैं कि हमारे खेत में अपना हमें इसके छिड़काव की आवश्यकता है, आप कृपया आए और इसमें हमारा छिड़काव करें।
0: जी
1: इसके लिए एक विशेष तौर पर मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर वो समूह में इसका इस्तेमाल करते हैं, कई किसान भाई मिलकर इसका इस्तेमाल करते हैं,
0: जी जी
1: तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा और समय कम तो लगेगा ही लगेगा,
0: जी
1: देश के किसानों को ज्यादा इससे लाभ मिलेगा। और रविंद्र जी, एक बहुत और महत्वपूर्ण है, ये
0: जी
1: जो हमारा इफको किसान उदय ऐप है, न केवल हमारे नैनो तरल के जो उर्वरक है उनकी न केवल जानकारी देता है बल्कि आपके फसलों की भी जानकारी देता है, मौसम की जानकारी देता है, और अपने जो किसान मंडियां हैं, जैसे कि हमें भाव का पता करना है,
0: जी जी
1: तो न केवल अपने राज्य में बल्कि देश स्तर पर उसका क्या मूल्य है वो भी उसकी जानकारी कर सकता है। तो ये
0: जी
1: बहुत ही इफको ने बनाया है,
0: जी
1: किसान भाइयों के लिए बनाया है।
0: जी
1: बार बार हम कहते हैं कि सहकार से समृद्धि का रास्ता
0: बिल्कुल
1: जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खोला है,
0: जी
1: वो निश्चित तौर पर इससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: इफको लगातार जन जागरण के माध्यम से लोगों को ये बात पहुंचा रही है।
0: विनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी हमारे माध्यम से, रेडियो के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने में आपने सहयोग दिया, बहुमूल्य समय आपने आकाशवाणी परिवार को दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हृदय से आभार रविंद्र।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि पाठशाला, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, अब एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी होगी 20 जून को, यानी कि कल। ये किस्त जारी की जाएगी प्रधानमंत्री।

श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त होगी। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, अब खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। श्री जितेंद्र पाल सिंह पुत्र धनपाल सिंह निवासी ग्राम प्रहाड़पुर गड़िया रंगीन जनपद शाहजहांपुर से सूचित करते हैं, कस्बा फतेहगंज पश्चिमी से सूचित करते हैं कि उनके पुत्र सचिन सिंह दिनांक 22 मई 2026 से अपने निवास स्थान से गुमशुदा है। इनकी उम्र करीब 20 वर्ष है। इकहरा मजबूत जिस्म है, रंग गेहुआ है, कद 5 फुट 6 इंच, आंखों का रंग काला, बालों का रंग काला, ये चेहरा लंबा, ये पैंट और शर्ट पहने हुए हैं। जिस किसी को इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो, कृपया इस पते पर सूचित करें। गुमशुदा सेल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जनपद बरेली, उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, अभी अन्य खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। हरिशंकर पुत्र ननकीलाल निवासी ग्राम चनेटा थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली से सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी नन्ही देवी दिनांक 19 मई 2026 से अपने निवास स्थान से गुमशुदा है। इनकी उम्र करीब 35 वर्ष है। कद 5 फुट 5 इंच, रंग गेहुआ, आंखों का रंग काला, बालों का रंग काला, चेहरा गोल, ये काले रंग का सूट और सलवार पहने हुए हैं। जिस किसी के हो इनके संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त हो, कृपया इस पते पर सूचित करें। गुमशुदा सेल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जनपद बरेली, उत्तर प्रदेश। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना संपन्न हुई। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। ट्यून किया है आपने 100.4 FM। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126

0: 26 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा एसआईटी की जांच सामने आएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल को दी 3 ट्रेनों की सौगात। कहा आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी आज आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक में हुए शामिल। वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित देश भर से जुड़े लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदले। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत हुई है। यह युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी

0: आज उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है। अब देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, ये इसी पंच प्रण का परिणाम है और डबल इंजन सरकार का परिणाम है।
1: मुख्यमंत्री ने श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी जांच बैठाई है, एसआईटी की जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
0: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो।
1: मुख्यमंत्री ने नगर निगम अयोध्या में 290 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंडा में देवीपाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने देवीपाटन मंडल के प्रमुख 13 मार्गों के विकास को मंजूरी दी। कुल 4,901 करोड़ 65 लाख रुपए की 1,000 से अधिक विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति भी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बिहार के छपरा जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वांचल को सौगात देते हुए दोहरी घाट ओढ़ियार ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार और मऊ आनंद विहार नियमित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मऊ के रास्ते संचालित होने वाली छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी जो दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी होते हुए पटना और सिलीगुड़ी तक जाएगी।
2: आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी।
1: इस दौरान मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी शामिल हुए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में इंडिया फर्स्ट की भावना राष्ट्रीय चरित्र बन गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इसी भावना ने वैश्विक मंच पर भारत के मान सम्मान और सामर्थ्य को नई ऊंचाई दी। इसी क्रम में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा आज वाराणसी में वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल और पत्र सूचना ब्यूरो के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
3: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण

0: हो चुका है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज आगरा में प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक आयोजित की। बैठक में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए और उन्होंने सभा को संबोधित किया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने इसे सफल बताया। इस बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, रूस, वियतनाम और भारत सहित ब्रिक्स सदस्य और ब्रिक्स सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और अन्य हितधारक शामिल हुए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स बैठक की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रही। इस दौरान प्रतिनिधियों ने वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एमएसएमई की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुआ। ब्रिक्स एसएमई फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और एमएसएमई के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। बैठक में प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेन चौधरी भी उपस्थित रहे। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एसआईटी की जांच से सामने आएगा मंदिर चढ़वा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल को दी 3 ट्रेनों की सौगात। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी आज आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक में हुए शामिल। वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: ट्यून किया है आपने 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और स्टूडियो की घड़ी में हो गया है समय प्रोग्राम रेडियो हेल्पलाइन का। और आज प्रोग्राम का विषय है गुर्दे की पथरी एवं पेशाब संबंधी समस्याएं, और उनका निदान विशेषज्ञ हैं नीरज कुमार अग्रवाल।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
4: पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में गुर्दे की पथरी, मूत्र रोग और निसंतान दंपतियों के संपूर्ण इलाज का एकमात्र स्थान
3: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
4: अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बरेली शहर का एक ऐसा अस्पताल जहां उपलब्ध है
5: मर्दाना कमजोरी,
4: महिलाओं के मूत्र रोगों,
5: गुर्दे की पथरी,
3: गदूद और बच्चों की पेशाब संबंधी समस्याओं के समाधान बहुत कम खर्च में,
5: उच्च कोटि की विदेशी मशीनों से सुसज्ज,
3: यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट लिथोट्रिप्सी विशेषज्ञ द्वारा संचालित
5: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
4: हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9837057929। हमारा टेलीफोन नंबर है 0581253-1234।
6: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मुकेश कुमार पांडे का नमस्कार। और मेरे साथ आज स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
7: सारे श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार।
6: डॉक्टर साहब, नमस्कार के साथ ही आज बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हम आपसे करने जा रहे हैं, क्योंकि हर बार आप बताते हैं कि भाई गुर्दे में अगर पथरी है तो उसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, और ऑपरेशन भी कई तरीकों से करा जाता है। अब तो बहुत एडवांसमेंट हो गया, कई आधुनिक तरीके आ गए हैं, लेकिन आज कुछ अलग ही बात हम आपसे करना चाह रहे हैं।
7: अच्छा, बताइए
6: अगर आपकी अनुमति हो तो।
7: जी बताइए
6: डॉक्टर साहब, आज कुछ ऐसा तरीका बताइए जबकि गुर्दे में पथरी हो और उसका ऑपरेशन ही न करना पड़े, ऐसे ही ठीक हो जाए। क्या ऐसी भी कुछ संभावना है, कुछ ऐसा मेडिकल साइंस में है संभव?
7: आज आपने बीच का प्रश्न पूछा, पहले

0: तरफ हम बताते आए हैं कि गुर्दे की पथरी ना बने
1: जी,
0: जिस तरह से उसको जो है आपको ये परेशानी ही ना हो
1: जी, जी।
0: फिर अगर बन रही है तो किस तरह से आधुनिक विधि से हम उसको लेजर से किरणों द्वारा भी इलाज कर सकते हैं
1: जी, जी।
0: तो ये जो बीच वाला जो इश्यू है कि जी बनी है
1: जी
0: और उसका इलाज भी जो है वो बिना ऑपरेशन के या लेजर टेक्निक से किया जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है
1: जी।
0: इसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि कौन सी पथरियां जो हैं
1: जी
0: वो इस लिस्ट में आती हैं जिसका इलाज जो है वो बिना ऑपरेशन के हो सकता है।
1: अच्छा।
0: कुछ ऐसी पथरियां हैं जो साइज के ऊपर हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि पेशाब की नली जो है 3 से 4 mm की होती है।
1: बिल्कुल।
0: इससे छोटी पथरी होगी
1: जी
0: तो उसको हम दवाइयों से या किसी भी विधि से उसको उसके रास्ते से निकाल सकते हैं।
1: अच्छा।
0: लेकिन अगर वो साइज उससे बड़ा हो गया तो उसमें जो है वो ऑपरेशन या उसको छोटा करना जरूरी हो जाता है
1: जी, जी।
0: तो इसमें मरीज को या पेशेंट को ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जी उसको सिम्टम हो या ना हो अपना बराबर चेकअप कराता रहे
1: जी।
0: और अगर उसको पथरी हो रही है तो उसको जल्दी से जल्दी इलाज के लिए आ जाए।
1: चेकअप कराने से फायदा डॉक्टर साहब जैसा आप बता रहे हैं ये होगा कि पता लग जाएगा कितनी बड़ी पथरी है, उसका साइज कितना है
0: जी।
1: और अगर शुरुआती अवस्था में ही पता लग जाता है तो निश्चित ही है कि फिर जो आप बता रहे हैं
0: वो हो सकता है,
1: वो संभव।
0: क्योंकि ऐसा है कि 3 से 4 mm से पथरी या उससे छोटी पथरी हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें कोई परेशानी नहीं होती
1: जी।
0: तो मरीज वो कहता है मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, मैं किस चीज का इलाज कराऊं या क्यों अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करवाऊं। तो इसमें वो जब बड़ी हो जाती है और परेशान करती है तब तक वो इतनी बड़ी हो जाती है कि जी उसका दवाइयों से या किसी भी नॉन ऑपरेटिव विधि से निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें छोटी पथरियां का इलाज दवाइयों से हो सकता है
1: जी।
0: और मैं तो कहूंगा कि 70 से 80% पथरियां जो हैं वो इस विधि से निकाली जा सकती हैं।
1: अच्छा।
0: अगर जो है वो टाइम से आ जाएं
1: जी, यानी समय पर पहचान
0: जी
1: और समय से इलाज की शुरुआत अगर हो जाती है तो ये बिल्कुल संभव है कि बिना किसी ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी निकाली जा सकती है।
0: और आप ये समझिए कि पहले जब हम आए थे
1: जी
0: तो ऑपरेशन की क्या उसमें तो बड़े बड़े ऑपरेशन और चीरे वाले ऑपरेशन करने पड़ते थे। पथरी का साइज है 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm।
1: डॉक्टर साहब आपने तो पत्थर निकाले हैं लोगों के जिस्म से और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम है
0: जी। वो 85 mm की पथरी एक बच्चे
1: 85 mm
0: जी 85 mm की पथरी एक बच्चे में निकाल, तो उस समय इतनी बड़ी थी जो जागरूकता कम थी।
1: बिल्कुल।
0: इसके बाद में धीरे धीरे अब पथरी का साइज कम होना शुरू हो गया है जब वो हमारे पास आते हैं, नहीं तो पेशेंट जो है जब डॉक्टर के पास में आता है तो साइज आमतौर पे बड़े ही होते थे
1: जी, जी।
0: अब वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि 50-50% दवाइयों से हो सकती है, 50% की ऑपरेशन की या ऐसी आधुनिकतम विधि से निकालने की जरूरत पड़ती है
1: जी। आम धारणा डॉक्टर साहब ये है कि अगर गुर्दे में किसी को पथरी है तो या तो उसे दर्द होगा
0: जी
1: या पेशाब में कोई समस्या होगी
0: जी।
1: लेकिन एक तरफ आप ये भी बताते हैं कि ये जरूरी नहीं है हर बार गुर्दे में दर्द हो, गुर्दे की साइड में और पेशाब में समस्या हो, पथरी फिर भी हो सकती है।
0: बिल्कुल हो सकती है।
1: वो कैसे डॉक्टर साहब?
0: देखिए ऐसा है, गुर्दे के 3 हिस्से होते हैं
1: जी।
0: उन हिस्सों में छोटी सी पथरी बैठी हुई है और कोई कोई रुकावट नहीं कर रही है तो कोई परेशानी नहीं होती है, पेशाब का जो फ्लो होता है आराम से होता रहता है और कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर वो हट के पेशाब की या गुर्दे की नली में आके फंस जाए
1: जी,
0: तो जैसे होता है ना कि नाली चोट हो जाती है तो जी, पानी आसपास फैल जाता है। अगर कम परेशानी है, ये छोटी है तो उसके साइड से निकल जाता है, लेकिन जब पथरी रास्ते में फंस जाती है तो फिर परेशानी शुरू हो जाती है।
1: अच्छा, यहाँ ये बात भी करना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि चूंकि पेशाब तंत्र की जो संरचना है उसके बारे में आपने हमारे श्रोताओं को कई बार बताया है कि पुरुषों की अलग होती है, महिलाओं की अलग होती है, बच्चों की अलग होती है। तो जो पथरी का साइज आप बता रहे हैं जो बिना ऑपरेशन के निकाली जा सकती है
0: जी,
1: महिलाओं में क्या साइज है मिनिमम जो कि बिना ऑपरेशन के निकल सकती है पथरी?
0: देखिए ऐसा है कि साइज तो बराबर का ही होता है महिलाओं में और पुरुषों में
1: जी।
0: परेशानी क्या होती है कि जी कुछ हार्मोन्स की वजह से
1: जी
0: और कुछ अन्य वजह से परेशानी आती है। अब जैसे कि अगर जो है फीमेल जो है प्रेग्नेंट है तो बच्चे का सर है या शरीर का हिस्सा है वो पेशाब की नली पे दबाव रखता है, तो ऐसे प्रेगनेंसी में जो है वो छोटी पथरियों में से भी जो है महिलाओं को परेशानी होने लगती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जी पथरी और उस समय जो है हम कोई ना तो एचसे कर पाते हैं
1: जी,
0: ना हम उसका कोई आधुनिकतम ऑपरेशन करते हैं जी। तो उसमें महिलाओं को

0: जब तक कि जी बच्चा हो नहीं जाता तब तक जो है वो परेशानी झेलनी पड़ती है। कई बार तो अबॉर्शन भी करवाना पड़ता है या
1: ओहो
0: टर्मिनेट करवानी पड़ती है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है कि जी जो है वो हर पुरुष और महिलाओं के साथ में परेशानी का सबब अलग अलग हो सकता है
1: जी
0: और इसका इलाज जरूरी है।
1: बिल्कुल, महिलाओं की बात आपने की है और बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर साहब कि पथरी की वजह से कई बार एबॉर्शन तक कराना पड़ जाता है।
0: जी
1: तो अगर कोई महिला, कोई युगल जो है वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं
0: जी
1: तो अल्ट्रासाउंड पहले कराने की जो बात है वो
0: जी
1: काफी हद तक इस मामले में भी मदद कर सकती
0: हाँ,
1: है।
0: इसमें मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जी अल्ट्रासाउंड दो तरह की शरीर में पथरी होती है, एक
1: जी
0: गुर्दे में होती है और एक गॉल ब्लैडर में पथरी होती
1: जी
0: है।
1: जी
0: और दोनों की ही पथरी अगर जो है वो अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हुए तो ऑपरेशन बहुत ही लिमिटेड उससे हो सकता है, हमें दवाई से ही कंट्रोल करना पड़ता है।
1: बिल्कुल
0: और वो फिर अगर शुरुआत में ही हो गया तो वो अगले 6 महीने 7 महीने तक जो है वो फिर महिला को जो है ये दर्द या इन्फेक्शन वगैरह बर्दाश्त करना पड़ता है, एंटीबायोटिक खानी पड़ती है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये परेशानी का सबब बन सकता है।
1: जी इसलिए पहले एक जांच हो जाए,
0: तो उससे काफी ज्यादा चीजें जो
1: मदद
0: है वो
1: मिल
0: मदद
1: जाएगी।
0: मिल जाती है।
1: जी बच्चों के विषय में डॉक्टर साहब हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है
0: जी
1: बच्चे के शरीर से पत्थर निकाला था, तो बच्चों में जो पथरी की संभावनाएं हैं या जो बच्चों में रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मरीज आ रहे हैं, वो किस शिद्दत से आ रहे हैं और वहां क्यों बढ़ रही है पथरी?
0: कि पहले जब हम शुरुआत में हम प्रैक्टिस में आए थे या देखते थे या पुराने भी रिकॉर्ड देखते थे,
1: जी
0: 15, 16, 20 साल से पहले जो है पथरियां बहुत ही कम होती
1: बहुत कम
0: थी,
1: होती थी। जी
0: मतलब होती ही नहीं थी। मान
1: जी
0: लीजिए
1: जी
0: कि जी यार बच्चे में है तो हम और परेशानी सोचते थे, पथरी सोचते ही नहीं थे।
1: जी
0: अब आपको आश्चर्य हो रहा कि 2-2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 8 साल के तो से 10 साल के तो बहुत ही ज्यादा
1: जी
0: पथरियों से इतने ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं कि जी एक वो अलग विभाग ही बन जा रहा है। उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है वो हमारा खान पान,
1: खान पान की वजह से ये पथरियां होती हैं।
0: 90% जो है वो फास्ट फूड के शौकीन होंगे,
1: जी
0: कोल्ड ड्रिंक पी रहे होंगे,
1: ओहो
0: एक्टिविटी उनकी कोई होगी नहीं,
1: जी
0: एक्सरसाइज, शारीरिक एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, और इससे गुर्दे की डैमेज वही बढ़ती हुई स्टेज है जिस समय की गुर्दा डेवलप हो रहा होता है
1: जी
0: और परेशानी का सबब बनता है। बच्चों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि जी उनका खान पान माँ बाप को भी रखना है, बच्चों को भी ध्यान देना
1: बिल्कुल
0: है, और उसमें जो है गुर्दे की पथरी की जो इंसिडेंस है या जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
1: बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बढ़ने की वजह आपने बताई दी है
0: जी
1: डॉक्टर साहब। अब चूंकि बात हम कर रहे हैं गुर्दे की पथरी का इलाज, वो भी बिना ऑपरेशन के, बड़ी
0: जी
1: महत्वपूर्ण बात है। हमारे श्रोता भी ये सोचते हैं कि जब भी डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब तो सर्जन है तो सर्जरी की बात बताएंगे,
0: जी
1: लेकिन आज तो विषय बिल्कुल अलग है डॉक्टर
0: जी
1: साहब, सर्जरी
0: बिल्कुल
1: की बात ही नहीं करनी है आज। हमें बताना है अपने श्रोताओं को कि गुर्दे की पथरी बिना ऑपरेशन के कैसे निकाली जा सकती है।
0: जी
1: आपने बताया कि इसका साइज बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अलावा जो पथरी बनने के, या ये कहें जिस चीज से पथरी बनती है, जो सॉल्ट होता है, क्या उसका भी कोई महत्व होता है?
0: वो तो है। इसमें जैसे भी मैंने बताया बच्चों में जो है वो फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक की वजह से बन रही है,
1: जी
0: बाकी और चीजें, किसी को यूरिक एसिड से पथरियां बन रही हैं,
1: अच्छा
0: किसी को कैल्शियम ऑक्सलेट से बढ़ रही हैं,
1: जी
0: तो खान पान तो जो है वो संतुलित और जिस तरह से खाना है वो सबके लिए है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन जो पथरियां बिना ऑपरेशन के निकालनी है तो उसके लिए साइज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: जी
0: दूसरी चीज, जल्दी से पता चले,
1: बिल्कुल
0: कई बार छोटी पथरी गुर्दे के उस हिस्से में पहुंची हुई होती है जहां कोई परेशानी नहीं होती है, रुकावट नहीं होती है,
1: जी जी
0: वहां पे हम उसको किरणों द्वारा तोड़ सकते हैं या फिर हम एक्सरसाइज से बता सकते हैं कि जी वो पेशाब के रास्ते निकल जाए।
1: एक्सरसाइज से भी डॉक्टर साहब ऐसा संभव है क्या?
0: एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण ये होता है कि जो जो चीज बैठी हुई है उसको हिलाना, जैसे
1: अच्छा
0: कि आप चावल फटकते हैं या चीजें आप सफाई के लिए, तो वो अपनी जगह से हिलती है
1: अच्छा
0: और उसके बाद में वो पानी पिया और बाकी जो है कुछ मेडिसिन दी तो उससे निकल सकती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि हमें कोई समस्या तो है नहीं,
0: जी
1: न कभी दर्द होता है और ना
0: जी
1: हमें कोई और समस्या है, तो हम क्यों जांच कराएं? जबकि जांच कराने पे कुछ और ही तस्वीर सामने आती है। तो ऐसी भी क्या परिस्थिति होती है गुर्दे में पथरी पड़ी रहती है और लोगों को पता भी नहीं होता?
0: बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके दोनों गुर्दों में बड़ी बड़ी पथरियां हो जाती
1: दोनों
0: हैं,
1: गुर्दों में?
0: दोनों गुर्दे फेल हो जाते हैं,
1: जी
0: और जब मेरे को पहली बार दिखाया, हमने टेस्ट करवाया, हमने कहा तुम्हारे दोनों गुर्दे फेल हैं और तुम्हें दोनों गुर्दे निकलवा के और उसके बाद में ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा।
1: गुर्दे फेल हो जाते हैं डॉक्टर
0: जी, बिल्कुल खत्म, उसमें कहीं कुछ नहीं हो सकता। तब वो कहते हैं डॉक्टर साहब, हम तो पहली बार अस्पताल में या किसी डॉक्टर को दिखाने आए हैं, इससे पहले हमें कोई समस्या ही

0: नहीं थी और उनके दोनों गुर्दे फेल हैं और उसका कोई इलाज नहीं। ऑपरेशन से भी वो पथरी निकालने के बाद वो गुर्दे काम नहीं करेंगे।
1: अच्छा, फेल होने की जो बात है डॉक्टर साहब, गुर्दा फेल किस परिस्थिति को या किस स्थिति को कहेंगे? क्या होता है शरीर में ऐसा जब
0: उसमें
1: गुर्दे फेल
0: जब
1: होते
0: ऐसे ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन जो है दो चीजें होती हैं,
1: जी?
0: वो जब बढ़ जाती हैं,
1: अच्छा,
0: और इतनी बढ़ जाती हैं कि जी वो सफाई या डायलिसिस के बिना नहीं निकाली जा सकती,
1: जी,
0: तो हम कहते हैं कि पेशेंट का या मरीज का गुर्दा फेल हो गया।
1: और ये दोनों गुर्दों के साथ एक साथ हो
0: जी
1: सकता है?
0: डायलिसिस की जरूरत तभी पड़ती है जब दोनों गुर्दे फेल एक साथ हो जाए।
1: जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर शुरुआत में ही हम जागरूक हो जाएं और एक छोटी सी जांच करा के ये पता कर लें कहीं गुर्दे में पथरी तो नहीं है, तो शायद इससे निजात मिल जाए। डॉक्टर साहब, आप ये भी बताते हैं कि जो हमारा ये क्षेत्र है रुहेलखंड का क्षेत्र, ये स्टोन बेल्ट है।
0: जी जी
1: इसके पीछे क्या वजह है? स्टोन बेल्ट क्यों कहा जाता है? सबसे ज्यादा पथरी यही क्यों होती है लोगों को?
0: देखिए, पथरी का जो आराम कारण जो है, वो जो मैं कई बार बता चुका
1: जी
0: हूँ,
1: जी
0: उसमें ये है कि पानी की मात्रा भी कम है और कुछ उसमें जो है जो
1: कंटेंट चाहिए।
0: कंटेंट जो है या उसमें जो अंदर डिजॉल्व है उससे होती है। दूसरी चीज, 9 से 10 महीने यहाँ पे भीषण गर्मी
1: जी
0: पड़ती है,
1: जी
0: फिर जो आदमी बाहर काम पे जाता है तो हर समय पानी की बोतल लेके तो चलता नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: तो उसमें क्या है कि जी पता चला सुबह 8 बजे निकला, उसने अगला पानी जो है वह शाम के 4-5 बजे पिया,
1: जी
0: उससे जो है वो जैसे किसी गिलास में आपने चीनी डाली, शुरू में तो घुल जाती है
1: जी
0: लेकिन आप डालते चले जाएं तो फिर वो बैठना शुरू हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: उसी तरह से जो है अंदर के जो शरीर की गंदगी है, पानी की कमी होने से वो बैठना शुरू हो जाती है गुर्दे के अंदर
1: जी
0: और वही फिर पथरी का आकार ले लेती है।
1: जी। डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ जिनको पथरी की समस्या हो चुकी है और वो लेजर से या फिर किरणों से किसी तरह इलाज करा चुके हैं, उन्हें दोबारा पथरी बनने की संभावना भी बढ़ जाती है, ऐसा
0: जी
1: आपने बताया है। क्या उन लोगों में जो दोबारा पथरियां बनती हैं उनको बिना ऑपरेशन के निकाला जा सकता है?
0: पथरी ये नहीं देखती कि मैं पहली बार बनी, दूसरी बार बनी या तीसरी बार बनी,
1: जी
0: वो तो साइज के ऊपर है। दूसरी
1: अच्छा
0: बार बनी और वो जागरूक है, उसने शुरुआत में ही पकड़ लिया उसका, तो इलाज हो सकता है उसका।
1: जी, क्या बताना चाहेंगे उन श्रोताओं को जो पथरी की समस्या से पहले जूझ चुके हैं, उन्हें क्या खास बातें ध्यान रखनी होंगी?
0: देखिए, उनके लिए तो हम सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर उनकी पथरी निकली है और उनके पास है तो उसकी स्टोन एनालिसिस जरूर कराएं कि किस
1: अच्छा
0: चीज से बनी है। दूसरी चीज जो सामान्य सभी के लिए है कि खान पान सही रखें, पानी ज्यादा पिएं
1: जी
0: और इस तरह की चीजें ना खाएं जिससे जो है पथरी की बनने की संभावना ज्यादा है,
1: जी और
0: और
1: उसके
0: अपना
1: अलावा
0: रेगुलर अपना चेकअप
1: चेकअप,
0: करवा दें।
1: बिल्कुल, एक जांच जो आपने बताई
0: बिल्कुल
1: अल्ट्रासाउंड की वो बहुत मददगार हो
0: जी
1: सकती है। यूरिक एसिड की पथरी की बात आपने की डॉक्टर
0: जी
1: साहब, और यूरिक एसिड के जो मरीज हैं वो कहते हैं कि हमारी उंगलियों में दर्द होता है,
0: जी
1: जो यूरिक एसिड को इसी तरह पहचाना जाता है, उसके
0: जी
1: बाद लोग जांच कराते हैं। तो पथरी से क्या लेना देना है यूरिक एसिड का?
0: यूरिक एसिड की पथरी जो है वो पेशाब के रास्ते ही यूरिक एसिड निकलता है
1: जी,
0: और जब वो उसका मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा निकलता है गुर्दे में से,
1: जी
0: वही जो है वो जाके स्टोन बन जाता है। और यूरिक एसिड का स्टोन एक बिल्कुल ही भिन्न तरीके का स्टोन होता है, वो एक्सरे में भी नहीं आता है।
1: अच्छा,
0: कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन और जो कैल्शियम वाले स्टोन हैं वो एक्सरे करवाइए तो आ जाते हैं,
1: जी
0: यूरिक एसिड वाले नहीं आते हैं, वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही पहचाने जा सकते हैं या फिर उनका सीटी स्कैन किया जाता है।
1: जी अच्छा, डॉक्टर साहब, परहेज की जहां तक बात है तो परहेज में ये कहा जाता है कि साहब जिन फलों में बीज होते हैं या जिन सब्जियों में बीज होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, उनके खाने से पथरी बन सकती है, क्या ये बात सही है?
0: देखिए, उसमें इन सब में जो है कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है,
1: जी
0: कुछ लोग जो है वो भर भर के खाते हैं तब तो ये चीज होती है उन पे लागू, लेकिन जो आम मात्रा में आपने एक सेब ले लिया या आपने जो है एक यूरिक एसिड संयुक्त चीज आपने ले ली उससे इतनी विशेष परेशानी नहीं होती, पर प्रिवेंशन तो करना ही होता है। कुछ लोग के जो है परिवार में आप देखते होंगे कि सभी लोग बैगन की सब्जी खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, उसमें से एक या दो को हो रही है पथरी,
1: जी जी
0: तो उसकी बॉडी की शरीर की जो संरचना है, पानी की कमी है और वातावरण जो जैसा है उसकी वजह से भी असर पड़ता है, तो इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा, अब ये और बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, जो पहले पथरी से पीड़ित रह चुके हैं, जिनको पथरी हुई है,
0: जी
1: उनको संभावना पथरी बनने की जो होती है वो
0: जी
1: कितने प्रतिशत होती है और क्यों होती है? क्योंकि लोगों का कहना यह, हमने पथरी का इलाज कराया, डॉक्टर साहब ने किरणों से तोड़ दी हमारी पथरी, निकाल भी दी, लेकिन फिर भी दोबारा पथरी बन गई।
0: पहले साल में 60 से 70% हो जाएगी फिर
1: पहले
0: से
1: साल में?
0: हाँ, पहले साल।
1: अच्छा,
0: आगे के सालों में थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पहले साल में ही जो है वो पथरी सबसे

0: फिर से बन जाती है।
1: जी एक श्रोता लाइन पर है, डॉक्टर साहब इनकी बात सुन लेते हैं, क्या
0: जी,
1: जानना चाहते हैं
0: जी।
1: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय बताइए।
2: हेलो,
1: अपना परिचय बताइए और गुर्दे की पथरी के संबंध में कोई प्रश्न हो तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
2: रमेश बोले किशनपुर से।
1: जी रमेश जी बताइए क्या समस्या है आपकी।
2: समस्या ये है कि जैसे हमारी पत्नी के ना गुर्दे में तो पथरी ना है, उसमें है पित्ते में।
1: अच्छा,
2: तो
1: हाँ,
2: पित्ते की पथरी और इसकी पथरी जो है दोनों क्या निकल जाती है? पित्ते की पथरी,
0: पित्त की थैली की पथरी जो है ना, वो पित्त की थैली और पथरी दोनों एक साथ निकलती हैं। इसका दवाई से इलाज नहीं होता है, उसका ऑपरेशन करके।
2: अच्छा, हाँ, अच्छा, जो गुर्दे की जो पथरी है तो क्या बिना ऑपरेशन के निकल सकती है?
0: हाँ, गुर्दे की पथरी जो है वो बिना ऑपरेशन के आधुनिकतम तकनीक लेजर है किरणों द्वारा निकाली जा सकती है।
2: अच्छा, तो फिर दोबारा ना होगी?
0: दोबारा फिर से बनने की संभावना उसी गुर्दे में जो है 60-70% है।
2: अच्छा अच्छा, तो मतलब ये इलाज क्या महंगा है ज्यादा?
0: नहीं, वो तो पथरी का साइज और बाकी चीजें जांचों पे पता चलता है कि क्या है, तो दिखाना पड़ता है कि कितनी बड़ी पथरी है, कहाँ पे है और कैसी है और कौन सी विधि से निकाली जाएगी।
2: हमारे भतीजे से जो है वो 12 mm की पथरी बताई है गुर्दे में, पथरी है उसको अलग अलग।
0: हाँ, 12 mm की पथरी तो बड़ी है, वो दवाइयों से तो नहीं निकलेगी, उसको किसी आधुनिकतम तकनीक से जो है वो पहले तोड़ के निकाला जाएगा, वो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड देखने के बाद पता चलेगा।
2: तो मतलब चीरा हो आराम से हो जाएगा?
0: हाँ, 12 mm की पथरी के लिए आमतौर पे चीरा नहीं लगता है।
2: हाँ, तो मतलब ऑपरेशन का जो डर लगता है ना लोगों को, वो डर ना हो।
0: हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ
1: जी,
0: उसमें कई बार उस पथरी की में भर्ती भी नहीं किया जाता है, 2 या 3 घंटे में ऑपरेशन से छुट्टी हो जाती है।
2: घर भी कर दिया जाता मरीज?
0: हाँ जी, हाँ,
2: अच्छी बात है। चलिए,
1: धन्यवाद धन्यवाद रमेश जी आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। डॉक्टर साहब, चूंकि आज का हमारा विषय गुर्दे की पथरी का है, लेकिन इन्होंने पित्ते की थैली की पथरी की बात की, आपने इन्हें जवाब भी दिया इनके प्रश्न का। डॉक्टर साहब, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, लेकिन भ्रम रहता है लोगों में कि गुर्दे में अगर पथरी है उसका इलाज आप कर रहे हैं तो पित्ते की थैली की पथरी का भी इलाज आप कर देंगे।
0: नहीं, दोनों की टेक्निक अलग है।
1: अलग,
0: जैसे मैंने बताया, गुर्दे की पथरी जो है वो दवाइयों से, किरणों से और गुर्दे को बचा के की जा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन पित्त की थैली की पथरी के लिए जो है वो ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है, जिसमें पित्त की थैली और पथरी दोनों ही निकाली जाती है।
1: दोनों ही निकाल दिए जाते हैं सर, तो ये तो बिल्कुल अलग बात हुई
0: जी।
1: तो हमारे श्रोताओं को ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह की समस्या है, उसका समाधान किसके माध्यम से होगा।
0: बिल्कुल, उसमें फिर जो पिक्की थैली निकल जाती है तो फिर से बनने की संभावना शून्य हो जाती है।
1: जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी के गुर्दे में पथरी है, कोई समस्या नहीं हो रही और वो कहता है जब समस्या नहीं तो मैं इसका इलाज क्यों करूं
0: जी,
1: आगे चल के क्या हो सकता है ऐसे लोगों
0: जी? जो ऐसे लोगों का जो है अगर रुकावट है तो गुर्दा डैमेज हो सकता है, एक ही गुर्दे में है तो वो डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब के रास्ते खून आ सकता है, दोनों गुर्दों में है और बड़ी पथरियां हैं तो दोनों गुर्दे फेल हो सकते हैं, डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है
1: जी, यानी जान जोखिम में जा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: हम ये कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसी दवाइयां आप निश्चित ही होंगी जिनको देकर के आप सही करते हैं
0: जी?
1: मेरा इशारा उन तरीकों की तरफ है जो लोग आजमाते हैं
0: जी,
1: कहीं से पानी में मंत्र पढ़वा लिया तो कोई किसी पेड़ के पत्ते खा लिए, ये प्रयास लोग करते हैं और उससे ये विश्वास कर लेते हैं कि गुर्दे की पथरी खत्म हो जाएगी
0: जी,
1: क्या ये संभव है?
0: देखिए, छोटी पथरियां स्वतः ही निकल जाती हैं, आपने कुछ भी नहीं किया तो
1: जी,
0: उसी में अगर आपको पता है और आपने कहा कि जी हमने ये खाना खाया और ये पानी पिया और ऐसी चीजें की या ये दवाइयां ली, तो उससे नॉर्मल पथरियां जैसी जो निकलती हैं वो तो निकल ही जाएंगी
1: जी।
0: इसका साइंटिफिक कोई भी वो नहीं है जिसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं इस चीज से हो
1: जी।
0: साइंटिफिक बेसिस का मतलब होता है कि जो शोध करके ये चीज होती है कि जिसको नहीं है उसके बाद में उसको देख के और साइंटिफिकली प्रूफ किया जाए
1: जी।
0: तो वही दवाइयां और वही चीजें जो है वो कारगर होती हैं और लेनी चाहिए जिसका कि शोध हो चुका हो।
1: बिल्कुल।
0: और उस पे जो है हमें पता है कि हाँ जी इससे इतना फायदा होने वाला है
1: जी, जी।
0: बाकी प्रयास करने से आप अपने ही शरीर से खेल रहे हैं।
1: बिल्कुल, लक्षा बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। अच्छा, पानी पीने की बात आप बार बार कहते हैं हमारे श्रोताओं से कि पथरी का जो सबसे बेहतर और सबसे पहला इलाज है वो पानी पीना है, पानी पीना चाहिए
0: जी।
1: कितना पानी पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, आप कई बार बता भी चुके हैं
0: जी,
1: लेकिन
0: जी।
1: एक बार हम चाहेंगे फिर हमारे श्रोताओं को बताइए कि पानी पीने का सही तरीका क्या है।
0: देखिए, सही तरीका ये है कि साफ पानी हो, निथार के जो है उबाल के या तो उसके बाद में उसको जो है वो छान के उसके बाद में पीना चाहिए,

0: या आर्सेल जो आरओ वाटर है
1: जी
0: वो पीना, वो हो जिसमें कि सोल्यूट्स अंदर जो है वो टीडीएस जो है वो सही मात्रा में हो। दूसरा, ये कितना पानी पीना चाहिए, हम ये कहते हैं जितनी देर आप जगे हुए हैं उसमें हर घंटे पे 1 गिलास पानी पी लीजिए।
1: जी
0: तो ये हो गया कि अगर आप 15 घंटे दिन में जगे हुए हैं तो आमतौर पर 15 गिलास पानी पी लीजिए,
1: जी
0: वो चाहे वो 2-3 घंटे के अंतर पे हो। लेकिन ये ऐसा नहीं हो कि सुबह 6 बजे पी लिया और रात में 10 बजे पी लिया,
1: जी
0: दिन में पानी नहीं पिया, तो वो काम इतना नहीं करता है।
1: लोग करते ये हैं डॉक्टर साहब कि सुबह उठे और 4-5 गिलास इकट्ठा पानी पी लिया और ये मान लेते हैं कि अब तो ये दोपहर तक के लिए हो गया, अब दोपहर के बाद में देखा जाएगा, तो ये गलत प्रैक्टिस
0: तो उसमें क्या है कि जी उसी समय ही या उसके 1-1.5 घंटे में वो जितना पानी पिया है वो पेशाब के रास्ते निकल जाएगा, फिर बाकी दिन के समय में आपके जो है शरीर में पानी नहीं है।
1: जी सही तरीका यही है कि हर घंटे पे 1 गिलास पानी औसत रूप से पीते रहे। जी जी और क्या खास बात बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, चूंकि रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आज जो मुद्दा हमने आपसे तय किया है वो ये है कि गुर्दे की पथरी का इलाज वो भी बिना ऑपरेशन के,
0: जी
1: क्या खास बात बताएं?
0: देखिए इसमें तो आज हमने बहुत चीजें ऐसी की हैं जो मरीज या पेशेंट खुद करें,
1: जी
0: इसमें डॉक्टर का जो है वो इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: इसमें चाहे वो ये हो कि जी वो पथरी ना बने, चाहे वो पानी पीने का, चाहे वो खान पान का, चाहे वो टेस्ट का, चाहे वो सही तरीके से इलाज का, तो इसमें डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये तो जो है वो लोगों को आपस में ही करने के
1: जन जागरूकता के लिए ये
0: जी,
1: बात कही गई है। जी
0: इसमें ये नहीं है कि जी आज पथरी का कैसे इलाज हो,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, उसको ना बने या बने तो शुरुआती उसमें कैसे इलाज हो सकता है।
1: जी जी कुछ पेशाब संबंधी और भी समस्याएं जुड़ी होती हैं सर, अगर किसी को पथरी हो जाती है, पथरी अपनी जगह है गुर्दे में नुकसान करती है, उसके अलावा पेशाब का तो लंबा रास्ता होता है, इसमें और क्या क्या समस्याएं पथरी की वजह से होती हैं ये भी हम चाहते हैं हमारे श्रोता जान लें।
0: ये बहुत बड़ी पथरी हो, बहुत लंबे टाइम तक फैली हो, तो वो अंदर की संरचना को भी डैमेज करती हैं। तो कई बार उसमें खून आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों को कैंसर भी हो सकता है,
1: कैंसर तक हो जाता
0: जी।
1: है जी।
0: तो इसलिए ये जो है ये पथरियां जो है हर तरह की समस्या
1: की वजह बनती है। डॉक्टर साहब जो एक बड़ी आधुनिक और जरूरी बात है, हम चूंकि बात भले ही बिना ऑपरेशन के कर रहे हैं पथरी के इलाज की, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये बात आ रही है बार बार कि मैं आपसे उस विधि के बारे में एक बार जरूर बात कर लूं जिसमें बिना किसी चीरा, बिना किसी टाके के, बिना मरीज को छुए आप पथरी का इलाज करते हैं, विशेष तौर से गुर्दे की पथरियां, बड़ी बड़ी पथरियां निकाल देते हैं।
0: अभी जैसे अभी हमने श्रोता से बात की थी कि उनके साथ में 12 mm की पथरी थी, तो उसमें जो है वो हम कोई भी इलाज जो है उसमें किरणों द्वारा किया जाता है
1: जी,
0: एडमिट भी नहीं किया जाता मरीज को, 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर उसकी छुट्टी भी हो जाती है।
1: 3 से 4 घंटे में डॉक्टर
0: जी,
1: ये कैसे संभव है?
0: बाहर से ही हम किरणें उसको देते हैं
1: जी,
0: पथरी पे फोकस करते हैं, वो सेमी रोबोटिक टाइप चीज होती है, जैसे कि जी उसमें बाहर से ही सब कुछ होता है
1: जी,
0: और उसके बाद में रेस देने के बाद में पेशाब के रास्ते ही जो है वो कण टूट के निकल जाते हैं,
1: यानी पथरी जो बड़ी पथरी है वो छोटे टुकड़ों में टूट जाती है,
0: रेते जैसी हो जाती है, बालू जैसी
1: जी,
0: और उसके बाद में पेशाब के रास्ते निकल जाती है।
1: डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि 3-4 घंटे में ही मरीज घर चला जाता है, तो ये सब करने में कितना समय आपको लगता होगा जो इस तरह का ऑपरेशन है जो किरणों के द्वारा आप बता रहे हैं?
0: उसमें 45 मिनट से 1 घंटा।
1: अच्छा, और उसके 2 घंटे बाद मरीज को घर भेज देते हैं। तो देखिए आधुनिक चीजों का ये फायदा है और आज मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है उसके पीछे की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो यही हैं कि कम समस्या तुरंत समाधान
0: जी,
1: और उससे भी बेहतर यह है श्रोताओं कि आपको अगर गुर्दे की पथरी से बचना है या अपने गुर्दों को बचाना है, मैं तो ये कहूंगा तो आप जागरूक हो, समय पर इलाज कराएं और उससे पहले समय पर जांच कराएं,
0: बिल्कुल,
1: तभी आप बिना ऑपरेशन के, मैं तो ये कहूंगा कि गुर्दे की पथरी का इलाज बिना खर्चे के कर सकते हैं
0: जी। बिल्कुल
1: जी, डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, विशेष तौर से गुर्दे की पथरी, पेशाब संबंधी बीमारियों के जो इलाज है उसके विषय में बताया, और आज बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि बिना ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी ठीक की जा सके।
0: बिल्कुल,
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
0: नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
2: पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में गुर्दे की पथरी, मूत्र रोग और निसंतान दंपतियों के संपूर्ण इलाज का एकमात्र स्थान
3: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बरेली शहर का एक ऐसा अस्पताल जहां उपलब्ध है
4: मर्दाना कमजोरी,
2: महिलाओं के मूत्र रोगों,
4: गुर्दे की पथरी,
3: गदूद और बच्चों की पेशाब संबंधी समस्याओं के समाधान बहुत कम खर्च में,
4: उच्च कोटि की विदेशी मशीनों से सुसज्ज
3: यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट।

0: लिथोट्रिप्सी विशेषज्ञ द्वारा संचालित
1: नीरज लाइफ केयर एंड स्टोन सेंटर, दीनदयालपुरम, एकता नगर रोड, बरेली।
2: हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9837057929। हमारा टेलीफोन नंबर है 0581253-1234।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम रेडियो हेल्पलाइन। ट्यून किया है आपने 100.4 FM और हमारे स्टूडियो की घड़ी में बजने वाले हैं रात के 8। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ के प्रसारण, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।
4: ऊर्जा संरक्षण बहुत आवश्यक है।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।
1: हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। जब शब्दों को मिलती है सांस, जब भावनाएं पहनती हैं मुखौटा, जब जीवन उतर आता है मंच पर, तब जन्म लेता है रंगमंच। यहां आंसू भी संवाद बनते हैं और मुस्कान भी एक अभिनय। यहां हर पात्र में छुपा होता है हमारे समाज का प्रतिबिंब। हमारा सौभाग्य है श्रोताओं कि आज हमारे साथ हैं रंगमंच के सुविख्यात जाने माने रंगकर्मी, लेखक, निर्देशक श्रद्धेय ललित सिंह पोखरिया जी। ललित सिंह पोखरिया जी, हम आकाशवाणी के सुनने वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद, और मेरी ओर से आपको भी प्रणाम और इस कार्यक्रम को सुनने वालों को भी प्रणाम।
1: हमारे लिए ये सौभाग्य है कि आपने आकाशवाणी लखनऊ के सुनने वालों के लिए समय निकाला है। अगर हम रंगमंच को परिभाषित करना चाहें
2: जी,
1: तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि रंगमंच क्या है?
2: रंगमंच एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन से संबंधित भावनाओं को, विचारों को, कार्यकलापों को एक सूत्र में पिरोकर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया जाता है। इस कार्य में कलात्मकता का बहुत ध्यान रखा जाता है और समय सीमा का ध्यान रखा जाता है, यानी कि बात जो भी कहनी है किसी घटना के माध्यम से कहें या मात्र वार्तालाप के माध्यम से कहें, उसमें या तो भावना होगी या विचार होगा जीवन से संबंधित, या दोनों बातें होंगी, उनको कलात्मक ढंग से समय और स्थान में बहुत ही सुगढ़ता से नियोजित करके दर्शकों के सामने प्रदर्शित करना, ये एक प्रकार से समग्रता में रंगमंच के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है इसको।
1: अच्छा, इसकी शुरुआत हम कहां से मान सकते हैं?
2: रंगमंच की शुरुआत को लेकर पूरे विश्व में अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के बीच से या अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के बीच से अलग अलग मानवीय दर्शन को ध्यान में रखकर इसका प्रादुर्भाव हुआ है। मुख्य रूप से अगर हम आज पूरे विश्व में बात करें प्राचीनतम इसके उद्गम को लेकर, तो हम अपने भारतवर्ष की बात तो करते ही करते हैं, इसके अलावा यूनान की भी हम बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं यूनान साहित्य, कला, खेलकूद और अर्थशास्त्र, राजनीति, इनका उद्भव भी यूनान में एक प्रकार से अपने बिल्कुल एक विशिष्ट स्वरूप में हुआ है। उसी प्रकार से रंगमंच का भी वहां भी हुआ है। और हम भारत की बात करें तो मुझे लगता है, जहां तक मेरी बात है, भारत का समय यूनान के समय से रंगमंच के उद्भव का और पुराना है, लेकिन दोनों समाजों में, दोनों संस्कृतियों में रंगमंच को एक कला के रूप में, एक बहुत बड़ा रचनात्मक कलात्मक विधान परंपरा के रूप में उसे आगे बढ़ाने का काम जो है, उसका उद्देश्य समान रूप से दोनों संस्कृतियों में रहा है। जी,
1: अच्छा, भारतीय रंगमंच की अगर हम बात करें तो इसके कौन कौन से ऐसे प्रमुख रूप हैं?
2: कहा जाता है कि हमारे यहाँ वेद, उपनिषद आदि अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हुई जिसके रचयिता या जिसके दृष्टा ऋषियों ने मानव जीवन का

0: लंबे से और लंबे से लंबे समय तक सृष्टि के संसर्ग में कैसे जीवन सुखमय बीत सकता है, यही बातें तो उसमें है जिसमें अद्वैतवाद भी है, जिसमें सृष्टि और जीवन, जीवन में न केवल मनुष्य, जीवन में वनस्पति भी है, सृष्टि में जड़ तत्व भी है, जड़ और चेतन। जब मैं सृष्टि की बात कर रहा हूं तो मैं जड़ और चेतन दोनों की बात कर रहा हूं। तो सृष्टि के संसर्ग में जड़ और चेतन का जो अस्तित्व है और चेतन का जो जीवन प्रवाह है वो अनंत काल तक या लंबे काल तक कैसे सुखपूर्वक बीत सकता है, इन बातों का निरूपण हुआ है वेदों में। तो कैसे सुखपूर्वक बीत सकता है, वो पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे मुख्य तत्व है या एनर्जी है उसके साथ हमारी संवेदना का अंतर संबंध बनाए रखना, मानव कल्याण के लिए भी, सृष्टि के कल्याण के लिए भी। ऐसे राष्ट्र में, देश में जहां ऐसे ग्रंथ रचे हैं, कालांतर में वहां क्या होने लगा, जितने दुर्गुण होते उन दुर्गुण का आविर्वाह होने लगा। वैमनस्य, भोग, विलास, ईर्ष्या और तमाम आसुरी वृत्तियों का पनपना भी शुरू हो गया। तो ऋषि मुनियों को चिंता हुई कि भाई ये क्या हो रहा है, तो समाज तो ऐसे बिल्कुल गर्त में चला जाएगा। तो कहते हैं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भरत मुनि नामक जो एक अग्रणी ऋषि थे और ऋषि समूहों के, उनसे कहा गया कि हाँ कुछ ऐसे उपक्रम की खोज करो जिससे ये जो लिखी हुई शिक्षा है या लिखा हुआ दर्शन है वो प्रत्यक्ष रूप से दृश्य के रूप में ज्यादा प्रभावी होगा और लोग कुमार्ग में से जाने से बचेंगे। और जो वेदों में कही गई बातें हैं, मनुष्य का सृष्टि के सापेक्ष सुखमय जीवन, न केवल मनुष्य का, संपूर्ण जीवधारियों का, तो ऐसा तो कब होगा, जब नैतिक मूल्यों का अनुपालन होगा तभी होगा, है ना। तब फिर भरत मुनि ने काफी लंबे समय तक इस पर विचार विमर्श किया और अंत में एक नाट्य शास्त्र का निरूपण किया कि नाट्य जैसे कला का, दृश्य कला का दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का विधान, तो विधान होगा तो उसका आर्किटेक्चर भी होगा, उसके स्थान की भी बात होगी, उसके अभिनय के तरीकों की भी बात होगी, अभिनय के अलावा किस बात का और ध्यान रखा जाना चाहिए यह भी होगा, प्रस्तुतिकरण का क्या ध्यान रखा जाना चाहिए यह भी होगा। तो इन सारे बातों का समुच्चय है नाट्य शास्त्र में। उसमें जहां नाट्य मंचन होगा वो कितने प्रकार के प्रेक्षा गृह होंगे, तीन प्रकार के, विकृष्ट, कनिष्ठ, विकृष्ट, चतुरस्थ और त्रियस्थ, त्रिभुजाकार, वर्गाकार और आयताकार, इनमें भी तीन तीन प्रकार की साइज होंगे, ज्येष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ। ये क्यों इतने प्रकार के ऑडिटोरियम क्यों भरत मुनि ने कल्पित कर लिए थे नाट्य प्रदर्शन के लिए, क्योंकि हर नाटक का कथानक अलग अलग होता है, नाटक की प्रकृति अलग अलग होती है, किसमें युद्ध की प्रवृत्ति है, बहुत एक्शन और उग्र स्वभाव वाला है, लड़ाई का दृश्य है, ये सब है, बहुत सारे पात्र है, तो उसके लिए कौन सा ऑडिटोरियम, ज्येष्ठ
1: वाला जी।
0: और एक सामान्य प्रेक्षक वर्ग के लिए ये, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो सूक्ष्म बात कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्शन ना हो, कम पात्रों का हो और जीवन संबंधी बड़े मर्म की बात कर रहा हूं, तो उसमें दर्शक बहुत दूर दूर नहीं होना चाहिए, पास होना चाहिए, तो उसके लिए कनिष्ठ ऑडिटोरियम। और इसमें भी तीन स्वरूप, प्रकृति के अलावा त्रियस्त्र, विकृष्ट, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। भरत मुनि ने फिर अभिनय के जो विभिन्न अंग हैं उन पर भी बात करी कि अभिनेता में ये कौशल तो होना ही चाहिए, कौशल नहीं होगा तो दर्शक प्रभावित नहीं होंगे। तो अभिनय के लिए चार आयाम उन्होंने निरूपित किए, वाणी, शरीर, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। अब इसको मैं समझाता हूँ, इसका श्लोक भी है, आंगिकम भुवनम यस्य, वाचिकम सर्व वांग्मयम, आहार्यम चंद्र तारादि, तुम नमः सात्विकम शिवम।
1: क्या बात
0: है ना। तो ये इसमें आंगिक जो अंग से, एक्शन से, हाव भाव से, गति से, अभिनटन से अभिनेता अपने दिल की बात कहता है, संवाद संभाषण, उच्चारण, स्पष्टता और ध्वनि की संप्रेक्षण शक्ति, उसका अलग अलग स्तर। आंगिक पर तो यथा है जिसमें मुद्राओं का इतना काम है, अब तो वो लोग मुद्राएं समझते भी नहीं, कि भरत मुनि जी तो कहते थे कि प्रेक्षक को भी उतना ही विद्वान होना चाहिए, क्योंकि अब क्या है कि हिरण की मुद्रा है, अगर पात्र, क्यों हिरण तो मंच पर लाया नहीं जाएगा, और हिरण लाया भी जाएगा तो आपके अनुकूल व्यवहार थोड़ी करेगा वो, है ना भाई। दुष्यंत जो है हिरण का शिकार कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो मंच में सच का हिरण लाएंगे तो पता नहीं वो दर्शकों में कूद जाए वो तो अभिनय से ही जताया जाएगा ना कोई व्यक्ति ही अभिनेता ही हिरण बनेगा। तो हिरण कैसा होता है, उसका जो शरीर का जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति होती है वो कैसी होती है, उसको कैसे दर्शाया जाए, तो ये एक मुद्रा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हिरण के

0: मुद्रा है, इसी तरह सर्प की एक मुद्रा है, ये शेर की एक मुद्रा है, तो वो अभिनेता वैसी मुद्रा बनाता था तो दर्शक समझ जाते थे कि ये शेर
1: है, ये शेर है जी।
0: बाकी

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे साबरी ब्रदर्स की गाई कव्वाली। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट से। श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे हैं जब वी मेट फिल्म का ये गीत।

उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता

0: को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
0: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
1: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
3: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: दिस इज द कंट्री।
6: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
0: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि

0: इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गानों का कार्यक्रम आपके लिए।

इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा गीत, स्वर जसपाल सिंह का, और फिल्म का नाम है श्याम तेरे कितने नाम।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ, फिल्म का नाम है आंधी। गीत रचना गुलजार साहब की और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार का ही गाया हुआ, फिल्म का नाम है महाचोर। गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीत राहुल देव बर्मन का है।
1: मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
2: क्या?
1: अरे बाबा,

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आपने साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत सुना। स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के थे। फिल्म का नाम था लैला मजनू। और आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार को फिल्म चरस में। शब्दकार आनंद बख्शी और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

इस युगलगान के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित होगा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर, बस थोड़ी ही देर में।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था, तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल,
2: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी ही हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक कर रहा।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने जमा दिलों की धड़कनों पर राज किया, वो अभिनेता जिनके साथ लोग खूब फिरके।

दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। बंगाल के बारिसाल में उनका जन्म 16 जून 1952 को हुआ था। ये वही जगह है जहां मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास भी पैदा हुए थे। बहरहाल, पिता बसंत चक्रवर्ती, माँ शांतिमयी चक्रवर्ती। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था, पर कॉलेज के दिनों में वो बगावती हो गए, नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए। अचानक भाई की एक हादसे में मौत होने के बाद मिथुन वापस लौट आए। सन 1972 में मिथुन चक्रवर्ती ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 1974 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एक्टिंग का डिप्लोमा हासिल किया। उन दिनों वो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पढ़ाते भी रहे। यहाँ से मिथुन मुंबई आ गए, पर काम आसानी से उन्हें नहीं मिला। गुजारा करने के लिए वो अभिनेत्री हेलेन की डांस टोली में डांसर बन गए थे। ये उनके संघर्ष के दिन थे। कभी फुटपाथ पर सोना पड़ता उन्हें, कभी टैक्सी में सोना पड़ता। यहाँ तक कि एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दे डाली थी, पर मिथुन नहीं माने, वे डटे रहे।

दोस्तों, ये वो दिन थे जब मशहूर निर्देशक मृणाल सेन अपनी फिल्म मृगया के लिए कलाकार तलाश रहे थे। मिथुन को चुन लिया गया। सन 1976 में मिथुन को

फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सब चकित रह गए। पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड, पर इसके बावजूद काम में इजाफा नहीं हुआ। दो अनजाने फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, मेरा रक्षक जैसी फिल्में आईं और गईं, पर मिथुन हताश नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक दौर उनका आएगा, वो दौर होगा जब दुनिया उनके पीछे भागेगी। कामयाबी का पहला स्वाद मिथुन ने तब चखा जब जाने माने कैमरामैन और निर्देशक रविकांत नागाइच ने उन्हें फिल्म सुरक्षा में कास्ट किया। बस फिर क्या था, गन मास्टर 69 लोगों के जहन पर छा गया। जिस मिथुन चक्रवर्ती को लोग नजरअंदाज करते थे, उसे पलट कर देखने लगे। सुरक्षा की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल तैयार किया गया, जिसका नाम था वारदात।

इस फिल्म के बाद कामयाबी के कुछ तमगे मिथुन चक्रवर्ती के दामन में आ चुके थे। मिथुन 80 के दशक के युवाओं के नायक बने, आम इंसान के नायक बने। बॉक्स ऑफिस पर आम जनता उनकी फिल्में देखने के लिए उमड़ती रही। सन 1979 में आई राष्ट्रीय पिक्चर्स की तराना, जिसके गाने आज भी याद किए जाते हैं। बरसात के इस मौसम में, बरसात हो या न हो, आइए इस गाने के जरिए भीगते हैं बरसात में।

मिथुन की कामयाबी में उनकी फिल्मों के संगीत का भी हाथ रहा है। सन 1980 में आई फिल्म हम पांच बड़े मशहूर सितारों के अभिनय से सजी इस फिल्म में उन्होंने बाजी मारी। लोगों ने खूब पसंद किया ये गाना और ये फिल्म भी।

दोस्तों 80 का दशक डिस्को क्रांति के लिए जाना जाता है। पश्चिम से डिस्को की एक आंधी आई और इसने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। भारत में इस क्रांति का परचम बतौर नायक मिथुन चक्रवर्ती ने लहराया और बतौर संगीतकार बप्पी लहरी ने।

दोस्तों डिस्को गीतों से सजी फिल्मों के अलावा मिथुन रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे और पारिवारिक फिल्में भी। उनकी सब फिल्मों की बातें करना यहाँ तो संभव नहीं, पर उनके करियर का एक बड़ा लैंडमार्क बनी सन 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। सुनिए ये गाना।

दोस्तों इसी बरस यानी सन 1985 में आई जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती की बातें हो रही है आज के फनकार कार्यक्रम में।

0: दोस्तों सन 1990 में मिथुन चक्रवर्ती के करियर की एक और फिल्म आई अग्निपथ, मुकुल आनंद की अग्निपथ। इस फिल्म में उन्होंने कृष्ण अय्यर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: कृष्णन अय्यर यम ये के इतने सारे नाम,
2: तूने क्यों मुझे बचाया?
1: बस अपना फर्ज निभाया।
2: क्या तू कुछ भी कर जाता?
1: कर जाती।
2: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
1: अच्छा अच्छा, कर जाता।
2: मेरे लिए मर जाता?
1: हाँ मर जाता।
2: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।
1: यू आर इन लव,
2: वी आर इन लव।
0: दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती भले ही कमर्शियल सिनेमा करते रहे, लेकिन जब भी मौका आया उन्होंने सार्थक सिनेमा भी किया। सन 1992 में बुद्धदेव दासगुप्ता की फिल्म ताहा देर कोथा की इस फिल्म के लिए मिथुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1998 में मिथुन ने फिल्म स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई और उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। इन तमाम फिल्मों के साथ साथ मिथुन कमर्शियल सिनेमा का भी दामन थामे रहे। सन 1993 में आई फिल्म

दोस्तों, तकरीबन 500 फिल्मों में काम करने वाले मिथुन चक्रवर्ती जनता के पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिथुन हाउसफुल 2, कांची, खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में की हैं मिथुन ने। वे बीच बीच में टेलीविजन पर भी नजर आते रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी एक आम आदमी के रजत पट पर आने और छा जाने की कहानी है।

दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। शोध, आलेख और स्वर आपके रेडियो सखी ममता सिंह का। अब कहते हैं नमस्कार।

0: तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दिन भर।
1: आज के फनकार
2: .com। आप अपनी फरमाइश हमें पत्र के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक, 18 विधानसभा मार्ग, आकाशवाणी लखनऊ। पिन कोड है 226001। अब कार्यक्रम आपकी पसंद से मुझे यानी शिवानी वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है चित्रपट से।

अभी आप सुन रहे थे बाजीगर फिल्म का ये गीत, आवाजें थी विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की। और अब आइए सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में आशिकी फिल्म का ये गीत।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: और अब आइए सुनते हैं उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में बाजी फिल्म का ये

इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राजकुमार झा का आदि ताल में पखावज वादन।

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार झा का आदिताल में पखावज वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर पत्र संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि

0: हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOEP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: घर आंगन में है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
4: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
3: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
3: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी

0: स्वदेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्ण ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचनाओं को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .IN ऑक्सन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial scale coal to ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Center and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Drairangpur. The initiative is expected